हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई सन 2026। सुबह के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार होंगे, अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माही, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस सामने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: विंदन वार।

आइए सुनिए आज का चिंतन। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है, जो कुछ हमारा है वो हम तक आता है यदि हम उसे ग्रहण करने का सामर्थ्य रखते हैं। आइए सुनें भक्ति संगीत।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें विविध भारती से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर बाद 6:35 से आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 183। संगीत सरिता कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 6:45 से और इसका पुनः प्रसारण संध्या 6:45 से। आज आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आज इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। सुबह 7 बजे से आनंद लीजिए भूले बिसरे गीतों का और 7:30 से कार्यक्रम हम है राही प्यार के। 8 बजे का समय रहेगा समाचारों के लिए और 8:15 से कार्यक्रम होगा त्रिवेणी। चित्रलोक कार्यक्रम का प्रसारण समय सुबह 8:30 से।

वर्ष गए तलत महमूद पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार आप सुन सकेंगे सुबह 9:30 से। दस बजे पिटारा में गीतों भरी कहानी है सपने में ठिठका इंतजार, लेखिका और स्वर ममता सिंह। 11 बजे से चित्रपट संगीत और 11:30 से कार्यक्रम मैटनी शो। 12 बजे आप सुनेंगे समाचार और 12:05 से सजे की यादों की महफिल। 'विविध भारती' के सुरीला सफर कार्यक्रम का आनंद उठाइए दिन में 1 बजे से और 2 बजे से कार्यक्रम त्रिवेणी। 2:15 से समाचार होंगे और 2:30 से आप सुनेंगे सदाबहार नगमे। साथियों, आज शनिवार है और आज दोपहर 3 बजे से आप सुनेंगे अपना मनचाहा कार्यक्रम मन चाहे गीत। दोपहर 3:30 से नाट्य तरंग के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे नाटक पोस्टमैन का पहला भाग। के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद है ये और हिंदी अनुवाद किया है P.S. कृष्णस्वामी ने, निर्देशक महेंद्र मोदी। शाम 4 बजे आज पिटारा लाएगा बॉम्बे टॉकीज, जिसमें आप सुनेंगे गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रिकर की बातचीत। 5 बजे से छाया गीत और 5:30 से तराने नए पुराने। 6 बजे का समय रहेगा समाचारों के लिए। तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुन सकेंगे समाचारों के बाद 6:05 से और 6:35 से संध्या रंजन। संध्या 7 बजे से विशेष जयमाला कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे पार्श्व गायक मनहर उदास द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला। और हाँ, 7:45 से आज इंद्रधनुष में जिज्ञासा। रात्रि 8 बजे हवा महल के अंतर्गत आज सुनो कहानी। सुनो कहानी में आज हम आपको सुनवाएंगे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र। आज आप इसका दूसरा भाग सुनेंगे, स्वर है ममता सिंह का। रात्रि 8:15 से कार्यक्रम चित्रलोक प्रसारित किया जाएगा और 8:45 से समाचार। रात्रि 9 बजे से कार्यक्रम होगा आपके लिए और 9:30 से आज के फनकार, जो केंद्रित होगा पार्श्व गायक तलत महमूद पर। रात्रि 10 बजे से छाया गीत और 10:30 से कार्यक्रम ढलती जाए रात। तो ये थी जानकारी विविध भारती से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। और अब आइए सुनते हैं रामचरितमानस का भाग 183।

सुमंत्र से राम लक्ष्मण और सीता के वनगमन का वृत्तांत सुनकर राजा दशरथ के हृदय में हूक उठती है और वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। रानियां विलाप कर उठती हैं। रानी कौशल्या अंतस में उठती व्यथा और सजल नेत्रों से सूर्य कुल का अंत होता देख रही है। महाराज को वो धीरज बंधा रही हैं। राम वियोग के अथाह सागर में डूबते अयोध्या रूपी जहाज के वे ही एकमात्र कर्णधार हैं।

यदि उन्होंने भी धैर्य छोड़ दिया तो सबका डूब जाना निश्चित है। रानी के सांत्वना भरे वचन सुनकर महाराज आंखें खोलते हैं। उनकी जिह्वा पर मात्र एक ही रट है, राम कहाँ हैं? कहाँ हैं लक्ष्मण और उनकी प्रिय बहू जानकी? उनके सजल नेत्रों में वर्षों पहले का चित्र उभरता है, श्रवण कुमार के पिता अंधे तपस्वी का अभिशाप। रानी कौशल्या को वे दुखद कथा सुनाते हुए पुत्र विरह में शरीर त्याग महाराज दशरथ सुरलोक सिधार जाते हैं।

अभी 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसके उपरांत हिंदी में समाचार होंगे और फिर अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर कार्यक्रम लोकरंग, जिसमें आप सुनते हैं हरियाणवी संगीत। 7:10 पर 7:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात।

समाचार प्रभात सुबह 8 बजे और अंग्रेजी में समाचार 8:15 पर हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

कार्यक्रम नमस्ते हिसार का समय रहेगा सुबह 10 बजे, प्रातः 11 बजे कार्यक्रम रंग तरंग और दिन में 12 बजे यादों की महफिल हम आपके लिए कराएंगे विविध भारती मुंबई से।

कार्यक्रम गीत माला का समय रहेगा दिन में 1:10 से, जिसके उपरांत दिन में 2 बजे राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार और 2:15 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार। बाद दोपहर 3 बजे आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम सखी सहेली।

0: हिंदुस्तान जमीन है सितारों की।
1: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
2: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की।
0: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है?
3: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता।
2: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है?
4: Will he be remembered as a great scientist, said Thomas Alva Edison।
0: कोई कला में उत्कृष्ट है?
2: तो कोई संगीत का शिरोमणि।
0: किंतु कोई है जो इन सबको ले आया है आपके लिए, आपके घर में, आपके बेहद करीब।
2: कार्यक्रम एक शख्सियत,
0: हर सोमवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी हिसार पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रूपरेखा। आज हमारी दूसरी प्रसारण सभा में शाम 4 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों भरी कहानी, जिसे हम विविध भारती से रिले करेंगे।

कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे आप सुन पाएंगे आज शाम 5 बजे, जो कि हमारे सोशल मीडिया पर आधारित कार्यक्रम है। इसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9729253272, यानी 9729253272 या 5312272। उसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radiohisar@gmail.com। भक्ति संगीत का समय रहेगा आज शाम 6:20 पर। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा उमंग।

0: कार्यक्रम किसानवाणी में आज बातचीत का विषय रहेगा पुराने बागों का कायाकल्प और प्रसारण समय शाम 7 बजे। आज शाम 7:30 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम हमारे गांव। विषय रहेगा प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार। पूरे सप्ताह की गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा हम आपके लिए लेकर आएंगे आज रात्रि 8 बजे 8:30 पर कार्यक्रम खुलाकाश में। आज सुनिएगा संगीत एक फिल्म से। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे आप सुन पाएंगे अंग्रेजी में समाचार। 9:15 से विविध भारती के प्रसारण और रात्रि 10 बजे कार्यक्रम हेलो हिसार का पुनः प्रसारण।
1: बच्चों की एक अलग दुनिया होती है
2: चकरक चीचा चो चकलो रम गंडो वंडो लकरकटम।
1: और यदि आपको चाहिए इस दुनिया में एंट्री तो ढूंढिए अपने भीतर छुपे बच्चे को।
3: एरोप्लेन एरोप्लेन अप इन द स्काई वेयर आर यू गोइंग फ्लाइंग सो हाई ओवर द माउंटेन ओवर द सी एरोप्लेन एरोप्लेन प्लीज टेक मी।
4: बचपन की मुस्कुराहटों और गुदगुदाहटों से भरा कार्यक्रम बाल सभा
1: हर रविवार सुबह 10:30 पर
4: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
0: हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.3 MHz पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में समाचार होंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: एन रविना सह मिलित्वा राज्ये प्रथमं भाजपा नेतृत्वस्य सर्वकारस्य निर्माणाय प्रतिज्ञां प्रदत्तवान्। विधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलं ऐतिहासिकं विजयं प्राप्नोत्। टीएमसीति दलस्य 15 वर्षाणां शासनं च समापितम्। पुदुचेरी राज्ये राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधनस्य मुख्यमंत्री पदस्य प्रत्याशी एन रंगासामी इत्येषः उपराज्यपालेन के कैलासनाथन वर्येण सह मिलित्वा अग्रिम सर्वकारस्य निर्माणाय प्रस्तावः प्रदत्तवान्। श्रीरंगासामी बहुसंख्यायां विधायकानां समर्थनपत्राणि उपराज्यपालाय समर्पितवान्। रक्षानुसंधान विकास संघटनेन डीआरडीओ इत्यनेन भारतीय वायुसेनया च गुरुवासरे ओडिशा तटस्य समीपे टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन तारेति शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षणं सफलतया संपादितम्। तारेति भारतस्य प्रथमा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्रव्यवस्थास्ति या मार्ग निर्देशित युद्धोपकरणान् यथार्थ निर्देशित शस्त्रेषु परिवर्तयति। दुबई नगरे भारतस्य वाणिज्य दूतावासेन समुद्रे मृतस्य एकस्याः नौकायाः भारतीयस्य चालक दलस्य मृत्योः विषये शोकः प्रकटितः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये पटले सन्देशे कॉन्सुलेट जनरल इत्यनेन घटनैषा दुर्भाग्यपूर्णम् उक्तम्। सः पोतस्य स्वामिना सह निरन्तरं सम्पर्के अस्ति, अधिकविवरणानि च अन्वेष्टुं प्रयासरतः अस्ति। दूतावासेन आश्वासितं यत् अस्मिन् विषये सर्वविध साहाय्यं प्राधान्येन प्रदीयन्ते। हॉर्मुज जलसन्ध्यां गतिरोधः तदा तीव्रः अभवत् यदा संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सुरक्षापरिषदि अमेरिका समर्थितस्य प्रस्तावस्य प्रारूपम् ईरान देशेन निराकृतम्। तद्दोषपूर्णं राजनीतिना प्रेरितं चास्ति इति उक्तम्। तेहरानेन उक्तं यत् अयं प्रस्तावः विवादस्य समाधाने साहाय्यं न कृत्वा अवैधरूपेण कार्यं कर्तुं प्रेरयिष्यति। तेहरानेन संयुक्त राष्ट्र संघस्य सदस्य राष्ट्रान् प्रस्तावितस्य प्रस्तावस्य समर्थनं न कर्तुं प्रार्थितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुण जेटलीति क्रिकेट क्रीडांगणे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलं 8 पराजितम्। अद्य जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडांगणे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल

0: को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा है कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में संबंधित था। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। उधर अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को स्थिर करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Subendu Adhikari will take oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. The oath-taking ceremony will be held at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Naveen, Union Ministers and Chief Ministers of all NDA-ruled states are expected to attend the swearing-in ceremony. Earlier, Mr. Adhikari was elected the leader of the state BJP Legislature Party. The Legislature Party meeting was held in Kolkata in the presence of the Home Minister yesterday. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK Chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. Reports are also coming that the swearing-in

नई सुबह, नए सवेरे की शुरुआत, आकाशवाणी सार कार्यक्रम लोक रंग के साथ। आज का किस्सा रहेगा गोपी चंद बर्तरी। दारा नगरी के पद्मसेन राजा होते थे। दारा नगरी की गद्दी को एक श्राप था, जिसके कारण राजा पद्मसेन की 40 साल की उम्र में मौत हो जाए। उनके इकलौते बेटे का नाम था गोपी चंद, जिसको गद्दी का वारिस बना दिया गया। गोपी चंद की माँ मैणावंती की देखरेख में राजकाज चलता रहा। टेम बीतता गया और गोपी चंद जवान हो जाए। गद्दी का कोई भी राजा 40 साल से अधिक जीवित नहीं रहता था। श्राप के डर से मैणावंती ने गोपी चंद की 16 शादियां करी, ताकि कई पुत्र हों और वंश चलता रहे। लेकिन समय का फेर था। गोपी चंद की रानियां के 12 कन्याएं हुई और गोपी चंद की उम्र भी 40 साल के लगभग आ गया है। मैणावंती के दो भाई थे, बर्तरी अरी और विक्रम। वास्तव में बर्तरी अरी गोपी चंद के मामा थे। दारा नगरी के राजा पद्मसेन के स्वर्गवासी होने के बाद उसके बेटे गोपी चंद को जब राजकाज पे बैठाया, इन्हीं दिनों राजा बर्तरी अपने भाई विक्रम को राज्य सिंहासन पे बैठा के पिंगला रानी की आस्थाहीनता के कारण सन्यासी बन गए। बर्तरी अपने गुरु जलंधरनाथ के साथ दारा नगरी में आए। अपना सारा राजकाज और ताज बर्तरी अपने छोटे भाई विक्रम को सौंप दे और अपनी भाण मैणावंती ते मिलन जाए। बाबे के बेस में देख के मैणावंती बहुत दुखी हो जाए और अपने भाई ने मैणावंती समझाओ है। बर्तरी और मैणावंती के बीच के सवाल जवाब हो है उस मौके की कवि कल्पना रणबीर सिंह बड़वासनिया वे नीलम चौधरी की आवाज में।

भर्तरी जब अपनी बहन मैणावंती की बात को नहीं मानता तो वो मैणावंती अपने बेटे गोपीचंद ने भी जोग दबावन की सोचे है, अमर करावन की सोचे है। माँ की दाब तक वो गोपीचंद जोग लेने की सोचे है। जब इस बात का पता गोपीचंद की बहन चंद्रावल को चला तो वह बाजी आई और अपने भाई गोपीचंद को समझाने लगी। लेकिन गोपीचंद अपनी बहन चंद्रावल को क्या कहते हैं उस मौके की बात मास्टर सतवीर बैंसवाली और साथियों की आवाज में।

0: देख के सवरण कैसी काया, माँ के याद पिताजी आया।
1: ओ माँ के याद पिताजी आया।
0: ओए सोचा पति

0: रोवण का कारण बुझा जाके मेरे अटे कहने लगी समझा गए
1: मेरे अटे कहने लगी समझा
0: गए। ओए बहुत चले गए जमी पया के
1: ओए बहुत चले गए
0: जमी पया के लग गए हाजरी

0: ओए बोली गोपी चंद ले ले जोग कटे तेरे जन्म मरण के रोग
1: कटे तेरे जन्म मरण के रोग
0: ओए राज सुख तन लिए भोगी
1: ओए राज सुख तन लिए भोगी
0: इब हो के अमरी

0: ऐ मने माता का ठहर पुगाया ले लिया जोग नहीं घबराया
1: ले लिया जोग नहीं घबराया
0: ओए राम कुआ।

माँ के कहने पे गोपीचंद जोग लेने की सोच ले है और वो अपने मामा भर्तृहरि के साथ अपने गुरु जलंधरनाथ के पास जान लग गए है। तो उसकी माता नयावंती का जी काचा हो गया, आंसू गिरन लग गई। लेकिन अपनी माँ को रोते देख के गोपीचंद क्यों कर समझावे है,

ओए गष्ट धर्म के बड़के धर्म नहीं नुसानी लोग बतावे से पशु पखेरू मनुष्य मात्र सब

0: मामा भर्तृहरि अपनी बहन की इच्छा को पूरा करने के लिए उसे अपने गुरु जलंधरनाथ के डेरे पर ले गए। उदय के गोपीचंद की रानी पाटम दे को सपनाया और लगा कि उसका पति साधु के रूप में घर घर अलख जगा के भीख मांग रहे हैं।
1: ए राजा ते जोगी बड़े कैजो

ये सुना भाइयों, आज आपने हरियाणवी लोक रंग कार्यक्रम के तहत हरियाणवी गीत संगीत, इसी के साथ आज का हरियाणवी लोक रंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। सारे बहन भैया ने राम राम।

0: जादू उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात।

कार्यक्रम सुप्रभात में आज आपके लिए होगा आज का मौसम। गीता का एक श्लोक व्याख्या सहित कुछ ऐसी कहावतें जिन्हें हम भुलाते जा रहे हैं और एक प्रेरक प्रसंग। लेकिन शुरुआत करते हैं इस मधुर संगीत के साथ।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात आकाशवाणी हिसार से। अब बात आज के मौसम की। अगर हम हिसार में आज के मौसम की बात करें तो आज हिसार का तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक जा सकता है। सूर्योदय सुबह 5:39 पर हो चुका है और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 7:07 पर। नमी का स्तर 23% है, यानी बरसात के जो संभावना है बहुत कम है, और वायुमंडलीय दबाव 1008 के स्तर पर है।

और अब वक्त है आज के श्लोक का, जो कि हमें लिया है गीता के अध्याय 2 का 50वां श्लोक। योग है कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म को कुशलता और समर्पण से करना ही योग है। देखिए श्लोक का जो अर्थ है उसकी गूढ़ता को समझने की कोशिश कीजिए। जितने भी गीता में श्लोक दिए गए हैं उन सबके कई कई अर्थ हैं। गांधी जी ने तो कहा भी है कि जब जब मैं गीता को पढ़ता हूं तब तब मुझे एक नया अर्थ गीता का समझ में आता है। जब भी मैं जिंदगी में कहीं अटक जाता हूं तो हमेशा गीता मुझे एक नया रास्ता देती है। इसी तरह से सिर्फ जो शब्दशः मतलब है श्लोक का उसको समझने की बजाय हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम श्लोक के गूढ़ अर्थ को समझ पाए। जैसे कि ये श्लोक है, योग है कर्मसु कौशलम, यानी योग का अर्थ यही है कि आप कर्म की कुशलता और समर्पण से करना, कर्म को कुशलता और समर्पण से करना। अक्सर जब हम काम करते हैं तो आप देखिए हम पूरे दिन में शायद कुछ 1% काम ही है जिस को हम इस तरीके से करते हैं जैसा कि यहां पर लिखा गया है, कुशलता और समर्पण की भावना से करना। हम अधिकतर काम तो इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें करने हैं, कुछ काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो मजबूरी है। मुश्किल से 1% काम ही होता है जो हम कुशलता के साथ यानी अपना 100% देकर और समर्पण के साथ यानी पूरे सोल्ड होकर के उस काम को करते हैं। और जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपने कर्म को कुशलता और समर्पण के साथ करता है वही योगी है, वही योग है। गीता में तो भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि कर्म करना ही सबसे महत्वपूर्ण है, और कर्म कैसे करना है उसी को समझाया गया है इस श्लोक के अंदर कि कर्म को कुशलता से कीजिए और समर्पण से कीजिए।

आप मेरी उम्र के हैं तो जब हम बचपन में अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो हम बहुत सारी कहावतें पढ़ा करते थे, लोकोक्तियां पढ़ा करते थे, जो कि आज हमारे जीवन में कहीं ना कहीं गौण हो गई हैं, लेकिन बहुत बड़ा अर्थ था उन कहावतों का। अपनी बड़ी बात को छोटे शब्दों में, कम शब्दों में कह जाना ही कहावत है। आज हमने रील की दुनिया को तो एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन हम कहावतें कहीं छोड़ आए हैं। असल में रील कहावतों का पर्याय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कहावतों का अर्थ है जब हम कम शब्दों में गहरी बात कहें। आज जो मैं कहावत आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण कहावत है, सुनिएगा। भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, तीन चीजें याद रही, नून तेल और लकड़ी। ये कहावत मैं बहुत छोटा था तब मैंने सुनी थी ये कहावत। भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, तीन चीजें याद रही, नून तेल और लकड़ी। अक्सर ऐसा ही होता है कि हम बड़े युद्ध जीतने की तैयारी में जो छोटी जो लड़ाइयां हैं उनको महत्वपूर्ण बना देते हैं और बड़े युद्ध हार जाते हैं। हमेशा जिंदगी में ध्यान रखिए कि यदि आपको बड़े युद्ध जीतने हैं तो छोटी लड़ाइयों को हारना पड़ेगा। छोटी लड़ाइयों को जीतने के चक्कर में अक्सर लोग बड़े युद्ध हार जाते हैं। हम नून तेल और लकड़ी के जुगाड़ में भूल जाते हैं कि हमें कुछ बड़ा काम भी करना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, जो आपने भी देखे होंगे जिंदगी में, कि वो कुछ बड़ा करने की इच्छा तो रखते हैं परंतु उनके जो सारे प्रयास हैं वो उसी 2-5 में लगे रहते हैं कि बस मेरा इस महीने का जुगाड़ हो जाए, मेरा आज का जुगाड़ हो जाए। तो इस कहावत का अर्थ यही है कि यदि आपको जिंदगी में बड़े युद्ध जीतने हैं तो छोटी लड़ाइयों की परवाह करना छोड़ दीजिए।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: और अब आज का प्रेरक प्रसंग। ये बात है एक जंगल की, जब एक जंगल में आग लगी और सभी जानवर जो है वो अपना अपना सामान लेकर भागने लगे, लेकिन एक चिड़िया जाने को तैयार नहीं। चिड़िया जो है वो सोच रही, मैं क्या करूं, सब भाग रहे हैं, हाथी, बंदर, गधे, जिराफ, सब भाग रहे हैं, चूहे, सब भाग रहे हैं, परंतु एक चिड़िया जो है वो जाने को तैयार नहीं। चिड़िया जो है वो कुछ कुछ पानी ला रही है पोखर से और डाल रही है किसी एक डाल पर, किसी एक पत्ते पर। बंदर ने जब चिड़िया को देखा तो पूछा, तुम्हें लगता है कि तुम इस आग को बुझा पाओगी? तो चिड़िया ने जो जवाब दिया वो वाकई हम सबके लिए सोचनीय है। चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूं मैं आग नहीं बुझा पाऊंगी, लेकिन इतिहास जब लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, भागने वालों में नहीं होगा। दोस्तों सोचिए, क्या वाकई में आप इस बात पर गौर कर रहे हैं कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो आपका नाम कहां होगा? आकाशवाणी हिसार से भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात, सुबह के 8 बजने को है। समाचार प्रभात के लिए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य की राजनीतिक

इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी

0: बंगाल की जनता को दें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
0: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवी के ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय

0: विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
3: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manavka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर एआई समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है चैटबॉट है नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक एआई चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिन्दुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। स्वयंभू अधिकारी आज सुबह मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लिया।

श्रोताओ नमस्कार। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं शेफाली कपूर। वेरी गुड मॉर्निंग।

हौले हौले हो जाएगा प्यार, रब ने बना दी जोड़ी फिल्म के इस गाने के साथ शुरुआत हुई आज के चित्रलोक कार्यक्रम की। सुखविंदर सिंह की आवाज, जयदीप सहनी के बोल थे, सलीम सुलेमान का म्यूजिक, और अब कृष्णा सोलो का संगीत क्या कहता है, आइए सुना जाए।

कृष्णा सोलो का ये संगीत आप सुन रहे थे। राजशेखर ने इस गाने को लिखा था, ज्योति मूरंग की आवाजें थी और फिल्म का नाम तो आप जान ही गए होंगे, तनु वेट्स मनु। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

सुनिधि चौहान की आवाज में आप धूम टू फिल्म का गाना सुन रहे थे। समीर के बोल थे प्रीतम का म्यूजिक। जी हाँ, यहाँ ले लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा अंतराल।

इस छोटे से अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हो गए और एक बार फिर से आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज एक दिन विशेष है और वो विशेष दिन है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। साथियों, पक्षी प्रकृति का अनोल अमोल उपहार होते हैं। उनकी मधुर चहचहाट वातावरण को बहुत खुशहाल बनाती है। सुबह की शुरुआत पक्षियों की आवाज से होती है जो हमें ऊर्जा और आनंद का अनुभव कराती है। ये केवल सुंदर ही नहीं होते बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जो प्रतिवर्ष प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। प्रवासी पक्षी प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये मौसम, भोजन और सुरक्षित वातावरण की तलाश में हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। साथियों, पक्षी एक तरह से प्रकृति के दूत हैं, इसलिए प्रवासी पक्षियों के सुरक्षित प्रवास को बढ़ावा देने के लिए पारिस्थितिक संबंध और अखंडता को बहाल करना बहुत आवश्यक है। प्रवासी पक्षियों की रक्षा करना और उन्हें सुरक्षित माहौल देने के बारे में लोगों को जागरूक बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का आयोजन किया जाता है। और अब हम बढ़ेंगे आज के चित्रलोक कार्यक्रम के अगले गाने की ओर, जहां पक्षी चहचहा रहे हैं। सुनिए इसे।

0: उदित नारायण का गाया सिर्फ तुम फिल्म से ये गाना था। समीर के बोल थे और सुरीला संगीत था नदीम श्रवण का।
1: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
2: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए, ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसका आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

दिल में उतरती आवाज अरिजीत सिंह की, इनकी गायकी का अंदाज भी अलग है। गदर टू फिल्म का गाना आपने सुना, सईद कादरी के बोल थे, मिथुन का संगीत, और अब एक छोटा सा अंतराल।

ये छोटा सा अंतराल था, पलक झपकते ही पूरा हो गया और हम फिर से हाजिर हो गए चित्रलोक कार्यक्रम में। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। साथियों, आज है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य, कला और शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्वितीय प्रतिभा थे। वे एक मानवतावादी विचारक थे जिन्हें प्रकृति से गहरा लगा।

0: परिणीता फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें थी, स्वानंद किरकिरे के बोल, शांतनु मोहित्रा का मीठा संगीत और इसमें बात थी पीयू बोले, बहुत ही प्यारा गाना था ये। साथियों, ये पक्षी, इनकी परवाज, इनकी चहचहाहट, इनका सौंदर्य तो बस देखते ही बनता है। सच मानिए, कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है। प्रकृति के साथ कुछ लम्हे गुजारिए ना, जिंदगी में चारों ओर खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। अगला गाना हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए अब एक संदेश की ओर बढ़ जाते हैं।
1: एक बेमिसाल शायर।

0: स्वर्णिम दौर था उस टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चयन से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
0: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस पर इंडिया में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने

0: एक शानदार शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
1: वो मेरे पूरे करियर का

0: श्रेया घोषाल और अजय गोगावले की आवाजों में सिंघम फिल्म का ये गाना था। स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अजय अतुल का संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

इस छोटे से अंतराल के बाद चित्रलोक कार्यक्रम में अब बजेगा प्रीतम का संगीत, नीलेश मिश्रा के बोल, के की आवाज में वो लम्हे फिल्म का ये गाना।

ये संगीत है विशाल शेखर का, जावेद अख्तर के बोल हैं, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें। बहुत खूबसूरत गाना, एंजॉय कीजिए कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर।

जावेद अली की आवाज, प्रीतम का संगीत, समीर के बोल, नकाब फिल्म का ये गाना था आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और अब आज के लिए शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ ब्यूटीफुल डे, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रही हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

एक ऐसी आवाज जिसका फिल्म संसार में कभी कोई जोड़ नहीं आया, एक आवाज जो अपने आप में निराली है, जो हमारी तन्हाइयों और हमारी उदासियों की साथी है।

तलत महमूद का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मंजूर अहमद थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंडित एस सी आर भट्ट से मॉरिस कॉलेज लखनऊ में तालीम ली। ये दौर था सन 1920-1930 का। तलत महमूद शास्त्रीय और सुगम संगीत की तालीम ले रहे थे। सन 1939 तलत महमूद ने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में तलत महमूद गजलें गाने लगे। ये वो दौर था जब तलत महमूद दाग, मीर, जिगर, मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज जैसे शायरों के अशार आकाशवाणी लखनऊ के लिए रिकॉर्ड करवाया करते थे। इसके बाद तलत महमूद चले गए कोलकाता। कोलकाता में एचएमवी के लिए तलत महमूद गाने लगे तपन कुमार के नाम से। उन्होंने वहां कई रचनाएं रिकॉर्ड करवाई। सन 1941 तलत महमूद की पहली डिस्क आई और ये वो गाना था जिसने उन्हें बेहद मशहूर कर दिया। गाने के बोल थे, सब दिन एक समान नहीं था।

दलित महमूद ऐसे चुनिंदा गायकों में से थे जिन्होंने गैर फिल्मी गजलें और गीत गाकर वो शोहरत हासिल की थी जो लोग फिल्मी गाने गाकर करते हैं। यहां तक

तलत महमूद ने फिल्मों में गाना शुरू नहीं किया था। तलत महमूद को फिल्मों में अभिनय का भी शौक रहा। अपने करियर में तकरीबन 16 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। कोलकाता में बनी 3 फिल्में तो बड़ी ही कामयाब रहीं। तपन कुमार के नाम से वो बांग्ला में कुछ गीत भी रिकॉर्ड करवाते थे और अमूमन उनके संगीतकार हुआ करते थे कमल दास गुप्ता। सन 1949 में तलत महमूद मुंबई आ गए। उनका मकसद था फिल्मों में गाने गाना। यहाँ आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल बिस्वास से मुलाकात की। अनिल बिस्वास को तलत की आवाज जम गई और फिल्म आरजू में आया उनका

गाने से तलत महमूद की फिल्मी कामयाबी का सफर शुरू होता है। इसके बाद तलत महमूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कई बेमिसाल फिल्मों में उनके गाने आए और लोगों ने इन गानों को बड़ा मशहूर किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब तलत महमूद को अपनी आवाज की लर्जिश पर भरोसा नहीं था। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल विश्वास के लिए तलत बिल्कुल सपाट गा रहे थे, तब अनिल विश्वास ने उन्हें जोर से डांटा था और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारी आवाज की ये जो लर्जिश है, ये जो कंपन है, यही तुम्हारी ताकत है। और उसके बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ तलत महमूद ने गाया। उनकी आवाज का ये कंपन उनकी खासियत बन गया। आइए सन 1957 में आई फिल्म देख कबीरा रोया का ये गाना सुना जाए।

तलत महमूद ने बहुत सारे संगीतकारों के साथ गाया। उनकी आवाज का एक खास टेक्सचर था, उनकी आवाज का एक अलग ही रंग था और दिलीप कुमार जैसे नायकों पर उनकी आवाज ली गई। आइए सुना जाए सन 1952 में आई फिल्म दाग का गाना।

संगीतकार सलील चौधरी के लिए तलत महमूद ने सन 1961 में लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाया फिल्म छाया के लिए। आज भी ये फिल्म संसार के कुछ बेमिसाल गानों में से एक है।

1959 में सुनील दत्त के लिए फिल्म सुजाता में तलत महमूद ने ये गाना गाया था। हीरो टेलीफोन पर हीरोइन से अपने मन की बात कह रहा है।

अब संगीतकार मदन मोहन के साथ तलत महमूद के गानों की बात की जाए और आपको सुनवाया जाए सन 1964 में आई फिल्म जहां आरा का ये गाना।

मदन मोहन ने एक बेमिसाल गाना तैयार किया जिसमें तलत महमूद के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और भूपेंद्र की भी आवाजें थीं। ये था फिल्म हकीकत का गाना, सुनिए।

0: क्या,
1: यानी फिल्मों में गायकी, गैर फिल्मी गाने, गीत और गजलें और एक्टिंग, इतना सब किया तलत महमूद ने। उन्होंने सारी दुनिया में घूम घूम कर अपने संगीत कंसर्ट भी किए। तलत महमूद का करियर काफी लंबा रहा। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 800 गाने गाए हैं। अपनी खास तरह की आवाज, अपने खास तरह के अंदाज के लिए आज भी सुनने वाले उन्हें बेहद प्यार कर

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक तलत महमूद पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे आज के फनकार विविध भारती से। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम नमस्ते हिसार। आज के नमस्ते हिसार में होंगे दो प्रश्न आपके लिए, साथ ही बात करेंगे हिसार और उसके आसपास की किसी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ।

वेलकम बैक, मैं हूं आनंद। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते हिसार, आकाशवाणी हिसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आज सुबह जब मैं आ रहा था स्टूडियो तो मुझे महसूस हुआ कि हमें रुककर एक बार फिर से बात करने की जरूरत है स्वच्छता के ऊपर। जी हाँ, स्वच्छता अभियान तो हमने शुरू किया, लेकिन हम कहाँ तक पहुंचे और हम कितना उस पर काम कर पा रहे हैं, इस बारे में बात करने की जरूरत है। तो आज के शो में हम बात करेंगे स्वच्छता के ऊपर, और यहीं से जो आज के दो प्रश्न हैं वो आपके लिए हैं। पहला ये कि स्वच्छता अभियान कब शुरू हुआ, एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में हिंदुस्तान में कब शुरू हुआ, और दूसरा ये कि उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। आज बात होगी स्वच्छता की और भी बहुत कुछ, साथ ही होगा आपका फेवरेट संगीत, आपका पसंदीदा संगीत, और कुछ मैसेजेस मेरे पास आने शुरू हो गए हैं। देखिए, आप लोग वेट ही कर रहे थे मेरे सवाल का, तो बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मैसेज पढ़े हैं वापस आकर के। अभी तो एक बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया है मुझे सुधाकर, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वद और सानवी ने, जाफराबाद ग्राम पंचायत कालीगांव जाफराबाद से, कह रहे हैं कि पशु पक्षियों के लिए हमें दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे आंगन में पशु पक्षी हमारे आंगन में दाना पानी की व्यवस्था हम हमेशा करते हैं, और आज पक्षी का दिन है, आज पक्षी दिन है, अच्छा आज जागतिक पक्षी का दिन है, और इसी वास्ते आज के दिन में आज के दिन का हमें हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, और पशु पक्षियों के लिए हमें दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए अपने आंगन के अंदर, अपने घर के अंदर। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। मैंने आपसे पूछा है कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत किस दिन कब हुई और उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। आनंद को सुन रहे हैं आप आकाशवाणी हिसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। नंबर मेरा 9729253272, यानी 97292 53272।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार FM 102.3 MHz पर। मैं हूं आनंद और कार्यक्रम का नाम है नमस्ते हिसार। आज हम बात कर रहे हैं स्वच्छता की और हमें बात करनी भी चाहिए। यदि आप हिसार में रहते हैं और यदि आप अपने आसपास अपने गली मोहल्ले में अपने शहर की सड़कों को देख पा रहे हैं तो वाकई में आज हमें जरूरत है इस मुद्दे पर बात करने की, यानी स्वच्छता के ऊपर बात करने की। कैसे रखा जाए अपने शहर को स्वच्छ, कैसे रखा जाए अपने शहर को कचरा मुक्त, इसी बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और मैंने आपसे पूछा सवाल कि पहला सवाल तो ये है कि स्वच्छता भारत अभियान कब शुरू किया गया, दूसरा उसका उद्देश्य क्या था, और साथ ही मैं आपसे बात करना चाहता हूं सिक्किम के बारे में। जानते हैं आपके 21 जुलाई 2024 को सिक्किम सरकार ने एक अहम फैसला लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था ये, जिसके तहत उनके राज्य में यानी सिक्किम के अंदर, आप जानते हैं कि सिक्किम पूरे देश के अंदर, इनफैक्ट विदेशों के अंदर भी सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला स्टेट है। सब लोग वहाँ जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर प्रकृति इतनी खूबसूरत है कि हर कोई चाहता है कि वहाँ पर जाकर आए, तो बहुत सारा पर्यटन जो है वहाँ पर होता है। तो 21 जुलाई 2024 को सिक्किम सरकार ने एक फैसला लिया कि राज्य में आने वाले हर पर्यटक वाहन में एक बड़ा कचरे का बैग यानी कि गार्बेज बैग रखना अनिवार्य कर दिया गया। इस कदम के पीछे सरकार का मकसद यह था कि पर्यटकों द्वारा सड़क पर या इधर उधर कचरा ना फेंका जाए। रुकिए, दो मिनट रुकिए और सोचिए, जब आप बाहर जाते हैं तो आप कहीं घूमने जाते हैं क्या करते हैं, पानी की बॉटल पानी पिया और सड़क किनारे फेंक दी, कहीं बैठ के आपने कुछ खाया और वो कचरा वहीं फेंक दिया, या गाड़ी में चलते हुए आपने कुछ खाया और जो पॉलिथीन है वो उड़ा दिए गाड़ी के अंदर से ही बाहर उड़ा दिए। तो इस सब को रोकने के लिए जो वहाँ की सरकार है उसने इस बात को इंश्योर किया कि एक गार्बेज बैग रखना अनिवार्य मैंडेटरी कर दिया, जो नहीं रखेंगे उनके ऊपर फाइन लगेगा। और इसका मकसद ये था कि पर्यटकों द्वारा सड़क पर या इधर उधर कचरा ना फेंका जाए बल्कि उसे गार्बेज बैग में एकत्र कर कूड़ेदान में डाल दिया जाए। सरकार की इस पहल का सकारात्मक असर देखने को मिला और आज हालत यह है कि वहाँ पर जितने भी सैलानी हैं वो सब गाड़ियों में गार्बेज बैग लेकर चलते हैं। इनफैक्ट जब वो पैदल भी निकलते हैं घूमने के लिए तो मैंडेटरी है कि आप कोई कचरा ना फैलाएं। डू थिंक हमें भी ज़रूरत है इस बात के ऊपर अमल करने की। फिर चाहे सिक्किम हो या हरियाणा, सब कुछ साफ किया जा सकता है बशर्ते कि हम थोड़ा सा एफर्ट करें। ऐसी बात वापस आए करेंगे, लेकिन साथ ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन से वो दो सवालों के जवाब हैं वो आप मुझे भेजिए। पहला नंबर सवाल ये है कि कब भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई, दूसरा उसका उद्देश्य क्या था, और तीसरा मेरा नंबर जो कि है 9729253272 यानी 9792523272। आनंद को सुन रहे हैं आप आकाशवाणी हिसार FM 102.3 MHz पर।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान सब आपकी एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।

एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्ते हिसार में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आकाशवाणी हिसार FM 102.3 MHz पर मेरे यानी आनंद के साथ। आज हम बात कर रहे हैं स्वच्छता की, क्योंकि आज उसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। यदि आप हिसार में रहते हैं, यदि आप हरियाणा में रहते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि क्यों बात करने की ज़रूरत है। यदि हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि आज इस बारे में बात करने की ज़रूरत है। और इसी से जुड़ा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई और उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। ये दो सवाल है मेरे आज के इस कार्यक्रम के लिए। नंबर मेरा है 9729253272 यानी 9792253272। आज हम बात कर रहे हैं सिक्किम की। क्यों? क्योंकि सिक्किम जो है उसको भारत के सबसे स्वच्छ और साफ सुथरे राज्यों में से एक माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था वहां पर एक गार्बेज बैग मॉडल जो है वो बहुत प्रसिद्ध हुआ है और बहुत ही कामयाब है, जिसकी वजह से जितने भी पर्यटक हैं उनको मैंडेटरी कर दिया गया, उनके लिए जरूरी कर दिया गया कि जब वो यहाँ पर घूमे, सिक्किम में घूमे, तो उनके पास एक गार्बेज बैग होना चाहिए। और दूसरा जो सिक्किम के साफ सुथरा होने का जो फैक्टर है वो ये है कि सिक्किम देश का पहला पूर्ण जैविक राज्य है, यानी टोटल ऑर्गेनिक राज्य है। यहाँ पर रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिससे पर्यावरण और मिट्टी साफ रहती है। थोड़ा टेक्निकल हो गया। एक और जो चीज है वो ये है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनकी भागीदारी बड़ी कमाल की है सिक्किम को साफ रखने में। यहाँ के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हैं, सफाई को लेकर यहाँ एक संस्कृति बनी हुई है। ये लाइन कितनी खूबसूरत है कि स्वच्छता को लेकर एक संस्कृति बन गई, यानी उन्होंने अपने वैल्यूज में, अपने मूल्यों में इस बात को डाल लिया है कि हमें हमारे जगह को, हमारे प्रदेश को साफ रखना है, हमारे शहर को, हमारे गांव को साफ रखना है, और ये उनकी संस्कृति बन गई है। आप समझिए इस बात को। हमारी संस्कृति, हरियाणवी संस्कृति जो है, यदि उस संस्कृति का एक पार्ट बन जाए स्वच्छता, तो ये कितनी बड़ी बात है। फिर कभी भी कोई भी राज्य, कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी गांव, कोई भी गली, कोई मोहल्ला कभी गंदा होगा ही नहीं, यदि हम उसको अपनी संस्कृति में ढाल सकते हैं। तो यहां पर युवा और आम नागरिक खुद सफाई अभियान में भाग लेते हैं। सिक्किम की बात कर रहा हूं मैं। तो वाकई काफी कुछ सीखने की जरूरत है और हमें याद रहे

कि हमें अपने देश, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर, अपनी गली को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। इसीलिए मैं आज ये सवाल पूछ रहा हूं कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत कब हुई और उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। 97-292-53-272 आनंद को सुन रहे हैं आप आकाशवाणी हिसार FM बैंड 102.3 MHz पर।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते हिसार, आकाशवाणी हिसार एफ एम 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर, मेरे यानी आनंद के साथ। आज हम बात कर रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन यानी राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के बारे में। और आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कब शुरू हुआ था यह आंदोलन और इसका उद्देश्य क्या था। बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे हमें इन्फॉर्मेशन दी है गांव जेवरा से वीरेंद्र भयान, शमशेर भयान, सुरेंद्र भयान और मनोज भयान ने कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत से लेकर अब तक पूरे भारत में स्वच्छता और साफ सफाई में काफी सुधार हुआ है। लाखों शौचालय का निर्माण हो चुका है। कई गाँवों, शहरों और जिलों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। इस अभियान ने स्वच्छता के बारे में जागरूकता भी बढ़ाई है। बेशक सही कह रहे हैं आप। एक और मैसेज हमारे पास आया है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से टिंकू दीवाना और राजेंद्र सिंह ने भेजा है मैसेज। एक मैसेज हमारे पास आया है जो कि हमें भेजा है खरक पुनिया से मनदीप सिंह, नसीब, मीनू, बबलू, शगुन और उनके पूरे परिवार ने कहते हैं कि हर गर्मी के सीजन में हम कम से कम 10 बर्तन पक्षियों और पशुओं के लिए खाना और पानी के लिए लगाते हैं। बहुत बढ़िया करते हैं आप, बाकी सब लोगों को भी करना चाहिए जो सुन रहे हैं। और कुछ कुछ लोगों ने मुझे जवाब भी भेजे हैं, वो मैं कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा किस किस का सही जवाब था। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा ने मुझे मैसेज भेजा है लेकिन उन्होंने मुझे जवाब लिखकर नहीं भेजा है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आप इस सवाल का जवाब दें तो सुनिए सवाल। सवाल यह है कि किस दिन शुरू हुआ था हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान, और दूसरा सवाल यह है कि उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। आनंद को सुन रहे हैं आप आकाशवाणी हिसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। नंबर है हमारा 9729253272।

से पूछा था कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी और उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। सही जवाब है 2014 में हुई थी और मुख्य उद्देश्य था भारत को खुले में शौच मुक्त करना। सही जवाब जो है वो हमें तीन लोगों ने भेजे हैं। सबसे पहले हमें भेजा है गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बीबी कीरत, इन्होंने भेजा है। दूसरा जवाब जो हमें सही भेजा है वो भेजा है सुंदरनगर हिसार से मयूर पंकज शिवम प्राची नैन्सी सुलेख और सुरेश ने। और तीसरा जवाब जो हमें सही भेजा है वो भेजा है मंटू शर्मा शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। तो इन सबके लिए

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते हिसार, आकाशवाणी हिसार FM 102.3 MHz पर। सुबह के 11 बजने को है, आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं तलत महमूद की आवाज में ये गजल।

0: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी की लिखी गजल अभी आपने सुनी। स्वर लता मंगेशकर का था और ये फिल्म थी गजल।
1: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
2: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से

करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसका आपको आईवी लगाना पड़े या ORS आपको ऑलरेडी टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

सुरैया की आवाज थी और फिल्म का नाम था मिर्जा गालिब। गुलाम मोहम्मद की संगीत निर्देशन में ये गालिब की रचना थी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल। खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में बशर नवाज का लिखा गुलाम है ये, आवाज भूपेंद्र की और फिल्म का नाम है बाजार।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितने

पेशी खिदमत है कार्यक्रम की अगली गजल। शहरयार साहब की ये रचना है, सुरेश वाडेकर की आवाज में, फिल्म गमन से हमने ली है। संगीतकार हैं जयदेव।

सुरेश वाडेकर की आवाज में अभी आपने फिल्म गमन की ये गजल सुनी और इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म शंकर हुसैन की ये गजल सुनवा रहे हैं, रचना जानिसार अख्तर की और संगीत खयाम साहब का।

लता मंगेशकर की गाय फिल्म शंकर हुसैन की इस गजल के साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। और आज दोस्तों हम आपको बता दें, आज है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और इसका उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनके आवासों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। यानी जो 2026 की थीम है वो है हर पक्षी मायने रखता है, आपका अवलोकन महत्वपूर्ण है। तो ये जो पक्षी हैं वो वाकई हमारे जीवन में, इस समाज में, इस संसार में, इस दुनिया में बहुत मायने रखते हैं। और फिल्मी दुनिया में भी गीतकारों ने, फिल्मकारों ने इन पक्षियों को अपनी फिल्मों में स्थान दिया है। तो आज मैटिनी शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही खूबसूरत मधुर गीत जहाँ कहीं न कहीं किसी न किसी पक्षी का जिक्र है। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं शमशाद बेगम की आवाज में फिल्म आग का गीत। गीतकार हैं बहजाद लखनवी और संगीत राम गांगुली का है। हम आपको बता दें 1948 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म है ये आग, जो बहुत ही लोकप्रिय और भावनात्मक फिल्म रही। और बहजाद लखनवी ने इसमें गीत लिखे और राम गांगुली ने इसका जो संगीत पक्ष है उसे संगीतबद्ध किया। ये गाना नरगिस और राज कपूर पर फिल्माया गया था। दोस्तों ये गाना विरह और पुरानी यादों के दर्द को कोयल की आवाज के साथ जोड़ता है। जैसे कि देखिए ना, कोयल की बोली हमें सुकून देती है ना, कोयल की जो मिठास है वो दिल को भाने वाली होती है। लेकिन जब आप परेशान होते हैं, प्रेम में डूबे होते हैं, विरह में होते हैं, तो ये आवाज भी हमें खलती है। बस यहाँ नायिका की यादों को जगाकर उसे शोर के रूप में ये कोयल की आवाज नायिका को प्रतीत हो रही है। तो ये गीत जो है फिल्मों के शुरुआती दौर के सबसे भावपूर्ण गीतों में से एक माना जाता है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

शमशाद बेगम की आवाज में अभी आपने फिल्म आग का ये गीत सुना। गीतकार थे बहजाद लखनवी और संगीतकार थे राम गांगुली। हमारी फिल्मों में हमारे गीतकारों ने जिन गीतों को लिखा उसमें पक्षियों को कई बार प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। एक ऐसा ही गीत है फिल्म माया का, लता मंगेशकर ने इसे आवाज दी है। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और सलील चौधरी की धुन है। वियोग अकेलेपन और पुरानी यादों के साथ साथ एक नई शुरुआत को दर्शाता है ये गीत। दोस्तों आपने फिल्म देखी होगी माया, जहां माला सिन्हा और देवानंद पर ये गीत फिल्माया गया है और माला सिन्हा और देवानंद की जो जोड़ी है बहुत ही खूबसूरत लगती है। यह गीत गहरे दुख और अकेलेपन को दर्शाता है और पंछी यानी प्यार या उम्मीद जिसे हम कहते हैं वहां से जाने को कहता है कि जहां बाहर है वहां तुम चले जाओ, जहां खुशियां हैं वहां चले जाओ पंछी, क्योंकि यहां तो सिर्फ दुख ही दुख है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म माया का ये खूबसूरत गीत।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: जी हाँ, मनचाहे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे आज दोपहर 3 बजे। तो दोस्तों, मैटिनी शो में आज हम बात कर रहे हैं पंछियों पर, कि किन गीतकारों ने किन किन फिल्मों में इन पंछियों का सहारा लिया। 1950 की एक फिल्म है बाबुल, उस फिल्म का एक गीत आपको याद होगा, पंछी बन में पिया पिया गाने लगा। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है, एक अमर प्रेम गीत बन गया है, और इसे महान संगीतकार नौशाद साहब की धुन पर शकील बदायूं ने लिखा था और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी। ये गीत नायिका की पहली प्रेम की अनुभूति और उसके खिलखिलाते हुए मन की कोमल भावनाओं को दर्शाता है। मतलब इस गीत का जो मूल भाव है वो विरह या दर्द नहीं, बल्कि पहली बार हुए प्रेम का उत्साह और आनंद है। जब नायिका को अपने प्रिय से प्रेम हो जाता है तो उसे पूरी प्रकृति में प्यार का संगीत सुनाई देता है। और जहां तक बात है कि पिया पिया गाने लगा पंछी बन के मन, तो जहां तक हम समझते हैं गीतकार के लिखने का उद्देश्य रहा होगा कि इस गीत में पंछी को नायिका के मन की स्वतंत्रता और प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में गीतकार ने

दर्शाया होगा कि जैसे जंगल में पंछी अपने साथी को पुकारता है और पंछी के माध्यम से कवि ने यह दर्शाया है कि प्रेम में बंधने के बाद नायिका का मन, जो पंछी रूपी मन है, वो सांसारिक बंधनों को छोड़कर अपने प्रेमी की दुनिया में उड़ जाना चाहता है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है बाबुल।

जी तो दोस्तों मैटिनी शो में अब हम आगे बढ़ते हैं और फिल्म चोर मचाए शोर जो कि 1974 की फिल्म है उसका एक गीत है, कौन सा बताइए। जी हाँ बिल्कुल सही कहा, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना, एक बेहद प्यारा और रोमानी युगल गीत है। और इस सदाबहार गाने में जो नायक और नायिका है शशि कपूर और मुमताज के बीच के प्यारे पलों को दिखाया गया है। और जहां तक गीत की बात है लगता है कि ये गीत रूपक के माध्यम से कुछ बातें कहता है, जैसे कि गाने में तोता और मैना दो अलग अलग डालियों पर बैठे हैं जो नर और मादा के एक प्रतीकात्मक रूप है और ये इस बात पर दर्शाता है कि भले ही प्यार में आप दूर हो लेकिन जो प्यार है बीच का प्यार है वो अटूट और सच्चा होता है। गीतकार ये कहना चाहता होगा कि भले ही प्रेमी प्रेमिका तोता मैना के रूप में दूर दूर बैठे हूँ लेकिन प्रेमी प्रेमिका के बीच जो प्यार है वो अटूट और सच्चा है। और तोता और मैना के उदाहरण से गीतकार ये समझाना चाहते हैं कि दो लोगों का जीवन एक दूसरे के साथ ही संपूर्ण होता है और एक के बिना दूसरे की कल्पना अधूरी लगती है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। आवाज़ी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीतकार और

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

मटनी शो की आखिरी पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया का गीत। प्यार, वियोग और संदेश भेजने की जिस तरह से मासूम भावना को दर्शाता हुआ ये गीत है कबूतर जा जा जा। और ये गीत मुख्य रूप से नायिका द्वारा नायक को अपने दिल की बात पहुंचाने की तड़प को दिखाता है। नायिका एक कबूतर को अपना प्रेम दूत बनाती है और उसे अपने प्रेमी के पास पहले प्यार की पहली चिट्ठी ले जाने को कहती है। आइए सुनते हैं असद भोपाली का लिखा ये गीत जिसे संगीत में ढाला है राम लक्ष्मण ने।

0: ये था आज का मैटिनी शो। आप सुन रही हैं विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के क्रिकेट परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब। भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
1: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 वैशाख गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल एसएन राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की 2री राष्ट्रीय लोक अदालत का

आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं

सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में अभी आपने राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत सुना। स्वर तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। फिल्म का नाम था छाया। कार्यक्रम का अगला गीत तलत महमूद और लता मंगेशकर का ही गाया हुआ। ये फिल्म है उसने कहा था। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं सलील चौधरी।

कार्यक्रम का अगला गीत तलत महमूद की आवाज में फिल्म दाग से सुनिए। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा यह गीत सुना। स्वर थे तलत महमूद और शमशाद बेगम की। फिल्म का नाम था बाबुल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जब जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितने

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितने

लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सुजाता से सुनिए, आवाज तलत महमूद की। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म फुटपाथ का गीत। तलत महमूद ने इसे आवाज दी है, सरदार जाफरी की रचना और खयाम साहब की धुन है।

0: भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे क्यों है? क्योंकि इनको प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर
2: तलत महमूद की आवाज में फिल्म संग दिल का गीत सुनिए, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सज्जाद हुसैन का संगीत।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा गीत सुनिए। युगल स्वर तलत महमूद और आशा भोंसले की ये फिल्म है बूट पॉलिश।

0: सज धज के
1: चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के।
2: एक बेमिसाल शायर
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
2: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
2: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
2: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
2: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर
1: जाने के

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म टैक्सी ड्राइवर से हमने लिया है। इस गीत को आवाज तलत महमूद ने दी है, रचना साहिर लुधियानवी की और धुन सचिन देव बर्मन की।

कार्यक्रम में अब सुनिए रवि के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन की रचना, तलत महमूद की आवाज है, फिल्म का नाम एक साल।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम मोहम्मद के संगीत निर्देशन में शकील बदायूं का लिखा गीत, तलत महमूद की आवाज है और ये फिल्म है दिले नादा।

0: तो लीजिए सुनिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सुरीला सफर के सभी सुनने वालों को आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे और हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए यानी सुरीला सफर करने के लिए तैयार बैठे हैं। सफर में हमारे साथ है ना आप? तो इस सफर में चलने की तैयारी आपने कर ली है हमेशा की तरह। रुकिए रुकिए रुकिए, पहले आज की इबारत तो पढ़ लीजिए। पढ़ ली आपने? अच्छा, जो लोग फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने तो हमारी इबारत पढ़ ली होगी, लेकिन वो दोस्त वो श्रोता जो फेसबुक पेज से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें हम बता दें, आज की इबारत है, एक बेनाम जिंदगी जीते हुए आदमी बेशक मुख्य धारा से दूर हो सकता है पर किसी की आत्मीय पुकार उसमें मोह का बीज पैदा कर सकती है, तब वो मुसाफिर पुरानी गली छोड़ जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हुए सफलता की चोटी छू सकता है। बहुत ही सीधी साधी इबारत है आज की, है ना? लेकिन हमारे श्रोता परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए हमने आज ये कोशिश की है कि आज इस इबारत में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिन पर आधारित है हमारे आज के गीत, उनका जिक्र भी हम कर देते हैं। हाँ, एक खुशी की बात है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने वो शब्द लिखे भी हैं जो आज की इबारत में हमने रखे हैं।
1: हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रादेशिक समाचारों के लिए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी चंडीगढ़। अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। देश भर में 11 मई को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पूरे देश भर में मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ पवित्र मंदिर के प्रांगण से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार का कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अरुणाई पिहोवा स्थित संगमेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। उपायुक्त ने बताया कि इस दिन जिले के सभी मंदिरों को सजाया जाएगा। पलवल जिले में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 21 करोड़ रुपए की लागत से नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम का नवीनीकरण किया जा रहा है। जिला खेल अधिकारी खुशवंत सिंह ने बताया कि स्टेडियम में फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, एथलेटिक्स ट्रैक, टेनिस मैदान बनाया जा रहा है।
1: अलवर में पहली बार 49 खेलों की नर्सरियां लोड हुई, जो कि बहुत बड़ा कदम है सरकार द्वारा। इसमें अब कम से कम 2000 बच्चे सुबह शाम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ सरकार द्वारा यहाँ ग्राउंड की सुविधा दी जा रही है। इंडोर स्टेडियम सेंट्रलाइज एसी लग रहा है। ग्राउंड में प्यू फ्लोरिंग करवाई जा रही है, तो उसमें मल्टीपल स्पोर्ट्स खेला जाएगा। आउटडोर में फुटबॉल, हॉकी ग्राउंड, सिंथेटिक ट्रैक, वॉलीबॉल के सिंथेटिक ट्रैक, इवन टेनिस का ग्राउंड भी बनवा रहे हैं हम।
0: उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा के अनुसार जिले में एक नया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाया जा रहा है, जो बहरौला गांव में 124 एकड़ जमीन पर विकसित होगा। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षा में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए मुख्यमंत्री मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की है, जिसमें उन्हें प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर भोजन दिया जाएगा। उन्हें दूध व प्रोटीन युक्त चॉकलेट दी जाएगी। चॉकलेट और दूध बच्चों को वार के हिसाब से दी जाएगी, यानी कि एक दिन दूध तो दूसरे दिन चॉकलेट दी जाएगी। करनाल जिले में गेहूं की पराली जलाने के आरोप में 8 किसानों के खिलाफ 9 एफआईआर दर्ज की गई है। करनाल के कृषि उपनिदेशक डॉक्टर वजीर सिंह ने बताया कि जिले में अब तक पराली जलाने की 172 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें से 130 घटनाएं आकस्मिक पाई गई, 24 में आग नहीं लगी, 2 घटनाएं वन क्षेत्रों में हुई है। उन्होंने बताया कि 9 मामलों में जानबूझकर आग लगाने की पुष्टि हुई है, जबकि 7 मामलों की अभी भी जांच चल रही है। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर सफाई कर्मचारियों की सभी जायज मांगों बारे जल्द ही समाधान करवाने की कोशिश की जाएगी। कैबिनेट मंत्री कल नगर परिषद कार्यालय नरवाना में बुलाई विभागीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उन्होंने नगर परिषद नरवाना के अंतर्गत आने वाले शहर के मंजूर हुए विकास कार्यों का सिलसिलेवार जायजा लिया और अधिकारियों को इनमें गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नरवाना शहर के संपूर्ण विकास के लिए विकास कार्यों का रोडमैप तैयार किया जा चुका है। भविष्य में सभी विकास परियोजनाओं के पूरा होने पर शहरी तरक्की का नया सफर तय करेगा। मंत्री ने बताया कि पिछले दिनों सदन की बैठक में शहर के विकास कार्यों के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नए नगर परिषद के 46.6 करोड़ रूपये का सालाना बजट पास किया गया है। कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने बैठक के बाद सफाई कर्मचारी प्रतिनिधि मंडल से भी मिले और उनका मांग पत्र लिया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी सभी जायज मांगों बारे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जल्द ही समाधान करवाने की कोशिश की जाएगी। हरियाणा राज्य सरकार ने आगामी रबी सीजन के लिए किसानों को समय पर प्रमाणित गेहूं बीज उपलब्ध करवाने हेतु अग्रिम तैयारियां शुरू कर दी हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कल उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद बताया कि बीज पैकिंग के लिए लगभग 4 करोड़ रूपये की लागत से बैग खरीदने को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय बीज वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा बीज विकास निगम के लिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन बैग और जूट बैग की खरीद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि सीजन से पहले इन बैगों की अग्रिम खरीद का मुख्य उद्देश्य बीज प्रसंस्करण कार्य को समय पर पूरा करना है, ताकि किसी प्रकार की देरी न हो।

0: उन्होंने आगे कहा कि प्रसंस्करण और पैकिंग कार्य पूर्ण होने के बाद प्रदेश के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज रियायती दरों पर बुवाई से पहले ही उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई।
2: राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने मजनू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सुना। नरेंद्र चंचल की आवाज थी और फिल्म का नाम था बेनाम। जी तो ये गीत सुनकर ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि पर्दे पर इस गीत को किसने गाया था। जी हाँ, पर्दे पर चंचल साहब भी थे। जब हम उन्हें देखते हैं तो चंचल साहब इस गीत को पर्दे पर गा रहे होते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में कई खूबसूरत और भावनात्मक शब्द छिपे हैं जिन पर गीत चुने जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये शब्द हो सकते हैं जिंदगी, आदमी, पुकार, मुंह, मुसाफिर, गली, विश्वास, श्रद्धा, सफलता, चोटी, जीवन और बेनाम। बिल्कुल, बहुत सारे शब्द आपने बिल्कुल सही चुने हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत मन के उस जटिल रूपांतरण को दर्शाती है जहां एक व्यक्ति शून्यता से पूर्णता की ओर यात्रा करता है। यहां बेनाम जिंदगी केवल गुमनामी नहीं बल्कि उस मानसिक अलगाव का प्रतीक है जहां व्यक्ति स्वयं की पहचान खो चुका होता है। तर्क और बुद्धि जहां हार जाते हैं वहां स्नेह की पुकार काम कर जाती है। ये पुकार व्यक्ति के भीतर सोए हुए मुंह या जीने की इच्छा को फिर से जीवित कर देती है। अतीत के दुखों, असफलताओं और पुरानी सोच से मुक्त हुए बिना नए शिखर तक पहुंचना संभव नहीं। जब मन में विश्वास अंकुरित होता है तो बाधाएं मार्ग का पत्थर नहीं बल्कि सीढ़ी बन जाती हैं। तो आज के गीत भी आपने लिखे हैं, बेशक मंदिर मस्जिद में बेनाम तुझसे नाराज नहीं, मितवा मुंह मुंह के धागे करके आपने कोशिश की है कुछ गानों की जो हमारी प्लेलिस्ट से या हमारी पसंद से मेल खाते हैं। बाकी आपने जो अपनी इबारत लिखी है वो बहुत खूबसूरत तरीके से पेश की है।

एक श्रोता लिखती है कि अगर जीवन नाटक मालूम पड़ने लग जाए तो आदमी अक्सर शांत हो जाता है और दुनियावी धारा से दूर होकर जीने की कोशिश में सिर्फ संघर्ष करता रह जाता है। इसी समय किसी अपने की पुकार उसमें मुंह के धागे जोड़ देती है। एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए वो मुसाफिर अतीत को पीछे छोड़ सफलता के नए आयाम छू लेता है और रेडियो पर बजने लगता है दिल को छूने वाला गीत, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। बहुत सुंदर तरीके से आप अपनी इबारत लिख रहे हैं और आपने जो गानों का कयास लगाया है वो बहुत हद तक सही भी लग रहा है, लेकिन आपको इसके लिए पूरा कार्यक्रम सुनना होगा और उस सुरीले सफर में हमारा साथ देना होगा। आई सुनते हैं अगला गीत और उसके लिए हम सवाल भी आपसे करने वाले हैं। ये गीत है फिल्म आजाद से, आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बतलाना है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो हम आपको सुनवाने वाले हैं, अपलम चपलम, सुना है ना आपने, बहुत ही मशहूर गीत है, किस दिग्गज नृत्य जोड़ी पर फिल्माया गया है, मतलब जो नर्तकी वहाँ नृत्य कर रही हैं, उनके नाम आपको हमें बताने हैं। तो आइए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।

0: इस गाने में कौन सा शब्द आया है? याद कीजिए, गली।
1: बड़ा मुझे

जी, तो ये स्वर जो आपने सुने बहुत ही खूबसूरत स्वर थे, फिल्म आजाद से हमने लिए थे, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर के। पर्दे पर दो नर्तकियां इस नृत्य को करती हैं। हमने आपसे पूछा था कि ये कौन है, किस नृत्य जोड़ी पर ये गीत फिल्माया गया है, आपको उनके नाम बताने हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के सभी श्रोताओं को नमस्कार के साथ, आज का एक गीत मुझे लग रहा है तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद ही गाना हो सकता है। कैसे होगा बताइए, गली पर तो अभी आपने जो गाना सुना अपलम चपलम ये हो गया है, तो ये गाना तो हमारी लिस्ट में आज शामिल नहीं है। और दूसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज बहुत तरीके से अपनी लिस्ट बनाई है और कई कई गाने उनको मतलब हमारी पसंद के मुताबिक हमारी पसंद मेल भी खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देने वाला सुंदर परिच्छेद कितनी सहज सुंदर शब्दों में साझा किया है आपने, जो जीवन की निराशा दूर कर देता है और आत्मविश्वास के साथ ये नश्वर जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है। आपने कुछ गानों के जिक्र किए हैं, मैं बेनाम हो गया, बिल्कुल सही गाना आपने लिखा था, आगे भी आपने कुछ गानों का जिक्र किया है, आप देखिएगा ये गाने हमारे यहाँ से बजते हैं इस कार्यक्रम में या नहीं, तो अगर हाँ तो हमारी और आपकी पसंद जरूर मिलेगी। लेकिन हाँ, कुछ गाने ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल सही पसंद किए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बातें कम और गाने वो भी पुराने सुनने ज्यादा मिले तो ज्यादा मजा आ जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत से उभर कर आने वाले शब्द हैं आदमी पर, आपने बहुत सारी लिस्ट दी है, तो आप भी सुनिएगा आज का ये सुरीला सफर। हमारे साथ इस सफर में आपको बने रहना है और ये देखना है कि आपने जो गाने पसंद किए हैं क्या वो हमारी पसंद से मेल खा रही हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमने बहुत सारे गानों को पसंद किया है, अब देखना यह है कि आपकी पसंद से मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ सफलता किसी के प्यार पाने पर अवश्य ही प्राप्त हो सकती है और ये आत्मीय स्नेह की अनुभूति बेजान जिंदगी में भी जीवन के अनेक रंग भर देती है। ऐसी ही भावनाओं का प्रतिबिंब आज के शब्द गीतमाला में भी नजर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के गीत शायद इस प्रकार से हो सकते हैं, आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है, आप भी सुनिएगा और इस सुरीले सफर में हमारे साथ आपको बने रहना है, ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए कि आपकी पसंद हमारी पसंद से कितना मेल खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपका सुरीला सफर तय करने के लिए मैं आ गई हूँ, बहुत अच्छी इबारत लिखी है और इस इबारत से आपको कुछ गीत आए हैं याद आ गए हैं जिसका जिक्र आपने हमें किया है। तो आपको बताना क्या है कि फिल्म आजाद का ये जो गीत है इसमें ये नृत्य किन दो नर्तकियों ने किया है, इनके नाम आपको पटा पटा में बताने हैं, फिर हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। और इस गीत को भी आप महसूस करेंगे कि ये किसी नायक या नायिका ने नहीं इसे फिल्मी पर्दे पर गाया है बल्कि समूह स्वर में ये गीत गाया गया है। आपके लिए सवाल ये है कि फिल्म किस्मत का ये गीत किसने गाया है, हम आपको बता देते हैं। इस गीत के गीतकार हैं कवि प्रदीप और संगीत दिया है अनिल विश्वास ने। आइए सुनते हैं ये गीत। अपने जमाने का बेहद मशहूर गीत, आपको इनके गायक कलाकारों के नाम बताने हैं। और इस गाने से क्या शब्द निकलता है, चोटी।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत दार्शनिक तथ्यों को उजागर करती है। कहा गया है कि निराश में जीवन में एक क्षीण प्रेम पूर्ण रोशनी मार्ग प्रशस्त कर देती है और मन बरबस आकृष्ट हो उम्मीद के साथ उस तरफ गतिमान हो उठता है, अपनी दृढ़ निश्चय संकल्प संग हासिल कर ही लेता है। इबारत गंभीर है मगर बहुत रोचक, संगीत में प्रस्तुति का इंतजार रहेगा। इस कार्यक्रम का सुंदर पक्ष है कि मित्रों द्वारा प्रेषित कमेंट जो ज्ञानवर्धक और तथ्यपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, आप जो इबारत लिखते हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से कहते हैं और उसे पढ़ने में हमें भी बहुत मजा आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साधारण मनुष्य के सफल होने का राज किसी जादुई फार्मूले में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी आदतों और दृष्टिकोणों में छिपा है जिनमें कोई भी अपना सफर शुरू कर सकता है। सफलता अक्सर असाधारण काम करने से नहीं बल्कि साधारण कामों को असाधारण निरंतरता के साथ करने से मिलती है। सफल और असफल व्यक्ति के बीच में सबसे बड़ा अंतर निरंतरता का ही है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने बहुत सारे गीतों को लिखा है कि ये गीत शायद आज की प्लेलिस्ट में शामिल हो सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं ये कार्यक्रम बहुत ही रोचक लग रहा है, मैं उत्सुक हूँ कि आप लोग कैसे सोशल मीडिया के जरिए श्रोताओं को जोड़ेंगे और कौन से सुरीले गाने सुनवाएंगे। तो आप ये कार्यक्रम सुनिए और आपको पता लगेगा कि कैसे हम सोशल मीडिया से जुड़ते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों का फेसबुक से परिवार जुड़ा हुआ है। आप भी उस परिवार से जुड़िए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है ये और इस कार्यक्रम को समझने में हालांकि थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत में इतनी ताकत होती है कि आसमान से तारे भी नाचते हुए जमीन पर उतर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बेशक आत्मा की पुकार बड़ी शक्तिशाली होती है, सफल व्यक्ति वही होता है जो इस पुकार को सुनकर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलकर अपनी मंजिल को पाता है और आपके साथ ये सफर भी सुरीला ही होने वाला है। बिल्कुल सुरीला होगा अगर आप इस सफर में कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलेंगे। तो अब दो सवाल आपके लिए है ना। पहला यही कि फिल्म आजाद का जो नृत्य गीत अभी आपने सुना वो किस पर फिल्माया गया था, नृत्य जोड़ी कौन थी, और फिल्म किस्मत का जो गीत अभी आपने सुना ये हिंदुस्तान हमारा है ये गीत, उसमें चोटी शब्द से ये गीत आ गया था, इसमें गाने वाले कलाकार कौन थे। और बढ़ते हैं अब आगे, वही गीत हमने चुना है जो फिल्मी पर्दे पर कोई नायक या नायिका नहीं गा रही बल्कि अन्य कलाकार गा रहे हैं। फिल्म का नाम है तीसरी कसम, मन्ना डे और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र की बोल और शंकर जयकिशन की धुन।

0: उड़ बैठी बजवा दो कन्या,
1: उड़ बैठी बजवा दो कन्या,
0: उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब

जी तो हमारे श्रोताओं ने सही जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आपने लिखा है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो है दो अभिनेत्रियों डांसर पर अभिनेत्रियां जो डांसर अभिनेत्रियां थी उन पर फिल्माया गया, यानी जो डांसर्स थी नृत्य जोड़ी थी उन पर फिल्माया गया था, वो थी सई और सुब्बुलक्ष्मी। बिल्कुल सही कहा है आपने, आपका जवाब और कई सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि नृत्य जोड़ी थी सई और सुब्बुलक्ष्मी की।

और हमारा दूसरा सवाल था कि फिल्म किस्मत में जो गीत आपने सुना, दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, इस गीत में गाने वाले कलाकार कौन थे? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया हमारे श्रोताओं ने कि आवाजें प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी की थी जिन्होंने इस गीत को गाया था, और साथ में साथी भी थे जिन्होंने इस आवाज को मिलजुल कर आवाज दी थी, यानी प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी ने इस गीत को गाया था, दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि सही जवाब आपने हमें दे दिया है। हमारी एक श्रोता लिख रही है कि सफर का टिकट तो ले लिया है कि आपके साथ चलने, बिल्कुल चलने, जब सफर का टिकट आपने ले लिया है तो देर किस बात की, हमारे साथ इस सुरीले सफर में शामिल हो जाइए। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए तैयार सभी मित्रों को दोपहर का नमस्कार, और इस सुरीले सफर की पायलट मंदाकिनी जोशी जी को भी नमस्कार, आपके साथ एक घंटे के सुरीले सफर के लिए हम सभी संगीत प्रेमी तैयार है, बिल्कुल तैयार है, और हम भी तैयार है आपको इस सुरीले सफर में जगह जगह जाकर अलग अलग चीजों की सैर करवाने के लिए। एक श्रोता लिखते हैं कि पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे। अच्छा, आपने पूरी एक कविता लिख डाली है, आप वही कवि श्रोता हैं हमारे। एक बेनाम जिंदगी जीता हुआ वो आदमी भीड़ में रहकर भी भीड़ से दूर था, चेहरे पर खामोशी की धूल जमी थी और दिल जाने कितने दुखों से चूर था, न कोई अपना उसे आवाज देता, न किसी चौखट पर उसका इंतजार था, वो चलता रहा उस उम्र भर में यूं ही तन्हा, जैसे रेगिस्तान में भड़का कोई गुब्बार था। पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे, रातों की चुप्पी में उसके आंसू तकिए से लिपटकर सोया करते थे, फिर एक दिन किसी आत्मीय पुकार ने उसके सूने मन को छू लिया, जैसे बरसों से की धरती पर पहली बारिश ने प्यार लिख दिया। एक आवाज थी जिसमें अपनापन था, एक नजर थी जिसमें श्रद्धा का उजाला था, उसने पहली बार महसूस किया वो भी किसी के लिए अनमोल निराला था। क्या बात है, वो मुसाफिर फिर मुड़ पड़ा जीवन की ओर, पुरानी गलियों को पीछे छोड़ आया, टूटे हुए विश्वास के टुकड़ों को जोड़कर अपने भीतर नया सूरज उगाया, दर्द अब भी था उसके सीने में मगर आंखों में उम्मीद का दीप जलने लगा, जो आदमी खुद को खो चुका था कहीं वो फिर से खुद से मिलने लगा। क्या बात है, और देखो जिसे दुनिया ने बेनाम कहकर ठुकराया वही एक दिन की चोटी पर मुस्कुराया, क्योंकि प्रेम और विश्वास का एक छोटा सा बीज है, पत्थर दिल में भी जीवन उगा जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर कविता आप रचते हैं, आपको मैं सैकड़ों साधुवाद देती हूँ। एक श्रोता लिखते हैं कि भाई इस सप्ताह में तीसरी बार दर्शन देने के लिए, सुरीली आवाज के लिए, मधुर वाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ये हमारी ड्यूटी है ना, आप इसे लिख लेते हैं कि क्या हुआ कब आने वाले, लेकिन हमारी ड्यूटी है, जब जब ड्यूटी लगेगी तब तब हमें तो आना ही पड़ेगा। अब ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी अपनी, फिर हमारे श्रोता शिकायत करेंगे कि मंदाकिनी जी तो अपनी तारीफ में लगी रहती है। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत प्यार बरसा है, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। चलिए तो इस सुरीले सफर में आगे बढ़ते हैं। आज हमने उन गीतों को चुना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर किसी नायक या नायिका ने उन गीतों को नहीं गाया है, बल्कि उनके साइड आर्टिस्ट जो हैं या अन्य कलाकार जो हैं उन्होंने इन गीतों को गाया है, या बैकग्राउंड गीत के रूप में ये गीत कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं। चलिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए लेकर आई हूँ, सलिल चौधरी का संगीत है, शैलेंद्र के बोल हैं, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है दो बीघा जमीन।

0: और इस गीत में आपको शब्द मिलेगा पुकार।
1: जमुना की
0: याद कीजिए, फिल्मी पर्दे पर कौन कौन है।

हमारे और भी श्रोताओं ने सही जवाब हमें दे दिया है। आप लिखते हैं कि सही और सुबह लक्ष्मी दो नर्तकियां हैं जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर नृत्य किया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो आपने गीत सुनवाया था हिंदुस्तान हमारा है, उसे आवाज दी थी अमीरबाई कर्नाटकी और खान मस्तान ने। जी, इसमें प्रदीप कुमार की आवाज है, प्रदीप जो हमारे गीतकार प्रदीप हैं, कवि प्रदीप हैं, उनकी आवाज है और उनका साथ अमीरबाई कर्नाटकी दे रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गुमनामी के अंधेरे में खुद को समेटे हुए व्यक्ति भले ही दुनिया की नजरों से उजल हो, लेकिन जब कोई निस्वार्थ प्रेम और अपनेपन से उसे पुकारता है तो उसके भीतर की सोई उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। वह आत्मीयता उसके मन में जीवन के प्रति एक नया आकर्षण पैदा कर देती है। और आप लिखते हैं कि वही पथिक जो कल तक ठहर चुका था, अब अतीत की संगीन गलियों निराशा को पीछे छोड़कर अटूट आत्मविश्वास के साथ नई राहों पर निकल पड़ता है। यही संकल्प और श्रद्धा उसे साधारण से असाधारण बनाकर सफलता के शिखर तक पहुंचा देती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि श्रद्धा और विश्वास जो शब्द है वो अत्यंत गहरे, सकारात्मक और भावनात्मक है, जो एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन दोनों ही शब्दों में आदर और निष्ठा की भावना छुपी होती है। श्रद्धा मन का वो भाव है जिसमें मनुष्य अपने विचारों और कर्मों को किसी उच्चतर सत्ता, ईश्वर, गुरु या आदर्श को समर्पित कर देता है और उसमें ही अपनी भलाई समझता है। बहुत सुंदर आध्यात्मिक तरीके से आपने अपनी बात हमें रखी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि यूं ही कट जाएगा सफर, सुरीला सफर के साथ चलने से कि गीत नजर आएंगे इबादत को पढ़ने से। बिल्कुल, इबादत पढ़ी और देखिए, आज तो बहुत सारे श्रोता हमारी पसंद के करीब आ गए हैं। धीरे धीरे ऐसे ही होगा कि हम आपको एक इबारत देंगे और आप समझ जाएंगे कि भैया अब कौन से गीत आज उद्घोषक लेकर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान जी को हार्दिक धन्यवाद वो देना चाहते हैं। एक श्रोता ने जानना चाहा कि मैं बेनाम हो गया, ये आवाज क्या नरेंद्र चंचल की मधुर आवाज थी और वही पर्दे पर भी गा रहे थे? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, वो मखमली आवाज नरेंद्र चंचल साहब की ही है और पर्दे पर भी वही इस गीत को गा रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज इस सुरीला सफर के अंक में हमने एक प्रयोग किया कि उन गीतों को चुना जाए जिन्हें किसी फिल्मी नायक या नायिका ने न गाया हो पर्दे पर, बल्कि साइड आर्टिस्ट जो हैं, अन्य कलाकार जो हैं, या बैकग्राउंड गीत के रूप में उस गीत को फिल्माया गया हो या किसी डांसर ने उस पर नृत्य किया हो, ऐसे कुछ गीतों को चुना जाए। तो आज हमने उन्हीं गीतों को चुना था। और आप हर एक गीत को सुनने के बाद समझ रहे होंगे कि पर्दे पर इस गीत को कैसे फिल्माया गया है। एक और गीत आपके सामने पेश कर रहे हैं, दत्ताराम का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है अब दिल्ली दूर नहीं। इस गीत में से शब्द आया है चिड़िया।

भी आया बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, सुन सुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

जी तो हमारी श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत काफी हद तक मेरे पर ही फिट बैठती है। अच्छा, आप पर फिट बैठती है कैसे? कि महंगी कॉन्वेंट स्कूल की मेरी पढ़ाई, पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ, आगे मेरी हायर एजुकेशन बहुत खर्चीला। मैं कंफ्यूजन में था कि ये सब कैसे होगा। फिर मेरी इंटरनल आत्मी पुकार सुनकर मैंने ठान लिया कि मैं पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन और साइड बिजनेस करके अपनी हायर एजुकेशन का खर्चा निकालूंगा। ऐसा ही हुआ। उदासी की गलियां को छोड़कर जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ माता रानी के आशीर्वाद से सफलता हासिल करी और आज बच्चे भी अच्छी पोस्ट पर है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छा, हमारे सवालों का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है कि साई और सुबह लक्ष्मी वो नर्तकियां थी और गायिका थी लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर। आपने एक ने सही जवाब दिया कि किस्मत के गायक प्रदीप, कवि प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी है। बिल्कुल सही बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 20 मिनट शेष रह गए हैं, अभी भी ओल्ड सॉन्ग चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। अरे तो ओल्ड सॉन्ग ही तो चलने वाले हैं अंत तक। आप इस सफर में हमारे साथ बने हुए हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आदमी बेनाम होकर मुख्य धारा से दूर होकर तब जीने लगता है जब वो सभी ओर से हताश हो जाता है। जीवन उसे निरर्थक लगने लगता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ऐसी कोई रात नहीं जिसकी सुबह ना हो। हताशा के उस समय उसके किसी अपने की पुकार से उसके आत्मविश्वास में नई जान आती है और अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ वो अपनी आगे की मंजिल तय कर लेता है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा दुख से भरी हो या सुख से ही भरी हो। जीवन नैया डगमग डगमग चलती है, कई हिचकोले आते हैं, उसी में फूलों भरी जिंदगी आती है, कांटों भरी शाम भी। व्यक्ति इन्हीं उतार चढ़ाव में अपने को एडजस्ट करते हुए चलता है। अगर जीवन के सफर में सिर्फ फूल ही फूल हो या कांटे ही कांटे हो तो एक रास्ता हो जाएगी, सुख दुख के अनुभव से वंचित रह जाएगा। खट्टा मीठा कड़वा कसेला सभी प्रकार के अनुभव जीवन में आते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो इस सुरीला सफर हमने रखा है जहां पर ये सारे स्वाद हमें महसूस करने हैं, है ना। और अंत तक हमें अपना साथ एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं फिल्म सफर के साथ। मन्ना डे और साथियों की आवाजें, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन। याद कीजिए इस गीत को फिल्माते समय आपको किन का चेहरा याद आता है। हाँ, किसी नायक या नायिका ने तो इस गीत को पर्दे पर नहीं गाया है, है ना।

हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि छुन छुन करती आई चिड़िया जो गाना आपने दिल्ली दुल्हनिया का सुनवाया था, उसके मुखड़े में इबारत में कोई शब्द है ही नहीं। क्यों नहीं है? चिड़िया शब्द हमने आपको बताया था ना कि चिड़िया शब्द वहीं से उस गीत को लिया गया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत एकमात्र ऐसा माध्यम है जो दुखों के लिए भी काम कर सकता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, मैं एक मुसाफिर बेशक पुरानी गली छोड़कर बेनाम जिंदगी गुजार रहा हूं, लेकिन मन में विश्वास और श्रद्धा के बल पर एक दिन सफलता जरूर हासिल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म 2 बीघा जमीन का ही गाना मेरे पिताजी आखिरी दिनों में हमेशा सुनते थे। उनकी मृत्यु मई महीने में हुई थी। बिल्कुल, ये गीत है ही ऐसा जहां इंसान पुराने जो लोग हैं वो इसे सुनना पसंद करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम सभी भी तो यहां मुसाफिर ही हैं, हमें अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं, जाने कब किस मोड़ पे मंजिल मिल जाए कुछ पता नहीं। बिल्कुल सही कहा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सभी मित्रों को आज मैं नमस्कार कहता हूं, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। और विविध भारती जिसे सुनकर हम कहेंगे, हे विविध भारती, जिस गली में जिस घर में रेडियो बजने रहा हो उस गली से गुजरना नहीं, क्योंकि विविध भारती हमारी खास पसंद है। और अब हम इस सफर के आखिरी सोपान पर हैं, जहां पर हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की, फिल्म का नाम अपनापन। फटाफट जवाब भेजिएगा, ये बताइएगा कि आदमी मुसाफिर है जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इसमें शब्द आता है मुसाफिर और आदमी, ये मुख्य रूप से किस अभिनेता और बाल कलाकार पर फिल्माया गया था, और पर्दे पर इस दौरान आपको कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में बैठे हुए दिखाई देते हैं? जी हाँ, ये गीत जो पर्दे पर गा रहे हैं वो अभिनेता कौन है और बाल कलाकार कौन है उनके साथ, और इसी गाने में मुख्य दृश्य के दौरान कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में सवार दिखाई देते हैं? फटाफट लिखिएगा, बहुत कम समय बचा है।

एक श्रोता ने लिखा है कि कितना बढ़िया गाना है चुन चुन करती आई चिड़िया। इस चिड़िया के ऊपर कई कहानियां बनी हुई हैं जिसको बच्चे बड़े ध्यान से प्रेम से सुनते हैं।

इस सवाल का जवाब आपने दिया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आदमी मुसाफिर ये गाना मुख्य रूप से अभिनेता सुधीर दलवी, जिन्होंने एक भिखारी की भूमिका निभाई थी, और बाल कलाकार निवेदिता जोशी थी जो बाद में निवेदिता सर्राफ के नाम से जानी गई, उन पर फिल्माया गया था। और इस गाने के मुख्य दृश्य के दौरान कौन थे? अभिनेता जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित भी बस में सफर करते हुए दिखाई देते हैं, है ना? कुछ याद आया आपको?

तो सुरीला सफर में आज इतना ही। आज का ये सफर आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ यूं सफर करना, और सुख दुख उतार चढ़ाव से भरी जिंदगी में इस तरह से गोते लगाना बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथी, हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं। तो बस आज का ये सफर यहीं तक। इस कार्यक्रम से, इस सफर से आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना हैव कंप्लीटेड 11 इयर्स ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी कवर टू सिटीजंस अक्रॉस द कंट्री. Ministry of Finance said these schemes were envisioned to extend affordable financial protection to all, particularly the underserved and vulnerable sections of society. These flagship schemes aim to broaden the insurance and pension landscape by shielding citizens against life's uncertainties and fostering long-term financial resilience. Speaking about the schemes, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said that over 27 crore enrollments have been done under PM Jeevan Jyoti Bima Yojana, 58 crore in PM Suraksha Bima Yojana and 9 crore enrollments under Atal Pension Yojana. The two-day Indian Ocean Dialogue IOD10 with the theme of the Indian Ocean region in a transforming world concluded yesterday in New Delhi. In a statement, the Ministry of External Affairs said that the dialogue brought together senior officials, policymakers, scholars and experts from Indian Ocean Rim Association states and dialogue partners to deliberate on key regional developments and emerging challenges in the Indian Ocean region. The Ministry of External Affairs organized the dialogue in collaboration with the Indian Council of World Affairs and the Indian Ocean Rim Association Secretariat. The Somnath Amrit Parv 2026 is being celebrated to mark the 75th anniversary of the reconstruction of Somnath Temple. The five-day celebration highlights the historic significance of the temple and celebrates its enduring legacy. To commemorate this event, Prime Minister Modi is visiting the Somnath Temple on Monday.
1: The celebration honors the enduring legacy of the Somnath Temple. It marks 1,000 years since the first recorded attack on the Somnath Temple in 1026. Somnath Temple holds a sacred place as the first among the 12 Adi Jyotirlingas of Lord Shiva. Somnath Temple has been repeatedly ravaged and plundered by invaders over centuries. Every time, devotees and rulers have rebuilt it and restored its lost glory. Temple, therefore, stands as a testimony to India's unshattered faith that has risen victorious over repeated assault over centuries. The festivities will culminate on 11th of this month with a grand Kumbhabhishek at the temple spire using water from 11 sacred shrines. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
0: On to sports. In IPL cricket, Rajasthan Royals will face Gujarat Titans in Jaipur. The match will start at 7:30 p.m. Earlier, Kolkata Knight Riders defeated Delhi Capitals by 8 wickets at Delhi last night. Chasing the victory target of 143 runs, Kolkata Knight Riders made 147 for the loss of 2 wickets in 14.2 overs. Finn Allen delivered a jaw-dropping batting masterclass to power Kolkata Knight Riders to a commanding 8-wicket victory over Delhi Capitals. Two new suspected cases of hantavirus were reported yesterday, one in Spain and the other on the remote South Atlantic island of Tristan da Cunha, as experts race to contain an outbreak that began on a luxury cruise ship. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Shubhendu Adhikari becomes the first BJP Chief Minister of West Bengal, takes oath along with 5 cabinet ministers. Political stalemate continues for government formation in Tamil Nadu as TVK yet to reach the majority mark. National Legal Services Authority organizes National Lok Adalat across the country to provide amicable settlement of disputes. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar meets Prime Minister of Trinidad and Tobago to strengthen bilateral cooperation. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to face Gujarat Titans in Jaipur this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम. शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने. उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली. तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी. टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला. राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देशभर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
4: अमित शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब। भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
3: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
5: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
2: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्रवाई की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित है उनको समझौते के आधार पर विस्तारित किया जाए।
1: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
4: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने, उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी, टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। ये स्वर है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है ताजमहल। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रोशन।

कार्यक्रम में आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गाइड का गीत। गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत रचना सचिन देव बर्मन की है।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस पर इंडिया में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

किशोर कुमार की आवाज थी। फिल्म का नाम था मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। गीत आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए, ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसका आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

0: आता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे हैं फिल्म का नाम दिल अपना और प्रीत पराई, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतर्देशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
3: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। चलिए शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। ये पहला गीत सुनना चाहा है, ये है हमारे सुनने वाले श्रोता ककराला उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, प्रवीण खान, अनिल नागर और इनके परिवार के दोस्त। और ये है विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारुल, पायल, श्वेता, उर्वी बेन अड़िया, इन्होंने ये खत लिखा है अकोला महाराष्ट्र से। आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया थोड़ा सा अपने जो शब्द हैं, जो राइटिंग है, उन्हें साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। फिर हम जब नामों को पढ़ते हैं और कोई गलत नाम हमसे पढ़े जाते हैं तो हमारे शिकायत श्रोता जो है भर भर के हमारी शिकायत करते हैं। तो कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ सुथरी लिखें, साफ तरीके से, ताकि हम आपके नाम को अच्छे से पढ़ सकें। आपने अपने नामों को घुमा घुमा के लिखा है, कृपया इसी तरह से नामों को न लिखें, साफ सुथरे तरीके से लिखें ताकि हम सही नाम आप तक पहुंचा सकें। चलिए, आप सभी सुनना चाहते हैं लैला मजनू फिल्म का ये गीत।

स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था लैला मजनू।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं गांव दलपतपुरा से दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और उनके परिवार वाले। इसी गाने को जो अब हम आपको सुनवाने वाले हैं उसे सुनना चाहते हैं गांव सांकरा सोमनी जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, रजनी देवी साहू और मास्टर प्रणय कुमार साहू ने। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले को फिल्म राम बलराम में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के लिए आप सभी हैं ख्वाहिशमंद। गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सिकंदर अली खान और बदरुद्दीन, ये खत है शमसुद्दीन की बाड़ी के पास अमर सिंहपुरा बीकानेर से। आप सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, जिसे आवाज किशोर कुमार ने दी है और फिल्म का नाम है दाग।

0: हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत। इसे सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से सीमा, शिखा, सपना, प्रीति, संध्या, मोनस और शालू ठाकुर ने। मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है धर्मवीर, गीतकार आनंद बख्शी हैं। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: ओ मेरी महबूबा।

मनचाही गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल, अलका याग्निक, कुमार सानू और अजय देवगन की आवाजें। फिल्म का नाम है दिलवाले। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप हैं छत्तीसगढ़ से संध्या सिंह, नीलेश सिंह, शैलेश सिंह, शैलू ठाकुर और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक का।

0: ये था फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।
1: मन चाहे गीत।
2: चाहे

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी। नाटक का शीर्षक है पोस्टमैन। तो सुनिए नाटक पोस्टमैन का पहला भाग।

0: लीजिए, ये आपकी चिट्ठी है।
1: लाओ। अरे हाँ, याद आया, अब पुराना पोस्टमैन रिटायर होने वाला था ना।
0: जी हाँ, वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह मैं आया हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ श्रीमान।
1: अरे भाई, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पुराना पोस्टमैन तो इस तरह कभी जल्दी नहीं मचाता था। हर घर में कम से कम आधा घंटा बैठता था, बातचीत करता था और फिर आगे जाता था।
0: जी हाँ, सब ऐसा ही कहते हैं। मेरे लिए तो एक एक मिनट सोने के बराबर है। सयानों ने कहा है ना कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। अच्छा अब आज्ञा दीजिए।
1: वाह वाह, तुम देखने में तो कम उम्र के मालूम होते हो, लेकिन बातें बड़ी समझदारी की करते हो। मुझे तो वक्त काटने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए। कुछ ना कुछ बोले बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं तो बोलता ही रहूंगा। अच्छा तुम जाओ भैया, अपना काम देखो।
2: पोस्टमैन, मेरी कोई चिट्ठी है?
0: घर का क्या नंबर पता है श्रीमान?
2: नंबर 11 पश्चिमी गली।
0: इस पते का एक लिफाफा है श्रीमान, लीजिए।
2: मुझे पढ़ना नहीं आता है भैया, जरा तुम ही पढ़कर सुना दो।
0: लिखा है, पूज्य पिताजी प्रणाम, मैं सकुशल हूँ, आपकी कुशलता भगवान से चाहता हूँ।
2: मेरे बेटे मणि की चिट्ठी है। अच्छा आगे पढ़ो।
0: मैं यहाँ अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, परीक्षा की फीस देनी है, कृपया 50 रुपए भेज दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, आपका प्रिय पुत्र मणि। बस इतना ही लिखा है, ये लीजिए चिट्ठी।
2: अगर कष्ट न हो तो डाक बांटकर मेरे घर आ जाना, मनियादे लिखकर मेरे बेटे के नाम भेज देना, बड़ा उपकार होगा भैया।
0: मैं जरूर आऊंगा बाबा, अपना काम खत्म करके मैं सीधा आपके घर आऊंगा, तभी मनी ऑर्डर फॉर्म भर दूंगा।

0: क्यों चंद स्वामी, आज मिल लेट थे क्या?
1: हाँ आज जरा लेट ही आई है पोस्ट मास्टर साहब। अब तो सारी की सारी डाक गांव में बढ़ जाने चाहिए थी।
0: तो क्या हुआ, यहाँ तो सबके सब खेती बाड़ी करने वाले किसान ही रहते हैं। शहर की तरह व्यापार करने वाले लखपति थोड़ी रहते हैं जो डाक का इंतजार करते रहे।
1: आप ठीक कहते हैं, आप तो यहाँ बरसों से पोस्ट मास्टर है।
0: इस गाँव से बहुत सी लड़कियाँ अपने अपने ससुराल चली गयी है, बहुत से लड़के पढ़ने के लिए शहर गए हुए हैं। बस यहाँ के माँ बाप अपने अपने बेटे बेटियों के कुशल मंगल की चिट्ठियों की राह देखते रहते हैं। उन्हें ये चिट्ठियाँ मिल जानी चाहिए, बस देर सवेर की कोई बात नहीं। इसलिए जब चाहो आराम चैन से डाक बांट आना।
1: नहीं पोस्ट मास्टर साहब, मैं तो समझता हूँ कि गांव के लोग भले ही धनी व्यापारी न हो, इनके लिए सगे संबंधों के प्रेम का कहीं ज्यादा मूल्य है। आप इनके उस आनंद की जरा कल्पना कीजिए जो उन्हें दूर बसे अपने सगे संबंधों के कुशल क्षेम का समाचार पाकर मिलता है, उनकी चिट्ठियां पढ़कर मिलता है। उस आनंद का क्या शब्दों में वर्णन हो सकता है।
0: अरे वाह कंद स्वामी, इस छोटी सी उम्र में भी गूढ़ बात करना खूब जानते हो।
1: मैं बचपन से ही मुसीबत में पला हूं ना, मैं अभी बच्चा ही था कि मेरे माँ बाप परलोक सिधार गए, मेरे भाई बहन कोई नहीं रहे। मैं अपने मामा की सहायता से पढ़ लिख कर बड़ा हुआ और इस पोस्टमैन की नौकरी पर लगा। बातों बातों में देर हो ही गई, यहाँ का काम मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। देखिए कोई मनी ऑर्डर या रजिस्ट्री है क्या, तब तक मैं बाकी चिट्ठियों पर मोहर लगाता हूँ।
0: मनी ऑर्डर हाँ एक है। सैनिक ने रुपया भेजा है, शाबाश जवान।
1: कौन है वो सैनिक?
0: अरे वही तुम्हारा डुप्लीकेट।
1: मेरा डुप्लीकेट?
0: हाँ तुम्हारा हम शक्ल। तुम जब पहले दिन ड्यूटी पर आए थे तो तुम्हें देखते ही मुझे यही बात महसूस हुई थी। कंद स्वामी तुम्हारी शक्ल सूरत उस सैनिक से इतनी मिलती जुलती है कि तुम दोनों को अलग अलग खड़ा कर देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन कंद स्वामी है और कौन कुमार स्वामी। एक ही सांचे में ढली दो मूर्तियां, एक सा चेहरा एक सा कद। अगर तुम्हारे चेहरे पर मूछे और गाल पर एक मस्सा हो तो तुम्हारी माँ भी तुम दोनों में फर्क नहीं कर सकती, वो हूबहू तुम जैसा है।
1: कौन है वो?
0: अरे शिवकामी नाम की बुढ़िया का बेटा कुमार स्वामी।
1: कौन शिवकामी? वो तो नहीं जो उस उत्तरी गली में 14 नंबर के मकान में रहती है। उसी की बात कर रहे हैं ना आप?
0: हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका बेटा कुमार स्वामी बचपन से ही बड़ा उद्दंड और शरारती था, जब देखो कोई न कोई उपद्रव खड़ा किए हुए है। लोगों ने चैन की सांस ली जब किसी तरह सेना में भर्ती होकर गांव से चला गया। वहां वो बड़ा ही अच्छा और जिम्मेदार जवान बना, काफी तरक्की की है। साल में एक बार छुट्टी पर यहां आता है। दुश्मन ने जब से देश पर हमला किया था तब से वह छुट्टी पर नहीं आया, सीमा रक्षा के किसी मोर्चे पर लगा है वो। 3 महीने में एक बार 3000 या 4000 रुपए अपनी माँ को भेजता है। अब भी उसने 3000 रुपए भेजे हैं।
1: अच्छा तभी वो बेचारी बुढ़िया माँ दरवाजे पर खड़ी होकर रोज मुझे घूर घूर कर देखती है। आज जब मैं उसे मनी ऑर्डर दूंगा तो वह कितनी खुश होगी।
0: आज क्या जल्दी है, कल जाकर दे आना।
1: क्या कह रहे हैं आप पोस्ट मास्टर साहब, ये गलत बात है। डाकखाने का नियम तो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर मौजूद है तो उसके डाक उसे फौरन मिलने चाहिए।
0: मैं तो यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बस।
1: सभी पत्रों पर मोहर लगा दी है, तो मैं चलूं। और हाँ उस मनी ऑर्डर का रुपया दे दीजिए।
0: ये लो ठीक तरह से गिन लो, डाक जल्दी बांट कर मेरे घर आ जाना। आज तुम मेरे साथ ही खाना खाओगे।

0: क्यों भाई सिंगारम, क्या हालचाल है? बड़े नाराज मालूम होते हो आज, क्या बात है? क्या एक कप चाय लाऊं? क्या सोच रहे हो? अरे भाई मैं अपने पैसे से चाय खरीद कर लाऊंगा।
1: अरे क्या बकता है मारी, आजकल मेरा हाथ जरा तंग है इसलिए तुझे मजाक की सूझ रही है। अरे तू क्या मुझे चाय पिलाएगा, मैं चाहूँ तो अब भी हजारों को चाय पिला सकता हूँ, समझे?
0: सो तो है, लेकिन जरा समय का फेर देखो, हनुमान जी तो एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका में पहुँच गए थे, और यहाँ तुम हो कि गांव के नाले को भी नहीं लांग सकते। है ना?
1: लगता है मारी आज तेरी चांद कुछ खुजला रही है साले, लगाओ।
0: अरे जबान का काम हाथ से क्यों ले रहे हो भाई सिंगारम, कहो कुछ काम बना?
1: बड़ा आया है काम बनाने वाला, जब खुद मैं किसी की अंटी ढीली करूंगा तभी कुछ काम बनेगा।
0: अरे भाई अपने राम का भी तो यही धंधा है, मेहनत मजदूरी तो हमसे होती नहीं, ये हाथ पांव काम करने के काबिल ही कहां रहे। अगर कोई भूला भटका सामने पड़ जाए तो उसे छीना झपटी करके ही अपनी रोटी चलती है।
1: और चारा ही क्या है, अगर मेरी वो बुढ़िया बहन कृपा करके कुछ न कुछ देती रहे तो रोटी की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। लेकिन वो एक पैसे की दीवार नहीं, मोर्चे से बेटा रुपया भेजता है तो उन्हें संदूक में रखकर ताला लगा देती है और कहती है मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है।
0: सिंगारम सिंगारम उधर देखो, नया डाकिया कंद स्वामी आ रहा है।
1: अरे यही है वो? अरे ये तो हु बहु मेरी बहन के बेटे कुमार स्वामी जैसा दिखता है।
0: अरे कुछ मत पूछो दोस्त, फौजी आदमी भी इसके सामने कोई चीज नहीं है, अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईमानदार समझता है।
1: क्यों, कुछ झगड़ा तकरार?
0: मेरे साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ,
1: तो?
0: सुनी सुनाई कह रहा हूँ, तुम जरा बात करके देखो पता चल जाएगा।
1: अच्छा ऐसी बात है,
2: अजी पोस्टमैन साहब जरा इधर तशरीफ तो लाइए।
3: कहिए क्या बात है। कैसे बुलाया आपने?
1: अजी बैठिए भी।
2: अरे मारी भाग कर एक कप चाय तो ला रहा।
3: क्षमा कीजिए श्रीमान, इस समय बैठने की फुर्सत नहीं, डाक बहुत है हाथ में।
1: वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा कोई मनी ऑर्डर है?
3: है क्यों नहीं,
1: तो लाइए दे दीजिए ना, मेरा नाम सिंगारम है।
3: आपके नाम का तो कोई मनी ऑर्डर नहीं है।
1: अजी किसी के भी नाम का हो क्या फर्क पड़ता है, जिसके नाम मनी ऑर्डर है उसी के नाम के यहाँ मैं दस्तखत कर देता हूँ। आपको तो मनी ऑर्डर पाने वाले के सिर्फ दस्तखत ही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं। लाइए लाइए मनी ऑर्डर।
3: वाह ऐसे कैसे दे सकता हूँ मैं, ये तो जालसाजी हुई जो कानूनन जुर्म है।
1: अरे आप भी कानून का क्या पचड़ा ले बैठे। मनी ऑर्डर दरअसल है किसके नाम?
3: शिवकामी अम्माल के नाम, उन्हीं को देना है मुझे, मैं चलता हूँ।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है।
1: पोस्टमैन, इस गांव में नए आए मालूम होते हो, उस पर ये छोटी उम्र और जवानी का उबाल, इसीलिए अक्खड़ बने फिरते हो, लेकिन शायद तुम सिंगारम को नहीं जानते। जिस शिवकामी के नाम ये मनियाड़ है वो मेरी बड़ी बहन है, समझे? उसका मनी ऑर्डर फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना
3: वरना क्या होगा।
4: अरे भाई क्यों उलझते हो इनसे, ये चाहे तो इस गांव से तुम्हारा नाम और निशान मिटा दें, इसलिए भाई बेकार झगड़ा मोल ना लो इनसे, अपनी बहन के नाम के दस्तखत ये खुद किए देते हैं, तुम चुपचाप मनी ऑर्डर के रुपए इन्हें दे दो।
1: हाँ हाँ रुपए लाओ लाओ लाओ।
3: सिंगारम ये न भूलो कि बलि से भी बड़ा बलि वो है जिसे भगवान कहते हैं, तुम्हारी धमकियों से मैं तो डरने वाला नहीं, तुम मेरी इज्जत रखोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत रखूंगा, अगर तुम मेरी इज्जत उतारना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा।
4: अरे बाप रे ये पोस्टमैन छोकरा तो तूफान की तरह गरजता हुआ चला गया।
1: अरे जाने दे जाने दे जाने दे, आखिर बच के जाएगा कहाँ।

0: जी मैं पोस्टमैन। क्या शिवकामी अम्माल आप ही हैं? क्या बात है माई, आप इस तरह चकित क्यों रह गई? आप मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हैं?
1: क्या कहा तुमने? तुम सचमुच पोस्टमैन ही हो ना? तुम जरा इधर मेरे पास आकर बैठो। क्षण भर में ही मेरी क्या हालत हो गई। एकाएक मुझे ऐसा लगा मानो मेरा बेटा कुमार स्वामी ही मेरे सामने आ गया हो।
0: कुमार स्वामी नहीं, आपके नाम ये मनी ऑर्डर भेजा है माई।
1: अच्छा,
0: 3000 रुपए भेजे हैं। यहाँ इस जगह दस्तखत कर दीजिए। और यहाँ भी। ठीक, ये लीजिए रुपए। 100-100 रुपए के 30 नोट हैं। अच्छी तरह गिन लीजिए। और ये रहा कूपन।
1: बेटा, मुझे सिर्फ दस्तखत करना ही आता है और पढ़ना नहीं आता। जरा पढ़कर सुना दो कूपन पर मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तुम शायद जानते नहीं, मेरा बेटा फौज में है। हाँ तो पढ़ो।
0: लिखा है, प्रिय माता जी प्रणाम।
1: अरे, तुम्हारी आवाज भी कुमार स्वामी जैसी ही है। तुम्हारे अगर मुझे हो और गाल पर मस्सा हो तो तुम में और मेरे कुमार स्वामी में कोई फर्क नहीं होगा। ओह, भगवान की कैसी लीला है। अच्छा, आगे बढ़ो बेटा।
0: मैं यहाँ सकुशल हूँ। मेरा विश्वास है कि आप और नीला भी सकुशल होंगी। मुझे घर का खाना बार बार याद आता है। आपके हाथ से बना खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। जब छुट्टी मिलेगी तब जरूर आऊंगा। आपका बेटा कुमार स्वामी।
1: बेचारा, अब फौज में जाकर मेरे बनाए खाने के लिए तरस रहा है। किसने कहा था फौज में भर्ती होने को?
0: ऐसा न कहिए माँ जी, निकम्मों की तरह गांव में आवारागर्दी करने की अपेक्षा सीमा रक्षा के मोर्चे पर जाकर देश सेवा करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कहूँगा आपका बेटा धन्य है।
1: क्यों बेटा, मेरे कुमार स्वामी के लिए वहाँ कोई खतरा तो नहीं?
0: देखिए माँ जी, खतरा कहाँ नहीं है। अगर हर कोई आदमी अपनी जान की चिंता करने लगे तो देश की चिंता कौन करेगा, सीमा रक्षा की चिंता कौन करेगा? आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो देश के शुभ काम में लगा हुआ है।
1: बेटा, ये कहकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे इस तरह धीरज बंधाने वाले, तसल्ली देने वाले तुम इस गांव में पहले आदमी हो। इस गांव में मेरा अपना कोई नहीं, दूर के रिश्ते का एक भाई है जो आवारा और बदमाश है।
0: सिंगारम, अभी आते आते उसे देखा था।
1: वो हमेशा मुझसे कहता है कि मेरा बेटा मोर्चे से वापस नहीं आएगा। हमेशा ऐसी ही अशुभ बातें उसके मुंह से निकलती
0: हैं। माँ जी, अगर एक आदमी के कहने से दूसरा आदमी मर सकता है तो इस संसार में कोई भी जिंदा न बचे। और रहा वो सिंगारम, उसके कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप चिंता न कीजिए।
1: जियो बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही बेटे से मिलकर बातें कर रही हूँ। अच्छा, ये लो 10 रुपए, कुछ खा पी लेना।
0: पैसे रहने दीजिए माँ जी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही बहुत है। आपकी कृपा से सरकार जो वेतन देती है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। और फिर मनी ऑर्डर देकर बदले में किसी से कुछ पैसा लेना डाक आने के कानून के खिलाफ है।
1: क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? शादी हो गई है?
0: मैं तो एक तरह से अनाथ हूँ माँ जी, और शादी की क्या जल्दी है अभी। अच्छा तो चलता हूँ माँ जी, बहुत सी डाक बांटनी है अभी।
1: जब कभी समय मिले तो इधर आ जाया करो, और नहीं तो मेरे मन को कुछ तसल्ली ही मिलती रहेगी। हाँ, आओगे ना बेटा?
0: आऊंगा माँ जी।

0: जरा देखकर चलना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपका घड़ा नीचे नहीं गिरा।
1: माफ कीजिए, मैं अपने ख्याल में चली जा रही थी कि कोई चिट्ठी है।
0: आपके लिए तो नहीं है,
1: मेरा मतलब है शिवकामी अम्मा के नाम कोई चिट्ठी है।
0: तो क्या आपको उस बुढ़िया की चिंता है?
1: वो मेरी नानी लगती है ना।
0: आपकी नानी? ओह समझा, आपका नाम।
1: मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे?
0: जी जी, वो जब कभी आपकी चिट्ठी आएगी तो।
1: मेरा नाम नीला है।
0: इस गांव में इतनी सुंदर लड़की, इसका नाम नीला नहीं चांदनी होना चाहिए था। अरे ये मैं क्या सोचने लगा, नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं इस गांव का डाकिया हूँ, डाकिया।

0: कहो जीजी, कैसा हाल चाल है?
1: कौन? शिंगारक? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर आकर बीड़ी ना पिया कर। ओह, मेरा तो दम घुट रहा है।
0: मेरी हैसियत तो बीड़ी ही पीने की है जीजी। तुम्हारा बेटा सेना में खूब कमाता है। वो नीला कहाँ गई है?
1: उसकी चिंता तू क्यों करता है? तुझे अपने काम।
0: अरे अरे अरे, अरे। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है जीजी। जवान लड़की है और अच्छा, कल तुम्हें कोई मनी ऑर्डर मिला था क्या?
1: क्या तुझे भी मालूम हो गया?
0: कैसी बातें कर रही हो जीजी? भले ही प्राण यमराज की जानकारी के बिना निकल जाए, लेकिन इस काम में कोई भी काम मेरी जानकारी के बिना नहीं हो सकता है। नहीं जानती क्या?
1: मेरे लिए तो तू यमराज ही है। अच्छा, कब चलता फिरता नजर आ?
0: इस तरह क्यों दुत्कारती हो जीजी? बड़े जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो ना।
1: अच्छा अच्छा, ये ले पानी। और अब
0: जी जी, इस उम्र में तुम खुद क्यों काम करती हो? नीला कहाँ गई? मैंने पानी ये सोचकर मांगा था कि तुम नीला को ही पानी लाने के लिए कहोगे।
1: मुझे भी मालूम था कि तूने पानी क्यों मांगा। मैंने नीला से कह रखा है कि वो तेरे सामने कभी ना आए।
0: तुम तो नीला को इस तरह से सहेज संभाल कर रखती हो मानो तुम्हारा बेटा कल परसों आकर उससे शादी कर लेगा और वो तुम्हारी बहू बन जाएगी। अरे वो कुमार स्वामी नीला से शादी करेगा या मोर्चे पर दुश्मन की गोली से मरेगा, कौन जाने।
1: शिंगारम, सवेरे सवेरे आकर तू क्यों इस तरह मेरा दिल दुखाता है? तुम्हारी ये उल जलूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: मैं क्या करूं जीजी, मेरी जबान जरा लंबी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। मैं तो यही कहना चाहता था कि तुम अगर नीला की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं उसे रानी की तरह रखूंगा।
1: अरे मैं अंधी नहीं जो तोता पालकर बंदर के हाथ में दे दूं।
0: अच्छा, खैर कोई बात नहीं, ये बात तो फिर कभी होती रहेगी। पहले ये बताओ, लड़के ने कितने रुपए भेजे हैं?
1: कितने भी भेजे हो तुझे क्या मतलब?
0: मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ। सब रुपए अभी तो खर्च करोगी नहीं, अगर मुझे भी कुछ रुपए दे दो तो मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। यकीन मानो मुझे रुपए देना बैंक में जमा करने के बराबर है।
1: नहीं, अंधे कुएं में डालने के बराबर है। अब कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी, चला जा यहाँ से।
0: मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर आदर दे रहा हूँ।
1: तू मेरा कुछ नहीं लगता और जाता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैं तुम्हारा

0: बदमाश शिंकारम खड़ा है। अब मैं क्या करूं? नानी ने इसके सामने ना पढ़ने को कहा था। अरे मुझे देखकर ये इधर आ रहा है, यहाँ तो एकदम सुनसान है। आप क्या करो, सिर पर पानी का घड़ा और अच्छा पेड़ों की झुरमुट की आड़ लेकर भागती हूँ।
1: अरे नीला, क्यों तुम हिरनी की तरह भाग रही हो? रुको, मैं कहता हूँ रुको।
2: क्या नल से पानी लाई हो? अरे घबराती क्यों हो? मैं भाग थोड़ी हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। चलो हंसकर दो बातें करो। और
0: मुझे घर जाना है, नानी अकेली है।
2: मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ तुम्हारे साथ।
0: मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मालूम है।
2: मैंने कब कहा कि तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है? देखो नीला, जमाना बहुत बुरा है, तुम जवान लड़की हो, गांव में बदमाशों की कमी नहीं है, रास्ते में कहीं भी किसी ने छेड़छाड़ की तो
0: और कोई क्या करेगा।
2: ये बात है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर बातें करने लगी हूँ। कल ही तुम्हारी नानी के पास पहुँचूंगा और डरा धमका कर जैसे भी हो शादी की बात पक्की करके रहूंगा। देखना तुम मुझसे ही शादी करोगी।
0: जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये कभी नहीं होने का।
2: अच्छा?
0: मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी, ज्यादा किया तो मेरी लाश को ही शायद मंगलसूत्र बांध सकूंगी।
2: अच्छा ये बात है।
0: छोड़
2: दे,
3: चेहरा जो बन गया उसे मैं छोड़ समा डालूंगा।
2: अरे बाप रे, दागी ने मार डाला। अरे बताओ बताओ।
3: यहाँ कोई नहीं बताएगा तुझे। तीन पापड़ एक अपने लड़की से छेड़छाड़ करता है, तेरी ये हिम्मत? बदमाश कमीना कहीं का, तू जैसे लफंगों की वजह से सारी पुरुष जाति की बदनामी होती है।
2: अरे बकवास बंद करो डाके, गांव में नया नया आया है और मुझ पर तू हाथ उठाता है। अच्छा देख लूंगा तुझे।
3: अरे अभी देख लेना अच्छी तरह से, अभी जो तेरी धुनाई की है अगर वो काफी नहीं तो लगाऊं तो चलो हम घर का रख दूंगा। क्या समझ रखा है तुमने?
2: अगर मैं अपने दल बल के साथ होता तो जरूर समझा देता तुझे। तुम जैसे कल के छोकरे से क्या भिड़ो, तुझसे उलझना मेरे लिए बेइज्जती की बात है। अच्छा अभी तो जाता हूँ, लेकिन एक दिन तुझसे बदला जरूर लेकर आऊंगा।
0: मैं किस मुंह से आपको धन्यवाद दूं? आपने ठीक समय पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो ना जाने वो बदमाश क्या कर बैठता।
4: भगवान सबका रक्षक है। आओ नीला, तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में किसी बदमाश की इतनी जरूरत हो सकती है।
0: जी इस गांव के सब लोग अच्छे हैं, ना कोई किसी से झगड़ा करता है ना लड़ाई, सिर्फ यही एक शिंगारम ही ऐसा आदमी है जो सबको डराता धमकाता फिरता है। इसका अपना कोई आगे पीछे है नहीं, सो
4: तुम्हारी नानी इसकी बहन जो लगती है।
0: अरे नहीं, मेरी नानी का ये बहुत दूर के रिश्ते का भाई लगता है, इसी नाते ही हमारे घर आता जाता है। पहले ये मेरी माँ से शादी करना चाहता था।
4: हाँ हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जायज मानी जाती है।
0: लेकिन मामा ढंग का तो हो, मेरी नानी ने शिंगारम की बात नहीं मानी और अपनी बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी दूसरी जगह कर दी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी।
4: ओह तो तुम्हारी माँ नहीं है?
0: आप तो बाप भी नहीं है, लेकिन नानी ने मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे माँ की तरह प्यार करती हैं। अब वो बदमाश शिंगारम मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है।
4: तुम्हारा अपना इरादा क्या है?
0: मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगी।
4: हाँ हाँ, रिवाज के मुताबिक तुम तो अपने फौजी मामा कुमार स्वामी से ही शादी करोगी।
0: अरे अरे, बातों बातों में घर तक पहुंच गए। अब कोई डर नहीं, मैं जाती हूँ। समय पर आकर आपने मुझे इस बदमाश से बचा लिया, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी।
4: अरे रहने भी दो, ऐसा कौन सा बड़ा उपकार किया है मैंने? चलिए, कितनी सुंदर है ये, और सुशील भी, बोली ऐसी मानो कानों में मिश्री घोल दी हो। अगर कहीं ये, छी छी, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा सोचना पागलपन है, पाप है, ये कैसे संभव हो सकता है? जब उसका मंगेतर है तब, ओह, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जब से मैंने नीला को देखा है तब से मेरा मन उसी की ओर खींचता जा रहा है। लेकिन मैं तो एक डाकिया ठहरा, घर घर डाक बांटने वाला। मेरे मन में किसी लड़के के बारे में ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। घर के अंदर जाऊं या कोई अर्ज नहीं, नीला को मैंने अभी अभी कहीं बाहर जाते देखा है। मैं तो शिवकामी अम्माल से मिलना चाहता हूं, अपनी माँ से मिलना चाहता हूं, उससे बातें करता हूं तो लगता है जैसे अपनी माँ के पास बैठा हूं। मैं अनाथ कब से अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा था। माँ जी।
5: कौन? कंद स्वामी, आओ बेटा, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है।
6: माँ जी, आज आपके लिए कोई चिट्ठी नहीं है।
5: अरे अगर चिट्ठी नहीं है तो तुम अपनी माँ से मिलने ही नहीं आओगे, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना।
6: अरे ये खांसी, आप लेटी हुई क्यों है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
5: कल रात से सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, साथ ही कुछ खांसी बुखार भी है।
6: मैं आपका सिर दबाता हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ।
5: डॉक्टर सवेरे आया था, कुछ गोलियां दे गया था, बाकी दवाई
6: मैं लाता हूँ। दवाई?
5: नहीं नहीं, नीला नुस्खा लेकर डॉक्टर की दुकान पर गई है। तुम इतनी दिनों से क्यों नहीं आए? मरने से पहले मैं तुम्हें।
6: ये आप क्या कह रही है माँ जी, मामूली खांसी बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी।
5: बेटा तुम्हारी भावना को मैं समझती हूँ, तुम्हें मैंने अपना दूसरा बेटा मान लिया है।
6: माँ, आप जैसी माँ को पाने के लिए कई जन्मों तक पुण्य कर्म करने चाहिए। आज मैं कितना खुश हूँ, अब मैं अनाथ नहीं हूँ।
5: अरे खुश तो मैं हूँ, जिसके एक भी दो बेटे हैं। जरा जरा मेरे पास आओ।
6: लो माँ।
7: के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे, पोस्टमैन। इस नाटक का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। हिंदी अनुवादक थे पीएस कृष्णस्वामी और निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी उदयपुर की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ का

0: और ये मराठी लावणी।
1: पाडाला पिकलाय आंबा, आला बाई पाडाला पिकलाय आम, हो नीट बघ पाडाला पिकलाय आंबा।
0: और ये हिंदी गाना।
1: ओ, ओ, ओ, पंख होते तोड़ आती रे।
0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग।
2: नमस्कार श्रोताओं,

0: आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हां, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमारे सुनने वालों से जुट जाऊंगी। हालांकि 25 साल प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे लोग, मतलब जो आके बोलते हैं आपका शो देखा, मुक्त इतने साल पहले आपका शो देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। उससे ज्यादा खुशी आज यहाँ आने से मुझे मिली है कि और दर्शकों तक मैं पहुंच जाऊंगी और गाने भी पेश कर पाऊंगी।
0: क्या बात है,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: प्रमिला जी, सुनहरी यादें की शुरुआत जब हुई थी, असल में आपके करियर की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी।
1: जी,
0: तो हम तब से बात शुरू करें।
1: जी,
0: कि वो पहला कौन सा मौका था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने का मौका मिला?
1: फिल्म इंडस्ट्री के गाने का, तब के बहुत ही मशहूर संगीतकार वसंत देसाई जी थे, सी रामचंद्र थे
0: जी,
1: उनके पास मैंने मराठी फिल्मों में गाने गाए।
0: हाँ।
1: और फिर थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा था कि किसी के पास जाए और मुझे आप काम दे दे या कोई मुझे गाना दे दे, ये मेरा नेचर नहीं था। तो मेरे हस्बैंड को भी वो मालूम था कि ये ऐसी नहीं बनने वाली। तो एक बहुत अच्छी यादगार है कि मराठी ड्रामा जो हमारे हैं उसमें मुझे काम करने के लिए पूछा गया था। वो प्रभाकर पणशीकर जी हैं, राजा राम शिंदे जी थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूं क्या, तो बोले तेरा मन है तो कर, लेकिन तुम अपना कुछ शुरू करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो हिसाब से फिर सोचते सोचते भी सुनहरी यादें, फिर नाम क्या रखे।
0: हाँ।
1: तो एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, अभी वो दिल्ली में, उनका नाम ही मुझे याद, अशोक जैन करके।
0: जी, जी जी।
1: तो उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया कि आप ज्यादातर पुराने गाने लोग पसंद करते हैं, तो आप सुनहरी यादें नाम रखिए।
0: हाँ।
1: बहुत यूनिक और थोड़ा अलग सा है, प्रमिला नारायण ऑर्केस्ट्रा, और इससे सबसे पहले ही वो थोड़ा सा अच्छा लगता है नाम, क्योंकि पुराने गाने ज्यादा पेश करने का इरादा था उसमें।
0: वाह वाह
1: जी।
0: तो पहला शो कब हुआ था सुनहरी यादें?
1: पहला शो 1975 14 अप्रैल,
0: जी,
1: जो दिन गुड़ी पाड़वा था, हमारे साल शुरू होता है गुड़ी पाड़वा के दिन।
0: हाँ, हाँ,
1: तो उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया।
0: क्या बात है
1: जी,
0: हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है।
1: मुहूर्त माना,
0: तो क्या बात,
1: हमारे 3.5 मुहूर्त बोलते हैं अच्छे जिस दिन, उनमें पाड़वा बहुत अहमियत रखता है, गुड़ी पाड़वा।
0: क्या बात है
1: जी।
0: ये सिलसिला शुरू हुआ, मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी?
1: हाँ, फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ। जैसे मैं कहना अन्ना जी के साथ घरकुल करके पिक्चर था अन्ना जी का, वो हाउस ऑफ बैम्बू मन्नादा के साथ गाना था।
0: हाँ, हाँ।
1: तो मेरे लिए तो इतना अच्छा मौका था, वो सुवर्ण संधि बोलते हैं कि मन्नादा के साथ मैं गाना गा रही हूँ। वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा संगा कोणा से, वो जो गाना है मुझे देखते ही पप्पा संगा, छोटे बच्चे भी पप्पा संगा कोणा। मुझे याद है छोटे से किस्सा है, मैं अमेरिका गई थी
0: जी।
1: मेरी एक पोती वहां रहती है, मैं छोटी सी थी 4-5 साल की। तो मुझे देख के ऐसे हो गए, क्या हुआ उसको, तो हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा कोणा से ये आजी ने गाना गाया है। तो वो इतनी खुश हो गई। अच्छा, मुझे बोली अच्छा। तू मेरे लिए गाओगी? तो मैं हाँ जरूर गाओगी।
0: क्या बात,
1: बहुत मजा आया उससे, बच्चों से लेकर।
0: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का हुआ
1: जी,
0: तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो फहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी, आपको याद है?
1: इतना सा तो नहीं, लेकिन एकदम मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए, अजीब दास्तां, ये इस तरह के सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त।
0: बिल्कुल। तो आपने जितने शो किए हैं उसकी बातें होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ आपने टूर्स किए हैं उनकी भी बातें होंगी, मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी। आप किसी गायिका से ये पूछना कि आपके पसंद का गाना कौन सा है, जरा मुश्किल है।
1: राइट।
0: तो फिर भी पहला गाना इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सा चुनना चाहेंगे?
1: मैं ऐसे एक नॉन फिल्मी गीत है, मुझे हाँ। वो बहुत पसंद है, वो आज जाने की जिद ना करो।
0: ओ, क्या बात,
1: आई लव दैट सॉन्ग, बहुत
0: अलग अलग।

0: गायिकाओं ने अलग अलग मौके पे
1: ऐसे में मैंने शो में एक मेडली करके एक आइटम पेश कर दी थी, अलग अलग गायिकाओं के गाने हुए
0: जी,
1: उसकी झलक उसमें मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा जी,
0: जी
1: और ऐसे सब गायिकाओं के, सलमा आगा गाने, एक एक अंतरा वो लोग बहुत पसंद करते थे उस आइटम
0: जी। तो आप एक लाइन इसकी गुनगुनाइए।

0: प्रमिला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं। बचपन कहाँ बीता?
1: बचपन बहुत, मतलब जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं।
0: जी जी।
1: मेरे पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी।
0: ये किस शहर की बात हो रही है?
1: बम्बई।
0: अच्छा, मुंबई। मुंबई में?
1: गिरगांव में।
0: गिरगांव
1: में हमारा रहना भी वहाँ था।
0: मुंबई जैसे
1: सब चाल थे सब।
0: जी,
1: ऐसे
0: जी, जी, जी।
1: और वैसे एक चाल थे, लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था। किसी घर में कोई कुछ कार्य हो जैसे पापड़ बेलना, सब
0: मिलकर
1: सब मिलकर काम करते थे। बहुत मजा आता था, लेकिन पूरा एक चाल कुटुंब जैसा था। और सब सब गणपति दिवाली सब त्योहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि लगता था हम सबका एक ही त्योहार है और सब लोग मजे कर रहे हैं। बहुत ही मजा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मेरे पिताजी ने बाहर होटल में चार आने की चाय कभी नहीं पी जाके।
0: अच्छा।
1: लेकिन घर में दूध सब सब इतना खाने का माहौल, इतना अच्छा सकस खाना मिलता था घर में। बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को। जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था। तो बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं थी। इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था, मुझे गाने तो पसंद थी मेरी। तो हमारे स्कूल में नाश्ता नवरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरुओं के हिसाब से बहुत अच्छे थे।
0: अच्छा।
1: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में।
0: अच्छा।
1: तो इसीलिए जाना हुआ।
0: हाँ।
1: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे,
0: तो
1: गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे।

0: दादर में क्लास होता तो
1: अच्छा,
0: तो बहुत से स्कूल में था और स्कूल खत्म करके अपना क्लास खत्म करके घर आ जाए, और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का।
1: अच्छा।
0: तो इसीलिए वो सब इतना सुविधाएं थी, तो उसकी वजह से वो हो गया। पहली बार मैं मुंबई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई, क्योंकि वहां म्यूजिक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था।
1: जी जी।
0: तो SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था दिल्ली में। तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके
1: संगीत शारदा,
0: संगीत शारदा।
1: जी जी।
0: तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई।
1: अच्छा।
0: मेरी आवाज जरा भारी थी, जा रही थी, तो पुरुष के गायक के लायक थी।
1: अच्छा।
0: और हाइट भी अच्छी थी।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: मैं कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है,
1: जी, जी।
0: नारद का रोल किया है स्कूल में। तो स्कूल के
1: ये महिला विश्वविद्यालय,
0: महिला विश्वविद्यालय नहीं, वो स्कूल की बात कर रही हूँ। महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था।
1: अच्छा।
0: तो वो हमने उधर किया यूथ फेस्टिवल में। तो पहली बार मैं बंबई छोड़ के अकेली दिल्ली गई यूथ फेस्टिवल के।
1: अच्छा,
0: बाकी
1: अच्छा।
0: फ्रेंड्स वगैरह थे साथ, बहुत मजा आया दिल्ली में। और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या नहीं ऐसा हुआ था।
1: क्या बात है,
0: बहुत मजा आया।
1: उस संगीत शारदा से कोई नाट्यपद जिसकी एक लाइन आप
0: जरूर जरूर।

0: वाह वाह, क्या बात है। बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था। और तब स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी,
1: पुरुष
0: तो पुरुष किया करते थे, जिसके लिए नारायण राजहंस से यानी बाल गंधर्व जाने जाते हैं।
1: राइट, राइट।
0: और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार प्रसिद्ध हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के लिए।
1: यहाँ उल्टे मामला हुआ,
0: और मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका इस नाटक में निभाई थी। जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
1: एक तो एक न्यूट फेस्टिवल का ये था,
0: जी,
1: हमारे जब मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज भी मिला। और बाद में मैं एक फिल्म डिवीजन की छोटी सी वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने, तो उसमें भी मैंने रोल किया था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि एक वहाँ के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला में कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 लड़कियां खड़ी थी तो उन्होंने मुझे चुना। और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी, पहले जमाने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में दिखाते थे, अभी तो वो मामला बंद हो गया शायद। हाँ। फिल्म डिवीजन भी चालू है, कभी पता नहीं। हाँ। तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए।
0: हाँ।
1: फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में बीए किया मैंने म्यूजिक लेके, तो म्यूजिक एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें बीए तक। और बीए का वो एग्जाम हुआ और इंटर में जब भी मैंने 16 साल की तब शादी हो गए।
0: अच्छा।
1: 42 साल का मेरा जन्म है।
0: हाँ।
1: और 58 को शादी हो गई 16 साल की।
0: हाँ।
1: तो 58 को शादी हो गई, फिर मैं ऐसे घर में, तो बीए हो गया, मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई तो पहली बेटी हो गई। तो 1962 में
0: जी
1: उसका बेटे का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने, कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है, तुम कर रही हो तो क्यों रोकती हो, एमए करो। एमए में इंटर म्यूजिक था एसएनडीटी में।
0: हाँ।
1: तो उनकी बदौलत मैं एमए करने के लिए गई। और घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी।
0: हाँ।
1: और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब जिजिक होती है।
0: हाँ।
1: कि जाओ कि नहीं, तो उस तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी, कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभालती थी बच्चों को। तो 62 में मैंने एमए किया फिर।
0: वाह।
1: और फिर एमए किया और फिर 68 में पहला मौका आया तलत साहब के साथ।
0: अच्छा।
1: हाँ, तलत साहब के साथ एक नंदी गुगल करके प्रमोटर थे।

0: तो मेरे हस्बैंड लायंस क्लब के मेंबर थे, तो वहां पे मैं इधर उधर एक दो गाने चली, प्रमिला जी आप गाने गाइए, कुछ फंक्शन हुआ लायंस क्लब का, तो नंदी मुगल जी ने सुना मुझे और मुझे आए, उन्होंने पूछे कि आप चलेगी क्या? मैंने चलेगी,
1: दौड़ते
0: जाऊंगी, कूदते जाऊंगी। तो तलत साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला, 3 महीने का वो टूर था हमारा,
1: क्या बात,
0: और 2 बेटियां, एक 4 साल की, एक 6 साल की, लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की, मैं बिंदास चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से। और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लीजेंड्स है
1: जी जी,
0: उनका यहाँ वहां इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब देखा हुआ जाके कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछते, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके गाने, ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे, बहुत मजा आया टूर में, उनसे वो सीखने को मिला।
1: तलत साहब को आपने याद किया तो कोई गाना उनका इस वक्त हम सुनाए अपने श्रोताओं को। तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए हैं,
0: मराठी में गाने थे
1: जी जी,

0: बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी, फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं।
1: घूमी
0: जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था?
1: नहीं, सबसे
0: पहले वेस्ट इंडीज के बारे में बताया।
1: ज्यादा तो जी
0: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ
1: गए। फिर उसी को नंदी दुग्गल जी थे
0: जी
1: प्रमोटर अगली बार, तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ जाने के लिए, मैंने कहा बाबा भाई मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा।
0: जी, जी।
1: तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया, हमने टूर किया।
0: अच्छा,
1: ईस्ट अफ्रीके का।
0: हाँ,
1: उनके तो क्या एक किस्से में, सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था, ना तो प्लेबैक गाया हुआ था फिल्मों के, तो उन्होंने पहले ही शर्त डाला कि मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा।
0: हाँ,
1: मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं।
0: हाँ,
1: और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट का। तो मैं अपने गाने गा के, मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती थी।
0: जी,
1: तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था, दम मारो दम। तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की रेंज और आशा भाई की रेंज, तो दोनों में मैं संभालती थी कैसे भी करके।
0: अच्छा।
1: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना, तो इनवेरिएबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था।
0: अच्छा।
1: दम मारो दम। तो किशोर कुमार जी मेरे बाद उनकी एंट्री थी
0: जी, जी।
1: तो स्टेज पे आए थे, दम मारो दम ऐसा करते थे।
0: अच्छा।
1: तो वो कहा मैं कहा, फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको, जो मैंने नोटिस किया उनको।
0: जी, जी।
1: इतने बड़े, बहुत बहुत ही बड़े सर, सब गायक कलाकार लेजेंड्स हैं, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती वहां शेर कैसा है, इधर उधर इधर ऐसा घूमते, बहुत अस्वस्थ रहते थे।
0: जी, जी।
1: और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे, अब्दुल मेरा टॉवल का, अब्दुल मेरा ये का, अब्दुल और एक बार स्टेज पे गए छूट गए फिर। मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे कि आपने तीन चार गाने गा के ये लोगों सामने से सुनते बैठू, बहुत ही भाग्य था मेरा इस बारे में। रफी साहब को
0: किशोरदा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ?
1: ड्यूएट नहीं गाया,
0: नहीं गाया। अगर किशोरदा को याद करने के लिए कोई गीत सुने तो कौन सा होगा वो?

0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोगों ने क्या कहा जब आपने मंच पे प्रस्तुत
1: किया? लोगों ने बहुत नाम भी रखे, क्योंकि ये क्या है, वो
0: मतलब टीका टिप्पणी की, आप जो
1: टीका टिप्पणी की,
0: जी, जी, जी, जी.
1: वो मेरे लिए अच्छी थी, साबित हुई.
0: हाँ,
1: उसकी वजह ये है कि लोगों की टीका टिप्पणी मतलब ये, अब 3 घंटे स्टेज पे खड़ा होना, कंपेयरिंग मैं ही करती थी.
0: अच्छा,
1: खड़ा होना, गाने गाना, फिर बाकी सब म्यूजिशियन को संभालना, ये भी बातें आती थी उसमें.
0: जी, जी.
1: तो ये जिनको मालूम नहीं है कि इसमें कितने कष्ट है या इसमें कितनी कठिनाइयां है, तो लोग क्या, हाँ वो दूसरे के गाए हुए जो पॉपुलर गीत है वही गाती है.
0: अच्छा.
1: हाँ, मतलब अपना कुछ नहीं है उनका, शायद रोक होगा मुझे पता नहीं. लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी. हाँ. लता जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में. फिर अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से
0: जी.
1: लोगों ने कहा कि अब तुम खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बन के इतने साल हुए, कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस. अच्छा. कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या प्रोग्राम किए. तो मुझे उससे ये मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए अभी बैठ के नहीं का. तो मैंने अपना ये लिखना शुरू किया, एक छोटा छोटा एक्सपीरियंस.
0: अच्छा.
1: जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए थे.
0: हाँ, हाँ, हाँ.
1: तो वो शुरू किए. बाद में वो किसी ने बोला कि वो दिख रही हो तो एक गाना भी गाओ ना साथ में.
0: अच्छा.
1: मेरी सब सहेलियां, मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ मैं गाने गा के भेजती हूँ. रोज सुबह मेरा ये काम होता है.
0: क्या बात है.
1: कुछ लिखा हुआ, कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं
0: सोशल मीडिया
1: पे. तो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती हूँ.
0: क्या बात है.
1: हाँ. तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके जरिए कि कोई भी गाना हो.
0: हाँ.
1: वो तुम तुम्हारा करके गाती हो.
0: हाँ.
1: वो प्रमिला दादा का गाना लगता है.
0: अच्छा.
1: क्योंकि लता बाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज नहीं जाती. आशा बाई जो रेंज में, मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी, पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी पहले
0: जी,
1: गाने
0: जी.
1: अभी नहीं आवाज जाती है, काली एक, काली पांच, काली एक तक जाती. तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा सा मैं अपनी वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है क्लासिकल म्यूजिक का.
0: हाँ.
1: तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो तुम्हारा हो जाता है.
0: क्योंकि
1: मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ. ये मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है. वो उसका मेरा उत्साह और बड़ा करीब करीब अभी मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके हारमोनियम पे से
0: क्या बात है
1: भेजे.
0: अच्छा.
1: कभी कभी अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके उसके साथ गाए. लेकिन बहुतर गाने मैंने ऐसे ही गाए, मजा आता है, मुझे भी अच्छा लगता है.
0: तो इसमें आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो, ऐसा भी हुआ?
1: नहीं, मुझे नहीं याद आता है. अलका याग्निक का एक गाना गाया शायद, अलका याग्निक का.
0: अच्छा.
1: मोह मोह के धागे,
0: मोह मोह के धागे दम लगा के रहेशा, इस पे
1: दम लगा के रहेशा उसका.
0: लेकिन आपने ट्राई किया है, आप पे गाया है.
1: हाँ, मोह मोह के है.
0: तो इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को.

0: आप जब सुनहरी यादें में गीतों का चयन करती थी कि आज मंच पर ये गीत हमें प्रस्तुत करना है, तो अलग अलग गायिकाओं के गीत
1: जी,
0: उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना है, ये आपका हमेशा से रवैया रहा है
1: क्या? नकल नहीं, किसी
0: नकल किसी की नहीं, यानी मिमिक्री नहीं,
1: मिमिक्री नहीं।
0: अच्छा,
1: अपनी गीता दत्त के गाने बहुत मुझे पसंद।
0: लेकिन आशा जी का गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज, आपको अपने अंदाज में भी गाना
1: है? तो अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था,
0: आता ही था,
1: क्योंकि ओरिजिनल उन्होंने गाया हुआ है, मतलब शब्दोच्चार या कोई हरकत या कोई मुर्की या उनकी उनकी तरह से, तो वो आता ही था अपने आप से,
0: अपने आप
1: नॉट नकल करने के हिसाब से नहीं आता था वो।
0: जी जी,
1: क्योंकि इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज नहीं जा रही है तो क्यों ये हट, क्यों कि लता जी के रेंज में ही मैं गाऊं, ऊपर जाके फिर वो आवाज डबल हो जाएगी, उसके बदले अपनी जिसमें तुम कंफर्टेबल हो उसी रेंज में गाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है।
1: ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही हूँ।
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अनुभव,
1: क्योंकि आजकल वो जो कैरियो के जो प्रकार आया है ना,
0: जी जी,
1: आई हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ, मैं भी गाता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ सीखो, अच्छी तरह से तालीम पाओ, और इतना आसान नहीं है। नहीं तो एक ही लता मंगेशकर, एक ही आशा भोसले नहीं होती थी, बहुत सारे निकलते थे चिकबली चौबने में।
0: क्या बात है, तालीम बहुत जरूरी है, क्लासिकल बहुत ही सीखना कितना जरूरी है आपको लगता है?
1: बहुत, पहले 3-4-5 साल तो, फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट म्यूजिक
0: जी,
1: लेकिन आवाज की तैयारी, जो हरकतें मुरकतें, फिर अपने गले से नहीं है तो कोई अपने हिसाब से लेता है, दैट इज नॉट। मैं अलग गाती हूँ वो बात अलग है, ओरिजिनल उनका गाके फिर मैं जो मेरा मेरे हिसाब से करना होता है कुछ जो वैरायटीज वो करती हूँ, बहुत सारे गाने ऐसे उसमें मैं करती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ, मतलब वो जो हरकत है वो ऐसी ही आनी चाहिए,
0: जो ओरिजिनल है पहले
1: वो तो गाओ, नकल ना नहीं आती उसमें
0: जी,
1: लेकिन
0: जी, जी।
1: उसमें आवाज की तैयारी भी हो जाती है और वो हिसाब से बहुत जरूरी है। आवाज अच्छी है मैं भी गाती हूँ वो गाना नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं अभी।
0: बिल्कुल सही।
1: तो ये जो बड़ों बड़े जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गवाई तपस्या में
0: जी,
1: वो क्यों कर

0: दे इतना
1: बिल्कुल
0: ऐसे ही गाते थे ना।
1: सही बात, बिल्कुल सही। मन्नदा की बात करते हैं, आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड किया, संगीतकार थे श्री रामचंद्र, तो मन्नदा को किस तरह से आप याद करना चाहेंगी? आपने उनके साथ शो भी किया?
0: एक शो किया बड़ौदा में।
1: अच्छा,
0: हाँ, बड़ौदा में। मन्नदा ने मुझे एक मतलब एक उनको मैंने पूछा था कि मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे, तो मेरी आवाज में वो जो मॉड्यूलेशन होता है जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही जरूरी है,
1: जी, जी।
0: क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है, तो फ्लैट लगेगा और भाव नहीं आएंगे उसमें। तो मेरी आवाज में नहीं था, किसी की आवाज में जाता होता है, किसी की आवाज में। तो मैंने मन्नदा को पूछा कि मन्नदा ये कैसा लाने का अपने आवाज में, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें अच्छा ऐसे आघात करते जाओ। अच्छा। और मेरे आवाज में अपने आप आ गया वो सब रियाज करके।
1: क्या बात,
0: बहुत ही अच्छा। फिर भी उन्होंने ये भी बोला कि ज्यादा नहीं करना, लेकिन कंप होगा तेरे आवाज में। बहुत ही अच्छा। उनका और मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू,
1: जी जी,
0: तो ये नॉन मराठी लोग जो उनके च ज मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में, बांबू चा वना च ज ज बहुत से बांबू चा वना झऱ्या चा काठी येशील सजणे सजने माझाच पाठी।
1: बिल्कुल, और ये टंग ट्विस्टिंग
0: बहुत बहुत तीन बार हुआ चार बार हुआ इतने या अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा। अन्ना बोले डरो डरो डरो मैं कुछ करता हूँ, तो उन्होंने वो नीचे डांट वगैरह देते हैं उनको बराबर लाइन में।
1: क्यों ना इस गीत की एक झलक आप सुनवा दे हमें,
0: हाउस ऑफ बैम्बू।
1: जी जी।
0: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर नंबर 54 द जिसे मॉड्यूलेशन फोर की उसके कम करना उसके ज्यादा फोर्स में गाना वो भी डिपेंड करता है।
1: जी जी जी।
0: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर हो बांबूचे घर बांबूचे दार बांबूची जमीन पिवळी शार बांबूचे घर बांबूचे दार बांबूची जमीन पिवळी शार बांबूच्या घरात आहा आहा स्वप्नाचा झुला लला लला झुलवित राहील पापा पापा तुला आणि मला। नंबर 54 है द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर नंबर 54 द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर।
0: उनका तो क्या,
1: वाह वाह। मन्नदा अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए ज्यादा जाने जाते हैं।
0: जी जी।
1: हालांकि हर गाना क्लासिकल बेस ही होता है, मगर प्योर क्लासिकल गाने प्योर जिनको कहा जाए जो लाइट कमर क्लासिकल ज्यादा लगते हैं, ऐसे उनके कई गाने।
0: लेकिन दूसरे सिंगरों में भी लक्ष्मी साहब थे, क्लासिकल गाने हैं, ऐसी बात नहीं।
1: बहुत सी,
0: लेकिन उनका जो आवाज में जो ये था दर्द या भारीपन था आवाज में, वो उसमें बहुत असर करता था गाने पे, ऐसा मुझे लगता है। मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है, मेरे प्यारे वतन।
1: वाह,
0: बहुत अच्छे। थोड़ा सुना दो।

0: क्या बात है,
1: बहुत अच्छा। ये गाना गाते वक्त रोना आता है, जो भी एक अंतरा है, माँ का दिल बन के कभी तू सीने से लग जाएगा, और कभी नन्ही सी बेटी बन के आ रहा था।
0: वाह वाह,
1: बहुत अच्छा लिखावटी गाने लिखे जाते थे, गाए जाते थे संगीतकार।
0: जी जी जी, प्रमिला जी इतने शोज आपने किए हैं और बहुत नामचीन कलाकारों के साथ भी आपको मंच पर गाने का मौका मिला है। हम रफी साहब को अभी याद करते हैं, रफी साहब के साथ।
1: रफी साहब तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है उनके। उनके साथ बहुत सारे टूर किए, साउथ अफ्रीका, फिजी, मिडिल ईस्ट, फिर झाम्बिया, मलावी, बहुत टूर किए रफी साहब के साथ। और जो उनसे सीखा है ना, मतलब सिर्फ गाना नहीं, स्वभाव के हिसाब से भी इतने नम्र, और जितना आदमी उतना नम्र स्वभाव। और उनको किसी ने सवाल पूछा, पत्रकार परिषद थी, कि आप गायक तो मतलब चोटी के हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन में क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमाते? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूं, मतलब मेरा गाना, उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं परिपूर्ण हूं, तो मैं और क्या करूं, और किसमें हाथ क्यों डालूं?
0: विनम्रता की हद है,
1: हद है, हद है। और इतने नम्र दूसरे अपने साथ में कलाकार, मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो तारीफ करनी होती है, तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग चुनते थे, वो मैंने वो कव्वाली गाई, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तो उसमें एक तो बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें सरगम भी थी, उसमें तान भी थे, तो गाया तो लोगों को भी बहुत, साउथ अफ्रीका की याद है,
0: जी जी,
1: बहुत पसंद आया लोगों को, वो गाना ही ऐसा है। तो रफी साहब सब लोग बैठे थे, हम प्रोग्राम खत्म हुआ, तो प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है। अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी है।
0: जी जी, क्या बात, वाह वाह,
1: बहुत अच्छा लगा।
0: रफी साहब के इतने सारे गाने हैं
1: जी,
0: मगर उनका कौन सा गाना आपको ज्यादा पसंद है?
1: ज्यादा पसंद नहीं बोलूंगी, सबसे सब पसंद कि ये जो गाना है उनका, तुम जो नहीं गए हो,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: जो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो गाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और तुम जो मिल गए हो,
0: जी जी
1: हाँ, हंसते जख्म,
0: जी जी,
1: तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है,
0: हंसते जख्म फिल्म का। जी बिल्कुल वही सुनते हैं।

0: तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है, ऐसा कब किसी ने आपके लिए
1: जो
0: कहा?
1: मैंने कहा 16 साल की थी जब
0: जी,
1: भी
0: हाँ हाँ
1: उनके मिलने के बाद जहां ही मिल गया,
0: क्या बात है,
1: क्योंकि माय हस्बैंड
0: जी,
1: उनके लिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं जो कर रही थी
0: हाँ,
1: उनमें मैं 5% कर रही थी, 95% उनका सहयोग था।
0: क्या बात,
1: बहुत,
0: बहुत,
1: एक छोटा इंसिडेंट बताती हूँ।
0: जी,
1: उनके पूरे आयुष्य में उन्होंने बहुत बहुत सर्जरीज हुए, उनके
0: ओहो,
1: 5 मेजर सर्जरीज, उसमें 2 हार्ट बायपास, 2 एक मैन्यूरिज्म करके हैं और 2 किडनी स्टोन की। उस वक्त रेजर वेजर कुछ लाया था,
0: जी
1: स्टेट फाड़ो जाओ किडनी तक और
0: जी
1: करो जो।
0: जी
1: तो
0: जी
1: ऐसा होके भी एक दिन उनकी अचानक से अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ी किडनी स्टोन की,
0: हाँ,
1: डॉक्टर एस डी बापट करके दादर में है,
0: जी
1: उन्होंने
0: जी
1: किया।
0: हाँ,
1: और दूसरे दिन मुझे टूर पे जाना था,
0: ओ
1: 8 दिन का टूर था, घर
0: अच्छा,
1: में सासू जी थी।
0: हाँ
1: लेकिन मैंने बोला नहीं अम्मी मैं टूर कैंसिल, क्योंकि वो सब अचानक आया,
0: हाँ
1: प्री
0: हाँ हाँ
1: प्लान तो हमारा टूर था। तो बोला नहीं मैं कैंसिल करती हूँ, कोई बात नहीं, जो नुकसान होगा वो भर देंगे उनका,
0: अच्छा,
1: और बहुत जल्दी इतला कर रहे हैं तो उनको भी सुविधा हो जाएगी कैंसिल करने की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं,
0: अच्छा
1: तुम कैंसिल नहीं करोगी, तुम जाओ वही नहीं, मतलब हम सासू जी को वही नहीं बोलते थे,
0: अच्छा
1: वही नहीं मेरे पास है, देखेगी, तुम बिंदास जाओ।
0: ओहो,
1: उस वक्त फोन बीन ये भी कुछ नहीं था, तो बीच
0: हाँ
1: में प्रोग्राम के बाद ट्रंक कॉल बुक करो, फिर वो
0: हाँ
1: आधे पौने घंटे के बाद लगे, तो
0: हाँ
1: ऐसे सब होके भी उन्होंने, ऐसे एक इंसिडेंस है,
0: हाँ
1: ऐसे बहुत सारे इंसिडेंस हुए
0: क्या बात,
1: जिसमें उन्होंने जो मेरा साथ दिया है
0: हाँ,
1: वो
0: इतना
1: मैं लगा
0: सपोर्ट,
1: दुनिया में किसी हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा
0: बिल्कुल बिल्कुल, कितनी भाग्यशाली आप हैं,
1: बहुत
0: क्या बात,
1: बहुत, मैं तो बोलू आपको हर स्तर में मैं भाग्यशाली हूँ
0: जी,
1: बचपन से गाना सीखने को उत्तेजन मिला, फिर मौके मिलते गए,
0: जी,
1: कंपटीशन में भाग लिए, फिर इस प्रोग्राम शुरू किए,
0: हाँ
1: फिर रसिकों के आग्रह से और रसिकों के मिला, मुझे उनका
0: हाँ
1: साथ मिला,
0: जी,
1: उससे वो चले, बहुत चले, 25 साल तक किए, बीच
0: हाँ
1: में ये सब रफी साहब जैसे उनके साथ ये टूर हुए।
0: जी,
1: तो मेरा जो एक आयुष्य का आलेख बोलते हैं जिंदगी का,
0: जी
1: वो चढ़ उतार रहता है, ऐसा बोलते हैं, कभी
0: जी
1: कभी चढ़ कर,

0: तो मेरा शुरू से लेकर श्रद्धा ही जा रहा है।
1: वाह वाह।
0: इसलिए मैं ईश्वर के भी आभार और बाकी मेरे आसपास जो लोग हैं बाकी के उनके भी आभार मानने चाहिए कि उनकी सबकी बदौलत ये सब हुआ।
1: क्या बात। परिवार की बात चली है
0: जी।
1: तो आपकी अगली पीढ़ी में
0: मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ गाती थी।
1: अच्छा।
0: शो में शुरू से मतलब उन्होंने तब कुछ कि मेरा ही वक्त हुआ मैं कंट्रोल कर रही हूँ।
1: अच्छा।
0: क्योंकि उन्होंने तब कोई सिखा नहीं था गाना। अच्छा। वो छोटी थी दोनों। तो उनका जाते हैं उनके पास मतलब वो हुनर था तो दोनों मेरे शो में गाती थी।
1: अच्छा।
0: हाँ मतलब बाद में बड़ी बेटी की शादी हो गई तो छोटी पे बाहर आ गए।
1: बचपन से ही उन्होंने आपको
0: उन्होंने जाते देखा तो उन्होंने
1: वो भी गाती
0: और लोग पसंद भी करते थे। ऐसे नहीं कि कचरा क्यों आए ऐसे ऐसे नहीं। और हम तब तो जब वो बड़ी हो गई तो मैं थोड़ी सी मतलब उनकी जैसी हम तीनों जैसे तो किसी ने एक बार स्टेज पे बोला किसी ने आदमी आके बाद में तुम तीनों बहनें कितनी अच्छी दिखती हो स्टेज पे।
1: क्या बात।
0: बड़ी बेटी एकदम ए हमारी माँ है वो हमारी बेटी नहीं हमारी बहन नहीं बहन नहीं है।
1: क्या बात है क्या बात। कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट।
0: बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट।
1: जी जी जी। अगर आपसे कहा जाए कि अपने परिवार के लिए एक गाना चुनिए तो कौन सा गीत होगा आप तीनों ने मिलके जो स्टेज पर गाना गाया होगा।
0: हाँ, हम लोग डुएट भी गाते थे
1: जी,
0: वो
1: जी।
0: मन क्यों बहका रे बहका वो है फिर कजरा मोहब्बत वाला वो है फिर अन्ना जी का अपलब चपलब उस पे डाल भी बताता मेरे शो में ऐसे सब डुएट वो गाने हम लोग ने तो उसका पैटर्न गाना मेरी बड़ी बेटी का पंख होती तो उड़ाती रे।
1: हाँ
0: फिर उसकी शादी हो गई तो दूसरे ने लिया वो पंख होती तो लेकिन वो गाना जरूरी था मेरे शो में बहुत लोगों को पसंद।
1: यही गीत सुनवा दिया जाए श्रोताओं।
0: अरे बाप रे।
1: रामलाल जी का कंपोजिशन है।

ये थी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। आज इस बातचीत का पहला भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: ये है विविध भारती,
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया बेरंगू किया है वहां से पहली।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
5: मैं निकला ओ गद्दी लेके ओ रास्ते पर।
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
6: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
4: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
7: आज के फनकार।
4: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
7: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
8: सुनिए,
7: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी।
9: कहिए ना।
7: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, संदेश आपके गीत हमारे ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। हम आकाशवाणी हिसार से आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। तो आइए शुरुआत करते हैं, उन श्रोताओं के नामों को शामिल करते हैं जिन्होंने अपने खूबसूरत संदेश हम तक भेजे हैं, और इसी के साथ चल पड़ेगा गीतों का कारवां जो आपके चाहने वालों के, आपके अपनों के नाम के साथ आगे बढ़ेगा। तो ये संदेश जो हमें मिला है ये है दंतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। गांव सिरडा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से मंटू शर्मा, सोनू शर्मा, सुशीला शर्मा, लीलाधर शर्मा। गांव चौधरीवास, हरियाणा से मांगेराम सतोड़, रितु सिंह, हिमानी, शुभम और यश कुमार। और ये श्रोता है शेरावली स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। और ये संदेश हमें मिला है गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया इब्राहिम और अदीब हसन का। चौधरी वास से राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, चरणदास और रेखा ने संदेश भेजा है इस कार्यक्रम में। और ये श्रोता है हमारे बाबू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश से बेबी सालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी जिकरा डावर, बेबी आयशा खत्री। और घूंघट रेडियो श्रोता संघ जिला धार धर्मपुरी से मूसा जी खत्री, ईसा जी खत्री और जाकिर खत्री। ये संदेश हमें मिला है नक्चुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर, खुश नसीब, अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर, मोहम्मद उमर डाबर, राजेंद्र कटारे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी।

और पायल जोशी। पुराना तालाब डुमराव से बलीउल्लाह अंसारी और आसमानाज अंसारी, सरगुना मेन पार्ट से विनोद थापा, पूजा रानी और विजय थापा, छत्तीसगढ़ से जानवी डोमिन यामिन और रोहित डोम, डोमी लोहरा से फारजी हरिशंकर बेलदार और फरजू प्रभा रानी बेलदार, जेल रोड रायगढ़ से उमा राज और जगदीश राज, सरगुजा मेन पार्ट से प्रभा डोमिन, प्रमिला डोमिन, आशा डोमिन, निशा डोमिन और समस्त डोमिन परिवार, छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार साहू, मीरा देवी, गंगा देवी और मिश्री देवी साहू, मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान, और ये श्रोता है गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखांडे, कल्पनाताई लोखांडे, शैलेश लोखांडे, प्रतीक्षा लोखांडे, स्वप्निल लोखांडे, रक्षता लोखांडे, रियांश लोखांडे और समस्त लोखांडे परिवार इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप। और ये संदेश हमें मिला है, हमारे श्रोता हैं ये ग्राम ममला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: संदेश आपके गीत हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार से। और आइए पढ़ते हैं आगे संदेश कौन कौन से आए हमारे श्रोताओं के। रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान, ये हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से इन्होंने संदेश भेजा है। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसबीर जस्सी और सीता और गीता इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सद्दाम और अदीब हसन। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव।

कुमार संचित वायल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख और कुमारी सानवी देशमुख। और पनिहार से ममता कविता रोहित और विनोद टेलर का संदेश हमें मिला है। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, योगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। ये संदेश आया है छप्पर वाली मस्जिद कासगांव से मोहम्मद जाहिर अली सैफी, आबाद खान, मोहम्मद जोहान सैफी, लीवा मलिक, दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू का संदेश हमें मिला है। और ये संदेश आया है गांव गैवीपुर से सतपाल सिंह राजपूत, शुभम और जीवांशु का। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक, सुनीता रानी जिंदल और संगीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी और समस्त परिवार के अन्य सदस्य। वडीखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। और ये श्रोता है, इन्होंने संदेश भेजा है गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने। गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम सतोड़, रितु सिंह, हिमानी, शुभम, यश कुमार। और ये कह रहे हैं कि कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत और सदाबहार गीतों के साथ चल रहा है और चंद गीत और इसमें शामिल होंगे। नहीं बिल्कुल मांगेराम जी, अभी एक घंटे का समय, एक घंटे का शो है, तो जाहिर तौर पर इसमें और भी सुंदर और खूबसूरत गीत इसमें शामिल होने जा रहे हैं। और ये संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी अवाना, अवनी अवाना, प्रियांशी अवाना, रियांशी अवाना, ओजस अवाना, अनाया अवाना, गुरदीप अवाना, बेबी किरत अवाना। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
2: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
4: संदेश आपके गीत हमारे ये कार्यक्रम आकाशवाणी हिसार से प्रसारित हो रहा है और इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। संदेशों के बाद कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले शामिल कर लेते हैं ये संदेश। बूढ़ चौराहा बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल सिंह, राशिका सिंह, आकृति सिंह और वंशराज सिंह का संदेश हमें मिला है। कस्बा गुनर से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन। ऊपरकोट मोहल्ला चौगुटनी। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, आबान अब्बासी और समस्त अब्बासी परिवार। और जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा का संदेश इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से सुल्तान सिंह तड़, कृष्णा, मुकेश, रामचंद्र, हिमानी, कपिल देव और परिवार के अन्य सदस्य। और ये संदेश हमें मिला है डबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, आरव और अर्पिता का। पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। और पद्मा ठाकुर नेपा नगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह का संदेश हमें मिला है। और ये संदेश आया है गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी का। और ये है संघ मित्र श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंघड़कर, दिशांत कुमार सिंघड़कर और अर्पिता जी। ये संदेश है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह का। और ये संदेश हमें मिला है हमारी ये श्रोता है कस्बा बराड़ जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरसबद सिंह राहुल। गांव जेवरा से वीरेंद्र भयान, शमशेर भयान, सुरेश भयान, मनोज भयान का संदेश इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। तो कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं।

FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। संदेश आपके गीत हमारे ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और ये संदेश हमें मिला है गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा का। मुंबई से अनु वड़जात्या, शमसुल खान और अनुराज बेनारा का संदेश हमें मिला है। गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर का संदेश इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। और ये श्रोता हैं हमारे उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कन्नौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजक रजक, लालू सोना मोना।

पनी और यस और गांव पनिहार चौक हिसार से विनोद टेलर, साहिल दहिया, कृष्ण कांत लड्डू और ममता का संदेश हमें मिला है। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी और महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास गायकवाड़, प्रीति गायकवाड़, आशा गायकवाड़, दीपांजलि गायकवाड़, दीक्षा बाघमारे और शशांक बाघमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे अपने संदेश के साथ। और ये संदेश हमें मिला है बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। उससे पहले संदेश शामिल कर लेते हैं। ये हिसार हरियाणा मंडी आदमपुर से संदेश हमें मिला है। ये हमारी श्रोता है किरण, और पटियाली रोड गंज बुंडवारा से इरफान कुरैसी, रिहान कुरैसी, फैजान कुरैसी, शहादत कुरैसी का संदेश हमें मिला है। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौर, विशाल और निशा इस कार्यक्रम में अपने संदेश के साथ शामिल हो रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत और फिर शामिल करते हैं हमारे अन्य श्रोताओं को। ये श्रोता है जिनका संदेश अभी मिला है, कृष्ण की नगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा अंसारी, हिना अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

संदेश आपके गीत हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और ये संदेश हमें मिला है, हमारे श्रोता हैं हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुर्जुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। और ये गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी का संदेश इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला।

संदेश आपके गीत हमारे इस कार्यक्रम में अभी आपने जो गीत सुना बॉर्डर फिल्म से था, और ये कुछ संदेश जो अभी हमें मिले हैं उन श्रोताओं के नाम शामिल कर लेते हैं। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जक्सन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। और ये श्रोता हैं हमारे चक 5MD पत्रोड़ से मंगल जनांगल राही, श्रीमती रोशनी जनांगल, अंकुर जनांगल, इंदु, डॉक्टर सुनील जनांगल। और इसी के साथ ही ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है। और यदि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्रत्येक शनिवार शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच ये कार्यक्रम प्रसारित होता है, संदेश आपके गीत हमारे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें संदेश व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9729253272, 9729253272। FM बैंड 102.3 MHz पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आपसे कुछ ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीथ प्रामाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एम ई बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान पीएमजीवाई के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवी ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रूपरेखा। तो आइए एक नजर डालते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही देर में शाम 6:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। शाम 6:20 पर सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत। शाम 6:30 पर कार्यक्रम युवा उमंग प्रसारित किया जाएगा। शाम 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। ये कार्यक्रम पेश करेंगे राजेंद्र दुहन और मीना मलिक। शाम 7:30 पर कार्यक्रम होगा महारे गांव।

रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम खुला आकाश के अंतर्गत एक ही फिल्म से गीत प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर राष्ट्रीय हिंदी समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हिंदी समाचारों के बाद रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार, जिनका रिले आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

रात्रि 9:15 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे हेलो हिसार कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 11 बजे राष्ट्रीय हिंदी समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार।
1: राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान कल सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। पोलिंग पार्टियों को ईवीएम एवं अन्य सामग्री प्रदान की गई। हरियाणा निर्वाचन आयोग के सचिव गौरव कुमार ने कहा, सभी मतदाताओं को वोटर पर्ची वितरित की गई। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिठा ने जींद की अधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज लाइन बिछाने और गलियों के निर्माण का काम प्राथमिकता के आधार पर करने का आश्वासन दिया। और भिवानी सहित हरियाणा के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर कई मामले आपसी सहमति से निपटाए गए। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पश्चिम बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी व बंगाल की जनता को बधाई दी।
2: ऐतिहासिक दिन है, ये बंगाल की पवित्र भूमि, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है, ये भूमि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमि है। देखिए, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जीत वर्ष 2047 के विकसित भारत के संकल्प की जीत है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने विकास, राष्ट्रहित और सुशासन के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। नए नेतृत्व के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ऐतिहासिक धरा पश्चिम बंगाल देश को नई दिशा देने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई सरकार प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर आज पोलिंग पार्टियों को ईवीएम वितरित की गई। पंचकुला में सेक्टर 14 स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में महापौर व सदस्य के चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और अन्य सामग्री वितरित की गई। पंचकुला के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतपाल शर्मा ने बताया कि मतदान के लिए 20 वार्डों में कुल 204 बूथ स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक बूथ पर 2 ईवीएम मशीनें लगाई जाएंगी, जिनमें से एक महापौर के चुनाव के लिए और दूसरी

0: नगर निगम सदस्य के चुनाव के लिए होगी। श्री शर्मा ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, शांतिपूर्ण और समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के लिए वार्ड वार ड्यूटी मजिस्ट्रेट और सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। आज जो भी कर्मचारी ड्यूटी से नदारद रहे हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ साथ FIR भी की जाएगी। पंचकुला पुलिस की उपायुक्त सृष्टि गुप्ता ने बताया कि चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।
1: तो कल के इलेक्शन है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई है। हमारी 85 लोकेशन और करीब 205 वोटिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन है, तो उसमें हमारी कुल मिला के 700 लोग हैं और जो संवेदनशील अति संवेदनशील बूथ हैं उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटी वेपन के साथ ड्यूटीज रहेंगी। और ये भी क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी आसपास 200 मीटर की परिधि पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या कैंडिडेट का टेंट न लगे, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई है।
0: उन्होंने उम्मीदवारों से आह्वान किया कि वे आदर्श आचार संहिता का दृढ़ता से पालन करें तथा चुनावों को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने में प्रशासन का सहयोग करें। कल होने वाले नगर निगम चुनाव के दृष्टिगत आज अम्बाला के OPS विद्या मंदिर स्कूल में पोलिंग पार्टियों को चुनाव संबंधी सामग्री प्रदान की गई। रिटर्निंग अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त विराट ने बताया कि आज पोलिंग पार्टियों को EVM मशीनों के साथ साथ चुनाव संबंधी अन्य सभी सामग्री दी गई। पोलिंग पार्टियों व चुनाव से जुड़े अधिकारियों को तमाम चुनाव प्रक्रिया के बारे में एक बार फिर विस्तार से बताया गया ताकि वे मतदान के कार्य को पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ संपन्न करवा सके। मतदान के बाद पोलिंग पार्टियों को EVM मशीनें इसी काउंटर पर आकर जमा करवानी होंगी। मतदान 8 बजे शुरू होगा और साय 6 बजे तक चलेगा। इससे पहले राज्य चुनाव आयोग की हिदायतों अनुसार प्रातः 7 बजे मॉक पोल भी होगी। फरीदाबाद जिले में कल होने वाले पंचायत उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन फरीदाबाद ने गांव शाहूपुरा खादर ब्लॉक तिगांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या शांति भंग करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव गौरव कुमार ने कहा है नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका चुनावों में मतदाताओं की सुविधा तथा अधिकतम मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी मतदाताओं को वोटर पर्ची वितरित की गई है। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव में पहली बार यह व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने बताया कि चिन्हित मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के सत्यापन एवं पहचान सुनिश्चित करने के लिए सभी उपायुक्तों को माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपना वोटर कार्ड अथवा राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा द्वारा निर्धारित अन्य कोई वैध पहचान पत्र साथ लाना होगा। श्री गौरव कुमार ने बताया कि सभी उपायुक्तों को दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों एवं महिला मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर सहायता बूथ तथा पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिठा ने जींद वासियों को आश्वासन दिया है कि जिन कॉलोनियों को सरकार द्वारा अधिकृत किया जा चुका है उनमें सीवरेज लाइन बिछाने और गलियों के निर्माण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। वे आज जींद में जनता दरबार लगाकर आमजन की समस्याएं सुनने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर कृष्ण मिठा ने बताया कि जनता दरबार में सबसे अधिक शिकायतें सीवरेज और फैमिली आईडी से संबंधित आई हैं।
2: लोगों की जो समस्याएं थी वो साथ के साथ आलोचना किया, बाकी डिपार्टमेंट्स को आपके कागज भेज रहे हैं और उम्मीद है कि हर कार्य जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ज्यादातर सीवरेज को लेके या आईडी को लेकर समस्या, और सीवरेज को हमने क्या देखी, जो जो कॉलोनी को ऑथराइज कर दिया गया उनके पूर्ण रूप से सीवरेज की और गलियां भरने की व्यवस्था हो जाएगी।
0: उन्होंने शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर चल रही खींचतान पर कहा कि जल्द ही बातचीत के जरिए समाधान निकाल लिया जाएगा और शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी। नौकरियों के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर डॉक्टर मिठा ने स्पष्ट कहा प्रदेश सरकार की नीति पूरी तरह पारदर्शी है। आज गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी अपनी मेहनत और

0: पिता के दम पर सरकारी नौकरी पा रहा है। भिवानी सहित हरियाणा के विभिन्न जिलों में आज इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। भिवानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि जिला मुख्यालय के अलावा तोशाम, सिवानी व लोहारू न्यायिक परिसर में लगाई गई लोक अदालत में आपराधिक मोटर वाहन दुर्घटना, पारिवारिक मामले, चालान, बैंक ऋण, दीवानी मामले, चेक बाउंस, राजस्व आदि से संबंधित मामले रखे गए। भिवानी की लोक अदालत में रखे गए कुल 27,173 में से 11,476 मामलों का निपटारा किया गया तथा 3,87,57,457 रुपए की राशि का निपटान किया गया, जबकि लोहारू में 70 में से 43, तोशाम में 72 में से 29, सिवानी में 65 में से 37 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं का एक जत्था आज तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब के दर्शन के लिए पहुंच गया। श्रद्धालुओं के नांदेड़ साहिब पहुंचने पर नांदेड़ साहिब गुरुद्वारा बोर्ड के प्रशासक डॉक्टर विजय सतवीर सिंह ने कहा कि इस योजना से संगत को गुरुओं की कुर्बानी, सिख इतिहास और देश की प्राचीन धार्मिक विरासत को जानने का अवसर मिला है। मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पश्चिम बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। कहा, केंद्र और राज्य मिलकर देश को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: FM बैंड 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओं, युवाओं दोस्तों के लिए कार्यक्रम युवा उमंग लेकर हाजिर हैं हम, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं ये संदेश।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम युवा उमंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त विवेक कुमार। दोस्तों, जिस प्रकार से सभी युवा किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या यूं कहें कि प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, सभी सफलता की दौड़ में शामिल हैं। कुछ लोग इस दौड़ में सफलता प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ सफलता की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। सफलता हासिल करने का पहला मंत्र है कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने वाले विद्यार्थी अपनी कमियों को दूर करते हुए पाठ्यक्रम के अनुरूप पढ़ाई करते हैं। अगर आप कुछ बातों को ध्यान में रखकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज कार्यक्रम युवा उमंग में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता किस प्रकार से पाई जा सकती है, इस पर खास बातचीत करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ ऐसी खास बातें बताएंगे जिसका अनुसरण करते हुए आप भी सफलता की नई इबारत लिख सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, इसकी आपको देंगे जानकारी। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये मधुर

तो दोस्तों, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे प्रतियोगी परीक्षाओं की। हम कैसे इन परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकते हैं, यदि हम कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें तो इन परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है।

सबसे पहले अपनी पढ़ाई की गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है। परीक्षा हॉल में सभी विद्यार्थियों को एक ही तरह के प्रश्न पत्र मिलते हैं। सभी विद्यार्थियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है। अगर आप भी परीक्षा हॉल में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले पढ़ाई के घंटों को गिनने की बजाय अपने गुणवत्तापूर्ण अध्ययन पर जोर दें। किसी भी परीक्षा की तैयारी के दौरान नकारात्मक विचारों से दूर रहें, हमेशा सकारात्मक सोचें। कई घंटे पढ़ाई करने से अच्छा है कि कुछ घंटे ध्यान लगाकर पढ़ाई करें। माना अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं और आपको इन 12 घंटों में सिर्फ 50% ही आए तो यह गलत है। कुछ देर ही सही पर मन को एकाग्र रखकर पढ़ाई करें। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, यह आपको तनाव से भी बचाएगा। इससे पढ़ाई में मन लगेगा और आप किसी भी परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आज का समय कड़ी प्रतियोगिता का है। यह करियर में नई ऊंचाइयां हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने का भी दौर है। करियर चाहे MBA में बनाना हो, IIT में बनाना हो या होटल मैनेजमेंट में या किसी और में, आज हर विद्यार्थी के लिए जरूरी है मानसिक सोच की। इसके अभाव में कई विद्यार्थी जल्दी हताश और निराश हो जाते हैं। इसलिए आज के दौर में मानसिक तौर पर मजबूत होना बहुत जरूरी है। यह तभी संभव हो सकेगा जब आप संबंधित परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से करेंगे। अगर आपको प्रतियोगी परीक्षा में अच्छी तैयारी करनी है तो आपके लिए जरूरी है कि आप इस परीक्षा में पूछे गए पिछले 10 वर्षों के प्रश्नों को एकत्रित करें। अगर आप किसी भी परीक्षा में पूछे गए पिछले 10 वर्षों के प्रश्नों का गहन अध्ययन करते हैं तो आपका आत्मविश्वास और सोच का दायरा काफी मजबूत हो जाएगा और आप अपनी कमियों को भी अच्छी तरह से जान जाएंगे। किसी भी उपलब्धि को पाने के लिए आपको ऊंची छलांग लगाने की जरूरत पड़ती है। हो सकता है कि आप दुनिया के सबसे तेज और प्रतिभाशाली व्यक्ति ना हो, किंतु लगातार मेहनत करें तो सफलता किसी भी कीमत पर आपकी होगी। इस दुनिया में हमारी जीत निरंतर प्रयत्नशीलता पर टिकी है। सफलता एक निरंतर चलने वाला अभ्यास है। अगर आप अपनी कमियों को पहचानते हुए उसे निरंतर सुधारते चलेंगे तो आप किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारियों का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक गीत का, तो आइए सुन लेते हैं ये खूबसूरत नगमा।

इस खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम युवा उमंग में। आज हम बात कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर। तो दोस्तों, यदि आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं तो आपको अपनी परीक्षा के अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रम पर फोकस करने की जरूरत है। दोस्तों, परीक्षा कोई भी क्यों ना हो, परीक्षा में प्रश्न पाठ्यक्रम के अनुसार ही पूछे जाते हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन करें। अगर आप सिलेबस के अनुरूप पढ़ाई करते हैं तो आप परीक्षा हॉल में बेहतर प्रदर्शन करने में अवश्य कामयाब होंगे। अक्सर यह देखा जाता है कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम को दरकिनार कर शॉर्टकट अपनाते हैं, जो कि उनकी सफलता की राह में सबसे बड़ा व्यवधान उत्पन्न करता है। इस प्रकार के विद्यार्थी पढ़ाई के बावजूद अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाते। अगर आपको सफल होना है तो आपको निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही तैयारी करनी होगी। यदि आप इस पर फोकस करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में मौजूदा परिदृश्य पर या घटनाक्रम पर प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए आवश्यक है कि बारीक घटनाओं पर भी आपकी पैनी नजर होनी चाहिए। यदि आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना है तो आप प्रतिदिन 2 घंटे करंट की तैयारी दें। इसे आप नियमित दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। आप अखबार पढ़ने के साथ ही न्यूज चैनल पर आवश्यक जो खबरें हैं उन्हें जरूर देखें।

इस प्रकार देश दुनिया के तमाम घटनाक्रम की जानकारी आपको मिलती है। यदि इसमें आपको कुछ भी विशेष लगता है तो आप उसे अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। यह परीक्षा की तैयारी के दौरान उपयोगी साबित होता है। इसके साथ ही बाजार में करंट अफेयर्स से संबंधित कई किताबें भी उपलब्ध हैं। आप किसी एक पुस्तक की नियमित पढ़ाई करें। अगर आप इस तरह की रणनीति अपनाते हैं तो आपकी तैयारी कुछ महीनों में ही बेहतर हो जाएगी और आप औरों के मुकाबले अच्छी स्थिति में होंगे। तो दोस्तों, हमारी आपकी बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त चला है एक गीत का, क्योंकि भाई जानकारी के साथ मनोरंजन भी जरूरी है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा।

कार्यक्रम युवा उमंग में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप हैं अपने रेडियो दोस्त विवेक कुमार के साथ। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की। दोस्तों, अगर आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, और सफलता भी आपके कदम चूमती हुई नजर आती है। मन से नकारात्मक विचारों को निकाल दीजिए। यदि आप कठिन से कठिन विषय की तैयारी लगातार करते हैं तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलती है। कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अर्थात लगातार अभ्यास करने से मंद बुद्धि भी विद्वान हो जाता है। जिस प्रकार कुएं से लगातार पानी भरने पर कठोर शिला यानी पत्थर पर भी रस्सी के निशान बन जाते हैं, तो जरूरत है लगातार अभ्यास करने की। आपके लिए बेहतर होगा कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सिलेबस के अनुसार पहले उसकी तैयारी करें, और तैयारी हो जाने के बाद पिछले 10 वर्षों के प्रश्नों को लेकर निर्धारित समय सीमा के अंदर खूब अभ्यास करें। पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास करने से आपको परीक्षा पैटर्न के बारे में जानकारी होगी और समय रहते अपनी कमियों को जानने का अवसर भी मिलेगा। अगर आप अपनी कमजोरियों को जानकर समय रहते उसे दूर कर लेते हैं और उसके बाद परीक्षा देते हैं तो आपके सफलता के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर ध्यान देते हुए आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे शुरुआत में ही यह सोच लें कि आपको किस क्षेत्र में करियर बनाना है, उस क्षेत्र में सफलता के लिए जुट जाएं। क्योंकि जिस क्षेत्र में आपको करियर बनाना है, यदि आप शुरुआती दौर में ही अपने आप को उस क्षेत्र के लिए तैयार करते हैं तो आपकी रुचि भी उस क्षेत्र में पैदा होती है और आप एक निर्धारित लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो मंजिल पाना आसान हो जाता है। पूर्ण समर्पण के साथ पढ़ाई करें। कोचिंग के अलावा यदि आप कहीं कोई प्रशिक्षण भी ले रहे हैं तो इसके अलावा घर में भी पढ़ाई करना बेहद आवश्यक हो जाता है। स्वयं का आत्मविश्वास बनाए रखें, खुद पर किसी भी प्रकार का दबाव ना आने दें। अपनी कमजोरियों को खोजें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। टॉपिक्स को रटने की बजाय समझकर पढ़ने की कोशिश करें। पढ़ाई में निरंतरता रखें। रेगुलर पढ़ाई करने से वह बोझिल महसूस नहीं होती है। किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी प्लानिंग से करें ताकि रिवीजन में परेशानी ना आए। तनाव से बचें। खुद को तनाव मुक्त रखने के लिए अपने हॉबी के अनुसार कोई खेल या फिर मनोरंजन के लिए अन्य माध्यम भी अपनाए जा सकते हैं। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको अगर सफलता पानी है तो जिन पहलुओं पर हमने बात की उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आप यह ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति में काबिलियत होती है और जिस व्यक्ति को खुद की क्षमताओं पर अटूट विश्वास होता है, उस व्यक्ति को किसी भी परीक्षा में या फिर यूं कहें जिंदगी में सफलता मिलने सुनिश्चित हो जाती है। अगर आप में महान लोगों जितनी प्रतिभा नहीं भी है तो यह कोई हार मान लेने वाली बात नहीं है। आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए और अपनी सोच को एक नया आयाम देना चाहिए। सफल होना कोई नामुमकिन वाली बात नहीं है। यदि हम एक बार कुछ ठान लें तो ये मान लीजिए मनुष्य के लिए असंभव कुछ भी नहीं। महान लोगों ने इसे कई बार साबित भी किया है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए इस बात में यकीन करना शुरू कर दें कि आप भी सफल होकर दिखाएंगे, और जिस दिन आपने सफल होने की ठान ली उस दिन आपको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं पाएगा और आप सफलता का एक नया इतिहास लिखने में कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि आप जुट जाएं जिंदगी को नई दिशा देने के लिए। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। तो अब अपने रेडियो दोस्त विवेक कुमार को दें इजाजत कार्यक्रम युवा उमंग से। लेकिन हाँ, आप कहीं ना जाइए, आकाशवाणी पर खास आप श्रोताओं के लिए कार्यक्रम लगातार जारी है। नमस्कार।

0: ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਅੰਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਾਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਬਾਗਵਾਨੀ ਕਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਹਮ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇ ਕੌਣ ਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਹਮ ਜੋ ਪੌਦੇ ਹੈ ਵੋ ਲਗਾ ਸਕਾਂ ਹਾਂ। ਤੋ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਾਈ ਬਾਤ ਆਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸੇ ਇਸੇ ਬਾਗ ਹੈ ਜਿਨਕਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਹਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਪੇੜ ਹੈ ਜਿਨਕਾ ਹਮ ਕਰ ਸਕਾਂ ਹਾਂ।
1: ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਬਾਤ ਕਰੀ ਕਿ ਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੇ ਬਾਗ ਹੈ ਤੋ ਇਨਮੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੈ, ਅਮਰੂਦ ਹੈ, ਬੇਰ ਹੈ, ਆਂਵਲਾ ਕਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਵਰਗੇ ਜੋ ਪੌਦੇ ਹੈ ਉਨਕਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹੈ, ਲੀਚੀ ਹੈ, ਜਾਮੂ ਹੈ, तो जिनकी उम्र जो है ना लगभग 15 से 25 साल की जब पौधे की हो जाए ना तो उसने कायाकल्प की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाए।
0: और भाई देखो बात फिर वही आ जाए कि बार बार हम किसान भाई तो वही बात कहा कि भाई हमने जरूरत क्यों पड़ी कायाकल्प की। देखो जो फल आने कम हो जाए, क्योंकि जब पौधे बड़े हो जाए जैसे 15-20 साल का टाइम तुमने बताया है, फिर उसकी जो टहनी है जो शाखाएं हैं वो सूखनी शुरू हो जाए, कई बार पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हो जाए राजेंद्र भाई, जो फल बड़ी मुश्किल से तोड़ा जाए ऊंचे पेड़ा पे, और फल तोड़न में भी देखो जो कठिनाई है उसका तो सामना करना ही करना पड़ा है, लेकिन साथ में जो रोग हैं और कीट हैं वो भी अधिक मात्रा में बढ़ जाए हैं, क्योंकि जो पेड़ों के बीच में जो प्रकाश और हवा की आपने बात करी थी ना उसका मतलब आवागमन ठीक तरीके से नहीं हो पाता जब पेड़ बहुत ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं या गहरी टहनियां हो जाती है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे कि हमने पेड़ों की जो छटाई कटाई करके उनको कायाकल्प करना जरूरी है।
1: देखो मीनावन बिल्कुल सही बात है कि वे अपन उस उत्पादन पूरा लेना है तो उसकी साफ सफाई से लेके उसकी सिंचाई पानी के लिए सारी चीजें का अपन ध्यान रखेंगे ना, वो भी थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से। जिस तरह आपने बताया कि फल तोड़ने में इतनी समस्या है, कई बार अमरूद की बात करें मान लिया, हमने कई बार देखा है कि पौधे ऊंचे हो गए तो मान लिया या तो आपने सीढ़ी लगाई या फिर जो है ना आपने टहनी झुकाने की कोशिश करी तो टहनी टूटेंगे यार फिर तो फल भी जड़ेगा तो उसमें बहुत सारे नुकसान हो जाए। तो मीनावन ये तो बात ये थी कि भाई कायाकल्प करना जरूरी क्यों है, एक थोड़ा सा टेम की और बात कर लें कि भाई इसका टेम कौन सा सही रहेगा।
0: बिल्कुल, क्योंकि देखो वह है हर चीज का समय हुआ है राजेंद्र भाई, तो अधिकतर जो फलों वाले पेड़ है उनका जो कायाकल्प अगर किसान भाई करना चाहे तो उन खातर उचित टेम किसान भाई ने बेरवना चाहिए, दिसंबर तय फरवरी या फिर बरसात खत्म होने के बाद किसान भाई इन पेड़ों का कायाकल्प कर सके हैं।
1: देखो
0: क्योंकि जो यू टेम है ना राजेंद्र भाई, इस पेड़ में मतलब इस टेम पे जो पेड़ है वो आराम की अवस्था में हुआ है, इसलिए इनकी कटाई और चटाई का मतलब जो असर है वो अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल, देखो मीनावन बातचीत तो अपन जारी रखेंगे और एक बार मनोरंजन बाण भाइयों का करा दे हैं तो सुने यार अग्नि।
2: ये यात्रे प्रता की गलती।

0: से मारे मलाल करोड़ी तू सर मां के या गर्दन मोड़ी
1: तू सर

0: बाण भैया ने सुनी रागनी और बात आपा कर रहे थे पेड़ा के कायाकल्प की। और जो कायाकल्प का देखो टेम तो आपने बता दिया राजेंद्र भाई की भी इस टेम पर हम इनका कायाकल्प कर सका हाँ, लेकिन किन तरीके तक करा वो तरीके भी हमने बिराना चाहिए और हमारे किसान भाइयों ने भी बिराना चाहिए कि कौन कौन सी विधियां हम अपनावा पेड़ों के कायाकल्प करने।
1: बिल्कुल देखो मीनाबाने इसमें यह रहेगा कि पहली बात तो है कि कटाई छटाई जो है वो सबसे जरूरी है। बड़ी टहनी आप काटेंगे जब बात बनेगी, और जो सूखी हैं या रोगग्रस्त हैं या आपस में जो शाखाएं टकरा रही हैं वो एक दूसरे ना के बढ़ने पर रोके हैं उनमें भी काटना जरूरी है। और बहुत जो ऊंचे पेड़ हो तो इस बात का ध्यान रखें कि 3-4 मीटर की ऊंचाई तक ही उसकी ऊंचाई सीमित रखें, और पेड़ का जो बीच का भाग है उसमें थोड़ा सा मतलब खुला रखें, मतलब उसकी छटाई और तो थोड़ी सी अच्छी कर लें कि जो हवा का आवागमन ताकि बना रहे और हवा प्रकाश दोनों चीजों में पूरी तरीके से पहुंच जाए।
0: बिल्कुल।

0: और अगर ये तरीका किसान भाई अपनाओगे तो देखो इससे क्या होगा राजेंद्र भाई, कि नई नई शाखाएं पेड़ों पे निकल कर आवेंगी, अच्छे फल लगेंगे और अधिक उत्पादन हमारे किसान भाई ले पाएंगे और रोग कम होने की संभावना रहेगी।
1: बिल्कुल, तो देखो इसमें एक काम अपना और करना है कि भाई कुछ पेड़ जो है ना वो शाखाओं को आप जो है ना 1 या 1.5 मीटर तक आप काट सकें, मतलब अंदाजा लगा लें। तो उससे होगा कि अगर आपने 1.5 मीटर रख ली तो फिर नई कोपल निकलेंगे उसमें, और जो मजबूत शाखा जो है वो रख ली, और बाकी की जो कमजोर टहनी है ना उन्हें हटा दें, क्योंकि उससे फिर क्या होगा ना नई टहनी निकलेंगी। जिस तरह अपन कई बार हमने बेर में देखा है कि बेर के जो बाग की छटाई वो अपन काफी नीचे तक कर ले, उसका कारण ये रहे कि वो पौधा ईसाई है कि जितनी ग्रोथ उसने लेनी है वो जब फल आने का टाइम हो तो जिस तरह पिछले सीजन में जितनी उसने ग्रोथ ले रखी थी, जितना उत्पादन दिया था, वो उसी अवस्था में फिर पहुंच जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक ध्यान रख लें। जिस तरह अगर अमरूद की बीच में बात करें तो अमरूद की तो जो है ना जब तक आप लगातार छटाई नहीं करोगे ना, हर साल की बात करें तो वो बहुत जरूरी है। जिस तरह आम में है तो आम में थोड़ा सा आप उसमें गैप दे सके, मान लिया आप 2 साल में 4 साल में जब भी आपने यूं लगे कि टहनी ज्यादा बड़ी होगी तो काट सके, लेकिन अमरूद की अगर बात करें तो हर साल आप अगर छटाई करोगे तो उतना ही ज्यादा उत्पादन आपने मिलेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन राजेंद्र भाई देखो अपन ने बताया बाण भाई यहां तक कि अपन ने कटाई छटाई जो तरीके विधियां बताई हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, लेकिन देखो जब आप ये तरीका अपनावांगे मतलब कटाई छटाई करांगे पेड़ा की, तो खाद और जो उर्वरक है उसका प्रबंधन का भी ध्यान अपन रखना पड़ेगा, क्योंकि कायाकल्प के बाद जो पेड़ है उन्हें अधिक पोषण की जरूरत पड़े है। और जहां तक जैविक खाद की बात है राजेंद्र भाई, गोबर की जो सड़ी गई खाद है किसान भाइयों ने वो अपने खेत में उसका प्रयोग करना चाहिए, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, इस प्रकार की जो जैविक खाद है उनका किसान भाइयों ने अपने खेत में अगर प्रयोग करेंगे तो जो फलदार पेड़ हैं उनसे अच्छा खासा मुनाफा किसान भाई ले पाएंगे। और रासायनिक उर्वरक की जड़ा तक बात है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये आप बार बार किसान भाइयों तक कहा कि मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही आप इनकी मात्रा मतलब चयनित कर पाएंगे कि भी आपने कितनी मात्रा में नाइट्रोजन डालनी है, कितनी मात्रा में फास्फोरस डालनी है और कितनी मात्रा में पोटास डालनी है।
1: बिल्कुल, देखो मीनावानी भैया हम कई बार कहते रहे भाई आप किसी भी तरीके की खेती कर रहे हैं, चाहे बागवानी है, फूलों की खेती है, जो भी है, आप पहला मतलब बेरा पाड़ लें कि भाई उन्हें इस चीज की कितनी जरूरत है। मान ले किसी आदमी ने रोटियां की 2 की जरूरत तो आप 4 दे देंगे तो वह सिद्ध देगी। उसी तरह आपने पौधे का ख्याल रखना है, आपने बताया कि भाई खाद प्रबंधन करना है तो उसी डाल आपने सिंचाई का भी ध्यान रखना है कि जब आप कटाई छटाई पौधे की कर लो हो उसके बाद जो है हल्की सिंचाई कर दें, और गर्मियों में तो खासकर नियमित पानी आप दें, और पानी का जमाव खेत में किसी भी डालते ना होने दें, और ड्रिप सिंचाई अपनाओगे तो वही इसमें पानी की बचत भी आप ना होगी। तो कोशिश करें कि भी ड्रिप सिंचाई कर लें। देखो मीनावन देखा गया ये है कि ड्रिप सिंचाई करने है ना मतलब करीबन करीबन जो है वो 1/8 हिस्से का पानी लगा है, 8वां 10वां हिस्सा, मतलब जो बहुत बड़ी बात है। और अगर आप फुहारा सिंचाई भी करें तो उससे भी पानी की बचत हो है। तो भाई हम सलाह यही देंगे कि आप ज्यादातर ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करें,
0: और इस तरीके से अगर किसान भाई सिंचाई करेंगे राजेंद्र भाई देखो पानी की बचत तो होगी, लेकिन जो पेड़ है पौधा है उसका नू लगा ले ऊपर तने तक लेकर नीचे जड़ तक पानी मतलब उसका जाओगा पौधा पे, मतलब हरा भरा जल्दी से वो मतलब स्वस्थ पौधा दिखाई देगा अगर हम ये तरीका अपनावांगे। और बात आवे है रोग और कीट नियंत्रण की राजेंद्र भाई, क्योंकि कटाई के बाद देखो थोड़ा सा वो कहा नहीं करे कि अपना शरीर का अगर थोड़ा सा अंग काट दिया जावे तो देखो दिक्कत आवे है, उसी प्रकार से जो हमारे पेड़ पौधे हैं अगर उनकी कटाई छटाई करांगे तो थोड़े से कमजोर हो उसके हैं वो, तो उनकी सुरक्षा करना भी बहुत जरूरी है।
1: बात यह है मीनावान के मोटे तौर पर जो आदमी बीमार हो गया ऑपरेशन करा लिया और फिर तो उसने उबारना है, उसे स्टेज पे लेना है, तो देखो खुराक पानी का तो जो आपने प्रबंध पूरा करना पड़ेगा।
0: और जो कटे हुए भाग हैं देखो भाई जड़ता अपन कोई भी टहनी काटी है उन पर बोर्डो पेस्ट जरूर लगाओ किसान भाई, और टेम टेम पे कीटनाशक और फफूंद नाशक का छिड़काव करें, बगीचे की साफ सफाई रखें। लेकिन किसान भाई यहां एक सलाम जरूर देंगे, जो भी कीटनाशक या फफूंद नाशक दवाई का छिड़काव करना है तो नजदीकी जो भी अपने कृषि अधिकारी है उससे जरूर संपर्क करें कि कौन से कीटनाशक का प्रयोग करें, कितनी मात्रा में करें और कितने अंतराल पे करें।
1: बिल्कुल, और देखो जो कायाकल्प की जो आप बात कर रहे हैं तो यह जो प्रक्रिया अगर आप अपनावें तो इसमें थोड़ा सा एक ध्यान कर लें कि जो पहले साल की अगर आप बात करें, पहली कटाई की बात करें, तो मुख्य जो शाखा है उनकी कटाई कर लें, खाद और सिंचाई का भी इसमें आप पूरा ध्यान रखें, और नई शाखाओं का जो चयन आपने इस तरीके से करना है कि भाई ज्यादा उसमें आप ना रखें, थोड़ी रखेंगे तो नई शाखाएं ज्यादा निकलेंगी और जो नई शाखाएं आएंगी उन पर फल भी ज्यादा होगा।
0: बिल्कुल, और इसी प्रकार से देखो ये पहले वर्ष की बात करें राजेंद्र भाई, दूसरे वर्ष की अगर आप बात करें तो नई शाखाओं का विकास होगा भाई, दूसरे साल में उसका है थोड़ा थोड़ा अड़का फुल्का, हाँ कम रह जाएगा, लेकिन तीसरे वर्ष किसान भाई अच्छी पैदावार ले सके हैं।

0: और आम के जो पुराने बाग हैं उनके कायाकल्प की अगर राजेंद्र भाई आप बात करें, आम में जो यह तकनीक है बहुत सफल मानी जाए है, जो कायाकल्प वाली इसकी जो प्रक्रिया की आप बात करें तो पेड़ को लगभग 3 से 4 मीटर ऊंचाई तक आपने काटना चाहिए, 4 से 5 मजबूत शाखाएं इसमें रखनी चाहिए, नई शाखाओं को संतुलित रूप से बढ़ाया जावे है। और इसके देखो फायदा की अगर आप बात करें, 2-3 वर्ष में जो उत्पादन है वो काफी बढ़ जाएगा और फल की जो गुणवत्ता है उसमें भी सुधार आओगे।
1: बिल्कुल। इस तरह अगर अमरूद के बाग की बात करें मीनाबान, तो इसमें यूं करें कि जैसे हमने बात करी थी कि वे जो इसकी है तो नियमित छिटाई बहुत जरूरी है। इसमें इस चीज का ध्यान रख लें कि जो शाखाएं सूख गई वह हटा दें, भीतर की जो घनी शाखाएं हैं वो भी आप काट दें, मतलब इसका आकार जो है संतुलित बना के रखें। कई बार इससे फायदा ये होगा कि अपना फल जो है वो बड़े भी होंगे और मीठे भी होंगे। कई बार देखो जमींदार भाई ने सोच ले कि पेड़ जितना बड़ा है, मान ले अमरूद की हम बात कर रहे हैं कि जितना बड़ा होगा जितना फैलेगा उतना ही फल ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने उसकी नियमित कटाई ना करी तो उत्पादन आपका बढ़ेगा नहीं किमी न किमी घटेगा।
0: बिल्कुल। और देखो आपने सारी बात करी राजेंद्र भाई कायाकल्प के, अगर आप फायदा की बात करा किसान भाई आते
1: जी
0: हैं तो अगर कायाकल्प करा पड़े पेड़ का तो उत्पादन में भी वृद्धि होगी, जो अपन बात पहले बताई है, जो फल की गुणवत्ता है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, यानी कि बढ़िया फल मिलेगा और आय में तो देखो बढ़ोतरी होगी और नए बाग लगाने का जो खर्च है वो भी इसमें बचेगा। क्योंकि देखो एक तो अपने पास जो लगा लगाया बाग है राजेंद्र भाई, उसमें अपन ने थोड़ा बहुत खर्चा लगा के उस बाग को अपन ने स्वस्थ बनाना है, एक अपन नए तरीका था बाग लगावा तो देखो खर्चा का
1: खर्चे बहुत हो जाए,
0: फर्क पड़ेगा। रोग और कीट है जड़ा तक हवा और प्रकाश मिलन थे, जो रोग हैं और कीट हैं उनकी भी मात्रा कम मिलेगी। और सावधानी की जड़ तक बात है, बहुत अधिक कटाई एक साथ नहीं करनी चाहिए किसान भाई, है ना। कटाई के बाद देखभाल अच्छे तरीके से करें, साफ औजारों का प्रयोग करें, खाद और पानी की कमी ना आने देवें, रोग ग्रस्त जो भी टहनियां हैं शाखाएं उनको खेत से बाहर ले जाके नष्ट कर दें।
1: बिल्कुल। देखो इसमें एक बात और भाईयान कहेंगे कि आप इसमें आधुनिक तकनीक जो है उनका उपयोग कर लें, क्योंकि मीनाबान आप देख रहे हो कि खेती में भी आजकल जो है ना नए नए प्रयोग और नई नई तकनीकों से खेती होने लगी, जो हमारी से परंपरागत खेती थी उनसे थोड़ा सा दूर हटके किसान भाई इन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें जिस तरह आप मान लें ड्रिप सिंचाई कर लें, मल्चिंग की बात करें, या फिर जैविक खेती की ओर भी आप इसमें जा सके हैं, या आइडेंटिटी जो प्लांटेशन है वो आप करवा लें, मिट्टी परीक्षण करवा लें, तो जितनी भी आप मतलब इस ढाल की जो आधुनिक तकनीक अपनाओगे ना उतना ही अपना फायदा मिलेगा इसका।
0: बिल्कुल। और देखो इन चीजों खातिर तो जो हमारा ये सरकार है और कृषि विभाग है वो भी किसान भाइयों की खूब मदद करने लग रहे हैं। कृषि विभाग की तरफ से प्रशिक्षण दिया जाए टेम टेम पे, तो हम किसान भाइयों ने कहेंगे कि प्रशिक्षण में जरूर भाग लें, पौध सुरक्षा की सलाह दी जाए है, उर्वरक संबंधी भी जानकारी दी जाए और जो अनुदान योजनाएं हैं वो भी उपलब्ध करवाई जाए हैं। तो किसान भाइयों हम यही सलाह देंगे कि जो पुराने बाग हैं उनका कायाकल्प करके लाभकारी तकनीक से ज्यादा फायदा उठावे, सही समय पर कटाई करें, छटाई करें, खाद तरीके से बढ़िया डालें, सिंचाई करें टाइम पे और रोग नियंत्रण करके पुराने पेड़ों ते फिर ते स्वस्थ करके और उनके उत्पादनशील बनाकर अधिक मुनाफा हमारे किसान भाई कमा सके हैं।
1: और बातचीत तो मीनाबान जारी रखेंगे, मनोरंजन एक बार फिर करा दे
0: तो भाई सुने यार आगनी।

0: राजेंद्र भाई बण भैया ने सुनी रागनी और इब कार्यक्रम किसान वाणी का समय समाप्त हो लिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। इब अपनी बाण मीना मलिक ने
1: और अपने भाई राजेंद्र दून ने दी इजाजत।
0: सारे बाण भैया ने
1: राम राम, राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी और आज का विषय था पुराने बागों का कायाकल्प। ये कार्यक्रम पेश कर रहे थे राजेंद्र दुहन और मीना मलिक। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम म्हारे गांव। इस कार्यक्रम में आज आपको जानकारी दी जाएगी प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की, जिसमें आर्थिक और सशक्तिकरण और रोजगार इस विषय को रेखांकित किया गया है। तो इस कार्यक्रम से सुनने से पहले आइए सुन लेते हैं ये संदेश।
1: दादी, कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये देख, तेरी समझदारी का फल।
4: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो।

0: कार्यक्रम हमारे गांव में एक बार फिर आपकी बाण मीना मलिक
1: और आपका भाई राजेंद्र दून आपका स्वागत करे
0: और स्वागत हम सुखा नहीं रखेंगे। राजेंद्र भाई, बाण भाई ने बहुत जरूरी जरूरी जो जानकारी है वो हम किसान भाइयों खातर लेकर आए हैं, क्योंकि देखो गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, काफी टाइम हो गया है और जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। तेज धूप, गर्म हवाएं जो हमारे शरीर पर बुरा असर डाला है, खासकर मई और जून के महीने में अगर आप बात करें, गर्म हवाएं चल रही जिसने आप लू कवा और टेम रहते अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो लू इंसान को गंभीर रूप से बीमार भी कर दे है।
1: बिल्कुल, तो आज इन्हीं चीजों पर बात करेंगे कि भी लू हो के है और उसके कारण के हैं, या जो लू लाग जाए तो उसके लक्षण के हैं, या जो लाग भी गई तो फिर बचाव के तरीके उससे पहले हैं कि ना ही लग गए, और फिर उसके घरेलू उपाय के क्यों हैं, इन चीजों पर मीना बना जा चर्चा करेंगे।
0: बिल्कुल, क्योंकि देखो लू के हुए तो अपन बेरा है, अपने बड़ भाई ने बेरा कि जब गर्मी में बहुत तेज गर्म हवा चल है और शरीर का जो तापमान है वो सामान्यतः ज्यादा बढ़ जाए तो उस स्थिति को अपन लू कवा। और लू खासकर देखो दोपहर का जब टाइम हुआ है राजेंद्र भाई, 12 बजे तक लेकर 4 बजे तक का, और खुले मैदान में काम करने वाले जो हमारे बाण भाई हैं उन्हें लू लागण का खतरा रहे। किसान भाई हैं, मजदूर हैं, जो हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो बाहर गर्मी में निकल जाए हैं, या फिर आपा जो प्राणी हैं जो काम धंधे की तलाश में बाहर निकला है काम धंधे करने थे, तो भाई वो है कि जो मौसम है लू का, दोपहर का खासकर जो टाइम है, लू लागण का डर उसे टाइम पर है।
1: बिल्कुल, देखो मीनावान इसमें बात ये रहे कि भाई कई चीजें का हमने ध्यान रखना पड़ेगा। मान ले कारणों की बात करें तो एक तो भाई धूप में अगर ज्यादा टाइम रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि शरीर का जो है वो तापमान बढ़ जाएगा, लू लगने का डर ज्यादा रहेगा। या फिर कई बार ये हो जाएगा कि हम ध्यान नहीं करते, पानी कम पीए हैं, तो पानी कम जब शरीर का हो जाएगा तो देखो डिहाइड्रेशन जो है वो लू का एक बड़ा कारण है, पानी कम पीने का जो है। और कई बार ये भी हो जाएगा ना मन देखो कि अपन खाली पेट बाहर निकल गए और सवेरे की खा के निकली तो जाहिर सी बात है शरीर में कमजोरी तो होगी और जगह कमजोरी होगी और अटैक भी थोड़ा सा ज्यादा रहेगा।
0: बिल्कुल, थकान भी होगी और कमजोरी होगी तो। और देखो खाली पेट की एक बात मेरे याद आ गई राजेंद्र भाई, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह कर दे कि घर तय खा पी कर निकलना चाहिए, खाली पेट कदे नहीं जाना चाहिए। कह करे की घर तय भूखा निकल ना तो आगे भी
1: सामने भूखा आ जाएगा,
0: भूखा आ जाएगा। और आगे वो कह नहीं करा छिक्के जाओ उसने सारे पूछे, रोटी खा ले यू खा ले, और खाली पेट जाना उसका पेट में ना कुलाबादी करे जाए मुझसे उसने कोई ना पूछे। तो कहने का मतलब यही है कि हम ये कहेंगे बाण भैया ने कि घर तक जब भी निकले, चकड़ा बाहर दूर जाना हो चाहे आसपास कड़ा काम धंधा खतर निकलना हो, तो खाली पेट ना निकले।
1: तो इसमें देखो एक बात का और ध्यान कर लें आप कि भाई देखो खेती की बात करें तो के भाई किसान भाई लागे रहे हैं तो उन्होंने कहें भाई देखो काम तो जरूरी है लेकिन आप थोड़ा सा टेम का ध्यान कर लें, बस सवेरे सांझ थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लें, दिन में जब ज्यादा गर्मी हो तो थोड़ा सा आराम आप कर लें, और भाई जब काम आप कर रहे हो तो एक चीज क्या और ध्यान करें आपके भाई शरीर में थोड़ा सा ढक्की रखें। कई बार मीना बांध के होके ना आप खुले नहीं लागे रहे,

0: हैं तो जो सीधी लू लग गई फिर वो सीधन का ज्यादा खतरा रहे, तो थोड़ा ढक्की रख ले।
1: बिल्कुल, क्योंकि देखो राजेंद्र भाई, जो धरती पुत्र किसान है ना, अगर हम उसकी बात करें, उस तो धूप देखदा नहीं, छां देखदा नहीं, गर्मी देखदा नहीं, ठंड देखदा नहीं, यानी कि सारा दिन और रात सांपा के मुंड फोड़े जाए। लेकिन हम किसान भाइयों तक खास कर ये बात कहेंगे कि भाई अपने शरीर का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि अगर हमारा धरती पुत्र किसान स्वस्थ नहीं होगा तो हमारे देश का पेट क्यों कर भरेगा।
0: बिल्कुल, देखो इसमें तो कोई शक नहीं कि 24 घंटे का जो है वो काम करनी है, और फिर भी नफे नुकसान भी सहज है, सारे काम है, लेकिन फिर भी भाई थोड़ा सा बचाव कराया जा सके, क्योंकि अगर आपका शरीर ठीक रहेगा तो आप और ज्यादा कमा लोगे, और ज्यादा मेहनत कर लोगे, और जब आप बीमार पड़ गए तो भी हर डाल का नुकसान आप ना हो जाएगा, गोश्त खर्चा आपका लग जाएगा, शरीर फिर उल्टा जो है ना वो तासीर हुआ तासीर बनने में आपने फिर बहुत बखत लग जाएगा।
1: बिल्कुल, और देखो लू लागण के अगर आप देखा लक्षण के आमतौर पापा देखा कि आपा बीमार हो उसका, हाँ राजेंद्र भाई, बुखार भी हो जाए, उल्टी दस्त भी आ जाए, लेकिन अगर देखो लू की बात करें आपा, किसी भी व्यक्ति को अगर लू लाग जाए तो कुछ लक्षण है, तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी आना, या बहुत ज्यादा प्यास लगना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, शरीर का गर्म होना, या कई बार हम देखा हाँ कि बेहोशी तक भी आ जाए राजेंद्र भाई, क्योंकि आमतौर पर इन जो गर्मियां के दिन है, इन दिनों में हम देखा कि स्कूल में जो हमारे बालक है ना, टाबर टिंगर, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, कि प्रेयर में खड़े खड़े कई बार चक्कर आ जाए बड़का ने, और जो तेन पूछा एक भाई कि मैं खा पी का इन बोले ना जी रोटी कौन बनी थी करा, तो उन बाणा था उन माया था, मेरी गुजारिश है कि जिनके भी बालक बाहर स्कूल में पढ़न जाए हैं, चाहे बच्चा छोटा हो चाहे हमारा बड़ा बच्चा हो, तो भाई टाइम पर उन्हें रोटी बना के जरूर दे।
0: बिल्कुल भाई, मोटे तौर पर बात है खाली पेट घर से ना निकलन दे, क्योंकि आपने सही कहा है कि जय शरीर खाली पेट है मान लिया तो भी कमजोरी तो आएगी, और कमजोरी पे जो है ना कोई भी बीमारी बहुत जल्दी आओगी। और एक बात और बान भैया जरूर कहें कि भी आपने सही कहा कि बेहोशी तक की अगर बात आ जाए तो आप उसमें ढिलाई ना बरतें कि भाई चक्कर आ गया होगा कोई बात नहीं, इस ढाल की कोई घटना हो जाए तो तुरंत जो है आप डॉक्टर से संपर्क कर लें।
1: बिल्कुल, क्योंकि देखो चक्कर आने के भी बहुत सारे कारण हुए हैं राजेंद्र भाई, केवल लू लगने से चक्कर नहीं आते, शरीर में क्या पता किस चीज की कमी हो, तो वो हमने डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। और लू तो देखो लाग भी जाए तो बचाने के आसान जो तरीके हैं, जो घरेलू उपाय हैं राजेंद्र भाई, वो हम बड़ भाई उनकी चर्चा करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, यानी कि गर्मी में शरीर तय पसीने के रूप में पानी जरूर निकला है, इसलिए दिन भर हमने ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। घर तक बाहर अगर हम जाओ तो पानी की बोतल साथ जरूर लेकर जाओ, और वह खत्म हो जाए तो रास्ता में जगह जगह प्याऊ भी है भाई, पानी की मशीन भी लाग रही है, वाटर कूलर बोल रहा है जिसने, तो भाई रास्ता में कहीं भी आप भर सका अगर अपने पास बोतल है।
0: बिल्कुल, इसमें मिनवन देखो एक बात और भी करी जा सके कि भाई इस टाइप की चीजें हम प्रयोग में लिया, फल फ्रूट की बात करें, सब्जियों की बात करें, तो वो चीज हम ज्यादा प्रयोग में लिया जिनकी तासीर ठंडी हो है, जिस तरह नींबू पानी है, लासी है, बेल का शरबत है, नारियल पानी है, या आम पन्ना है, कहने का मतलब ये, या चाहे सब्जियों की बात करें जिसमें आप खीरा प्रयोग में ले, नींबू है, बहुत सारी चीज इसी ही मिनावान कि जिनकी तासीर ठंडी हो, जो शरीर में थोड़ा ज्यादा ठंडक दें।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये अगर ये इन चीजों का पास सेवन करेंगे राजेंद्र भाई, जो उतना ही चीजें बताई है, तरबूज है, खरबूजा है, पानी है, नींबू पानी है, लस्सी है, तो ये शरीर में पानी और नमक की कमी ने पूरा करा है।
0: बिल्कुल, और कई चीज और भी ध्यान रखने की है कि जब भी आप बाहर लिख रहे हैं तो शरीर ने जो है थोड़ा ढक्की रखें, खासकर सिर की बात करें तो, क्योंकि जो हमारे जो सेंसिटिव हिस्से है ना शरीर के, मान ले सीधी लू लगी, नाक खुली है या सिर खुला है, तो और ज्यादा डर है, तो आप सिर पे टोपी आप पहन सकते हैं या गमछा आप ले जाएं, और कोशिश यह करें कि कपड़े जो है ना हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, क्योंकि जब सूती कपड़े आप इस डाल के पहनोगे तो जो है ना उसका लू का असर या ताती हवा जो चल लेंगी उनका असर कम होगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि देखो सूती कपड़ा अगर आप गर्मी के मौसम में पहनोगे राजेंद्र भाई, तो सूती कपड़े मेन है कि हवा भी अंदर शरीर में जाती रहेगी और जो तापमान है शरीर का वो भी ठीक रहेगा, क्योंकि अगर आप रेशमी या ऊनी कपड़े या सिल्की कपड़े पहनेंगे तो उससे देखो हमारे शरीर में झनझनाहट रहेगी, हवा की क्रॉसिंग हमारे शरीर में नहीं रहेगी, और देखो गर्मी फिर वो जो तापमान है शरीर का वो बढ़ जाएगा तो हमारे सिर तक वो गर्मी पहुंच जाएगी और सिर दर्द होगा, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। तो हम मामा या ने ये कहेंगे कि जो ओढ़न पहनने का खास तौर पर पूरा पूरा ध्यान रखें।
0: बिल्कुल, और मीनावन बातचीत जारी रखेंगे, पहला भाइयों का मनोरंजन करा दे हैं, तो सुने ये रागनी।
2: ये रमा चपता योरे कुटम कबिला

0: मन भैया ने सुनी रागनी और राजेंद्र भाई आपा बात कर रहे थे लू ते बचन के उपाय। दोपहर के टाइम में घर ते बाहर निकले तो कोशिश तो यह करें कि दोपहर न ना निकले,
1: कोई जरूरी ना हो तो ना निकले।
0: अरे जमाए जरूरी काम है भाई, करना है तो सवेरे शाम भी आपा उस काम ने कर सके, क्योंकि बचाव में ही बचाव है।
1: बिल्कुल, और एक चीज का ये भी ध्यान कर देखो, इस टाइम में ज्यादा तेल मसाले वाला जो खाना है ना वो आप ना खावे। तो जो आप बात कर रहे थे भी, जिस तरह अपने भोजन में है खीरा है, तरबूज खरबूजा है, या दही है, या सलाद में भी कुछ चीजें इसीलिए आप ले सके हैं। मतलब ये तो सिर्फ इस सीजन की बात नहीं, मैंने माना आप अक्सर भाई यू कहते रहे हैं कि भाई आप जो है ज्यादातर तेल युक्त जो है वो भोजन ना खावा क्योंकि नुकसानदायक है। और फिर भी मान लिया कई बार आपका मन करे है तो भाई आप उस चीज ने घर बना सके कि भाई कोई भी मान लिया आपने ब्रेड का पकौड़ा खाना या और कोई चीज का भी मन कर रहा है, क्योंकि थोड़ा सा शुद्धता का फर्क रह जाए।
0: बिल्कुल, देखो घर बनाने में और बाहर से बने बनाए लाने में राजेंद्र भाई बहुत दिन रात का फर्क है, क्योंकि आप बाहर तक किसी भी दुकान पर लेकर आओ वो जरूरी नहीं कि वो अपना खतर उस कढ़ाई में तेल डाल रहा है उसी तरह अपन पकौड़े बना के देगा या समोसे बना के देगा, क्योंकि उसके पास तो भाई सवेरे लाइन लग जाए, शाम तक भगवान की दया से उसकी लाइन टूट दी कोने और उसी तेल में बार बार बार बार उन चीजा ने तड़ तड़ के वो हमारे तक पहुंचे हैं। तो हम बन में कहेंगे कि शुद्धता का जरूर ध्यान रखें, अगर कदे कदास नुजी भी कर जाए खाने तो घर बढ़िया शुद्ध सरसों का तेल घर में पावे है और घर का बेसन भी हो है भाई है, बना के पकौड़े आराम तक खुद भी खाओ और अपने परिवार ने भी खुआ। तो कोशिश करें बाहर की चीजें से बचें,
1: क्योंकि
0: और
1: देखो मीनावान आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तो वो है ना जो भाई मान लिया जिसका बिजनेस है वो मंडी में तो थोक के भाव में तो सौदा यूं खरीद के लिया हुआ, पहले किसान के खेत में तो वो चल लिया किसी बोरी पल्ली में बंद के आया है, फिर वो मंडी में उसका उतरना हुआ है, फिर वो उड़ते किसी रेडी पे ले रहे हैं भाई या किसी ऑटो में ले रहे हैं। तो वो जो सफाई घर में है ना, वो जो भाई बिजनेस कर रहा है वो सफाई कदम नहीं रख सकता, वो चाह के भी नहीं रख सकता। तो इसलिए कोशिश करें कि आप उन चीजों घर में प्रयोग कर लें।
0: बिल्कुल, और देखो घर की अगर बात करिए राजेंद्र भाई, घर में और भी चीजों का आप ध्यान रख सका, जो खिड़की है दरवाजे हैं उन पर आप पर्दे लगा सका, लेकिन देखो जरूरी नहीं है कि सारे अपने घर में पर्दे लगावा, जो बोरी है टाट है उन चीजों ते भी आप अपने घर का मतलब लू लागण ते या लू आणते तो आप बचाव कर सका।
1: हाँ मतलब उसमें भी थोड़ा सा मान ली जिस दरवाजे में आप बैठे हैं या जिस घर में बैठे हैं जिस खिड़की खुली है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जरूरी तो नहीं है भाई देखो हर भाई का पर्दे का जुगाड़ हो, लेकिन मान ली कोई बोरी पल्ली है टाट है उस डाल की चीज आप कर लें, और कमरे में थोड़ा सा एक वेंटिलेशन का भी ध्यान कर लें कि भाई उसमें थोड़ी बहुत हवा जरूर पास होने दें, और कूलर पंखे का प्रयोग कर लें, लेकिन उसमें की जो है ना साफ सफाई आप टेम टेम पर जरूर कर लें। कई बार क्या हो गई, एक बार आपने पानी गाल लिया उसी में गालते रहे, कई बार पूरा आपने सीजन काट दिया उसने आपने सफाई कदे उसकी करी ही नहीं,
0: और उसमें फिर डेंगू का मच्छर भी उनकी संभावना रहे भाई।
1: बिल्कुल, तो देखो भाई साफ सफाई भी रखें, और जो आपने बताया था कि भी मान लिया जितोड़ आवा रही है ना कोई खिड़की खुली है दरवाजा खुला है, चाहे आपके पशु बंद रहे हैं चाहे आपका बैठने की कोई जगह है, और आपने कोई पल्ली पाली टांग दी तो उस पर आप थोड़ा सा पानी का छिड़काव भी कर सके हैं कि भी जिससे थोड़ी ठंडक ज्यादा बनी रहे।
0: और ये चीजें अपना अपना खतर नहीं राजेंद्र भाई, जो हमारे डांगर पशु हैं उनका भी अपन विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा इन चीजों के लिए, कि जो देखो दोपहर के टाइम की अगर आप बात करना रात में तो आप अपने डांगर पशुओं ने बार बांध दिया, दोपहर में उनके भी जो दरवाजे खिड़की हैं रोशनदान है उनमें टाट पल्ली लगा दे तो लू लागण तक हमारे जो डांगर पशु हैं वो भी बच सके हैं। और पानी देखो हमारे जो डांगर पशु हैं जो कर अपन पानी की जरूरत है, तो जो डांगर पशु हैं उनको भी समय समय पर कोशिश करें भी 3 से 4 बार पानी तो उन्हें ताजा पानी जरूर पिलावें, और हर रोज नुआवें गर्मियों के मौसम में अपने डांगर पशु ने।
1: बिल्कुल, देखो मीना बन कई बार क्या हो कि भी मान लिया आपने पशु तो पानी पिलाने की कोशिश करी पानी दिखाया उस टाइम मान लिया पशु ने ना पिया तो आप यूं मान लें कि भाई ना कोई बात नहीं भाई प्यास से ना हो गया तेस ना लाग रही होगी, लेकिन भाई उसके उस टाइम ना लाग रही हो लेकिन इतना बड़ा दिन है, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोशिश करें कि 3-4 बार पानी दिखाऊं पशु में, और उसमें भी जब ताजा पानी मिल जाए ना तो जमाई ठीक से, क्योंकि ज्यादा ठहरा पानी है उसमें भी कई बार जो है ना वो मच्छर
0: संभावना रहे भाई खड़ा पानी में। हाँ, तो कोशिश करें ताजा पानी पे।
1: बिल्कुल, जिस तरह आप अपना ख्याल रखें उस तरह देखो पशु का भी ख्याल रखना है, जब घर में कोई सप्लाई आ रही हो या फ्रेश पानी आ रहा हो या अपने जिस तरह मान लिया नलका लगा रखा हो नीचे का पानी जीतता रहे हो, कोशिश ज्यादा से ज्यादा यह करें कि उसने ताजा पानी पिलाऊं।
0: और खासकर जो हमारे किसान भाई हैं जो मजदूर भाई हैं उनते भी हम यह सलाह देंगे, यह चीज अपन बार बार कही है कि सिर डक है कोई भी काम खतरा अपन बाहर निकलना तो सिर ढक कर जाना चाहिए, और बीच बीच में देखो जो धरती पुत्र किसान है सारा दिन खेत में लगे रहे हैं, हम उनसे भी कहेंगे कि बेबी भी चीज में आराम जरूर करें, शरीर में आराम कराना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तो ही आप काम कर पावांगे। पानी और ORS का जो घोल है वो टेम टेम पे अगर लग गए जरूरत शरीर ने तो पी लेना चाहिए, और खाली पेट खेत हो चाहे खलिहान हो उनमें भाई काम नहीं करना चाहिए।
1: और फिर भी भाई देखो जब लू लग भी गई है तो आप इस डाल का काम कर लें कि जिसने लू लगन का अपने अंदेशा हो जाए तो भी उसने छाया में लिटा दें और शरीर में ठंडे पानी तक पहुंच दें, मतलब नहाना नहीं है, किसी गीले कपड़े तक आप शरीर पहुंच दें, पानी उसने और पिला दें, कपड़े जब वो टाइट पड़ जाए तो कपड़े थोड़े ढीले कर दें, और फिर भी आपने लग गए कि भी हालात ठीक नहीं है तो फिर ढील ना बरतें, फिर आप तुरंत डॉक्टर तक मिल लें।
0: बिल्कुल, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हमने ध्यान रखना पड़ेगा राजेंद्र भाई। कई बार हम धूप में तो बाहर तो आवा गर्मी में तो रात ही आप बर्फ वाला पानी पी लिया है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। और देखो जो तड़ा भुना की अपन बात करी थी वो तो वाण भाई ने बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और एक हिदायत और मैं राजेंद्र भाई देना चाहूंगी वाण भाई ने कि कई बार हम बाहर जावर छोटे टाबर टिंगर हमारे साथ हुए हैं, कोई जरूरी काम तो हमने गाड़ी रोकनी पड़ जाए और आसपास कोई काम अगर सोचा कि एक सेकंड का काम है, यू गैर यू आया और बालक ना पा गाड़ी में छोड़ जाए, अगर गाड़ी बंद करके जाऊं वह भी बड़ी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि देखो गर्मी के दिन में अगर आप गाड़ी बंद कर गए तो तापमान इतना बढ़ जाएगा गाड़ी का कि बालक बेहोश हो जाएगा।
1: हाँ बिल्कुल, देखो आपने सही कहा कि हम यूं सोच लें ना, कई बार के भी मान ले एसी चला दिया, एसी में गाड़ी हमने छोड़ दी, वो भी खतरा है, क्योंकि देखो बच्चा अंदर की हरकत कर दे उस चीज का भी कुछ नहीं पता। और मशीनरी है देखो मीनावन, हम यूं मानने में कि गाड़ी चलती रहेगी लगातार चाहे कितनी देर खड़ी रहे, उसका भी जो अगर तापमान बच इंजन का जो तापमान बढ़ गया तो उसमें किसी भी तरह का फॉल्ट हो सके, शॉर्ट सर्किट हो सके, तो इस जगह का काम कति ना करें।
0: और एक गर्मी के मौसम में प्याज अधिक से अधिक खाएं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्याज का सेवन करें, क्योंकि गर्मी में नोकाया करें हैं कि बड़े बुजुर्ग की ज्यादा से ज्यादा अगर प्याज खाएंगे तो शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और बीमार भी नहीं होंगे। और सबसे बड़ी जरूरी बात है राजेंद्र भाई जागरूकता की, गर्मी और लू का बचाव केवल अपनी सुरक्षा नहीं बल्कि हमने पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, पूरे हमारे घर में गाँव में आसपास हमने जागरूकता फैलानी पड़ेगी कौन सी अच्छी चीजें की, भी ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, खाली पेट ना रहो, धूप से बचो, सावधानी बरतो, लू मतलब इस तरह की अगर बातें आप बार बार कहेंगे राजेंद्र भाई तो हम अपने आप ने लू से बचा पाओगे, क्योंकि गर्मी का मौसम हर साल आवे है लेकिन थोड़ी सी सावधानी हमें बड़ी परेशानी से बचा सके है, इसलिए खुद भी जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें।
1: मोटे तौर पर बिल्कुल सही कही, बचाव में बचाव है, मोटे तौर पर बात यह है कि भी सारी चीजें का ध्यान रखेंगे, बाहर लिखेंगे तो अंगोछा बांध के लिखें, जरूरी हो तभी लिखें, नींबू पानी ज्यादा पी लें, सब्जी में आप खीरा ले लें, हरी सब्जियां खा लें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और बाहर ताती एकदम फ्रिज का पानी ना पिए, ये मोटी मोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो अपना काम ठीक चल जाए, गर्मी से बचाव रह जाएगा। और मीनावान
0: भाई देखो एक बात और कहना चाहूंगी राजेंद्र भाई साथ में, अपन बात कर ली अपने छोटे टाबरां की, बड़े बुजुर्गों की, अपनी धरती पुत्र किसान की, मजदूर की, डांगर पशुओं की भी, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में भी राजेंद्र भाई मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि इस लू के मौसम में पेड़ पौधे में भी जान हुआ है, वह भी सांस ले हुए हैं, उनमें भी जरूरत हुआ है, तो कोशिश करें कि जो अपने आस पास पेड़ पौधे हैं उनमें टेम टेम तक पानी डालते रहे, जो छोटे पौधे हैं ना उनमें तो आप ढक्के भी रख सका लू तो बचा सका।
1: बिल्कुल मीनावान, देखो बहुत अच्छी बात कही है, मन हरा भरा हो गया, हर मन राजी हो जाए तो देखो मीनावान फिर थोड़ा मनोरंजन का भी काम बने।
0: हाँ मनोरंजन तो करवाते रहा भाई बाण भाई का बीच बीच में, तो बाण भाई सुनाएंगे या रागनी।

0: बाणवाया ने सुनी रागनी और ये कार्यक्रम हमारे गांव का समय समाप्त हो लिया अपनी बाण मीना मलिक ने
1: और अपने भाई राजेंद्र दूर ने दी इजाजत
0: सारे बाण भैया ने
1: राम राम।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, श्रृंखला क्लिक मत करना।
2: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये रे तेरी समझदारी का फल।
3: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो।

0: को नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम म्हारे गांव। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं रफी साहब की आवाज में गाए इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म आरजू से।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।

0: को नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं और अगला गीत आइए सुनते हैं रफी साहब की आवाज में, फिल्म है पुनर्मिलन।

0: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।

0: किसको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आपकी परछाइयां फिल्म से ये कार्यक्रम का अगला गीत रफी साहब की आवाज़।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत सुहागन फिल्म से। आवाज है मोहम्मद रफी साहब की, शब्द रचना हसरत जयपुरी की और संगीत मदन मोहन का।

फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार से, और कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पालकी से। आवाज है मोहम्मद रफी साहब की और शब्द रचना शकील बदायूनी की और संगीत नौशाद अली का।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत संपन्न होता है। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खुला आकाश के अंतर्गत एक ही फिल्म से नगमे। आज हम लेकर हाजिर हैं फिल्म निकाह के गीत, तो आइए सुनते हैं।
1: अभी अलविदा मत कहो।

एक ही फिल्म से गीत आप सुन रहे थे और इसके बाद इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पांच विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ पांच मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 99 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य जी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं।

0: चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियाँ अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रज जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
1: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वामदलों के समर्थन से सरकार बनाने का

0: हर्ट्ज पर। श्रोताओं अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
1: है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

अन्विता दत्त और कुमार का लिखा ये अगला गीत सुनिए, जिसे संगीतबद्ध किया है विशाल और शेखर ने। बेनी दयाल और नीति मोहन की आवाजें हैं। फिल्म का नाम बैंग बैंग।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम के अंत में शानदार फिल्म का ये गीत, अमित त्रिवेदी की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत।

शानदार फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज थी अमित त्रिवेदी की, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और धुन बनाई थी अमित त्रिवेदी ने। इसी के साथ शीर्षक संगीत का ये कार्यक्रम आपके लिए यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत, नेहा अगरकर देसाई को नमस्कार।

0: पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, वो ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

एक ऐसी आवाज जिसका फिल्म संसार में कभी कोई जोड़ नहीं आया, एक आवाज जो अपने आप में निराली है, जो हमारी तन्हाइयों और हमारी उदासियों की साथी है।

तलत महमूद का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मंजूर अहमद थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंडित एस सी आर भट्ट से मॉरिस कॉलेज लखनऊ में तालीम ली। ये दौर था सन 1920-1930 का। तलत महमूद शास्त्रीय और सुगम संगीत की तालीम ले रहे थे। सन 1939 तलत महमूद ने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में तलत महमूद गजलें गाने लगे। ये वो दौर था जब तलत महमूद दाग, मीर, जिगर, मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज जैसे शायरों के अशार आकाशवाणी लखनऊ के लिए रिकॉर्ड करवाया करते थे। इसके बाद तलत महमूद चले गए कोलकाता। कोलकाता में एचएमवी के लिए तलत महमूद गाने लगे तपन कुमार के नाम से। उन्होंने वहां कई रचनाएं रिकॉर्ड करवाई। सन 1941 तलत महमूद की पहली डिस्क आई और ये वो गाना था जिसने उन्हें बेहद मशहूर कर दिया। गाने के बोल थे, सब दिन एक समान नहीं था।

मलिक महमूद ऐसे चुनिंदा गायकों में से थे जिन्होंने गैर फिल्मी गजलें और गीत गाकर वो शोहरत हासिल की थी जो लोग फिल्मी गाने गाकर करते हैं। यहां तक तलत महमूद ने फिल्मों में गाना शुरू नहीं किया था। तलत महमूद को फिल्मों में अभिनय का भी शौक रहा। अपने करियर में तकरीबन 16 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। कोलकाता में बनी 3 फिल्में तो बड़ी ही कामयाब रहीं। तपन कुमार के नाम से वो बांग्ला में कुछ गीत भी रिकॉर्ड करवाते थे और अमूमन उनके संगीतकार हुआ करते थे कमल दास गुप्ता। सन 1949 में तलत महमूद मुंबई आ गए। उनका मकसद था फिल्मों में गाने गाना। यहां आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल बिस्वास से मुलाकात की। अनिल बिस्वास को तलत की आवाज जम गई और फिल्म आरजू में आया उनका

0: गाने से तलत महमूद की फिल्मी कामयाबी का सफर शुरू होता है। इसके बाद तलत महमूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कई बेमिसाल फिल्मों में उनके गाने आए और लोगों ने इन गानों को बड़ा मशहूर किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब तलत महमूद को अपनी आवाज की लर्जिश पर भरोसा नहीं था। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल विश्वास के लिए तलत बिल्कुल सपाट गा रहे थे, तब अनिल विश्वास ने उन्हें जोर से डांटा था और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारी आवाज की ये जो लर्जिश है, ये जो कंपन है, यही तुम्हारी ताकत है। और उसके बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ तलत महमूद ने गाया। उनकी आवाज का ये कंपन उनकी खासियत बन गया। आइए सन 1957 में आई फिल्म देख कबीरा रोया का ये गाना सुना जाए।
1: हम

तलत महमूद ने बहुत सारे संगीतकारों के साथ गाया। उनकी आवाज का एक खास टेक्सचर था, उनकी आवाज का एक अलग ही रंग था और दिलीप कुमार जैसे नायकों पर उनकी आवाज ली गई। आइए सुना जाए सन 1952 में आई फिल्म दाग का गाना।

संगीतकार सनी चौधरी के लिए तलत महमूद ने सन 1961 में लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाया फिल्म छाया के लिए। आज भी ये फिल्म संसार के कुछ बेमिसाल गानों में से एक है।

सन 1959 में सुनील दत्त के लिए फिल्म सुजाता में तलत महमूद ने ये गाना गाया था। हीरो टेलीफोन पर हीरोइन से अपने मन की बात कह रहा है।

अब संगीतकार मदन मोहन के साथ तलत महमूद के गानों की बात की जाए और आपको सुनवाया जाए सन 1964 में आई फिल्म जहां आरा का ये गाना।

मदन मोहन ने एक बेमिसाल गाना तैयार किया जिसमें तलत महमूद के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और भूपेंद्र की भी आवाजें थीं। ये था फिल्म हकीकत का गाना, सुनिए।

कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में गाने गाए, उसके बावजूद वे अपने गैर फिल्मी गीतों और गजलों के एल्बम तैयार करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की। आइए फिल्म सोने की चिड़िया का गाना सुना जाए। ये फिल्म साल 1958 में आई थी। इस फिल्म के हीरो खुद तलत महमूद थे। ये गाना सुना

0: क्या,
1: यानी फिल्मों में गायकी, गैर फिल्मी गाने, गीत और गजलें और एक्टिंग, इतना सब किया तलत महमूद ने। उन्होंने सारी दुनिया में घूम घूम कर अपने संगीत कंसर्ट भी किए। तलत महमूद का करियर काफी लंबा रहा। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 800 गाने गाए हैं। अपनी खास तरह की आवाज, अपने खास तरह के अंदाज के लिए आज भी सुनने वाले उन्हें बेहद

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक तलत महमूद पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर, एक विविध भारती।
1: हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो हिसार।
2: हेलो हिसार,
3: हेलो हिसार,
4: हिसार।

0: नमस्कार, आदाब और प्यार भरा अभिवादन दोस्तों। गर्मियों की इस सुनहरी शाम में जब सूरज ढल रहा है, हवाओं में हल्की सी नरमी घुल रही है और दिन भर की थकान एक प्याले ठंडे सुकून की तलाश में है, ऐसे खूबसूरत पल में आपका स्वागत है आपके अपने फोन इन शो हेलो हिसार में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंडोरिया और अगले एक घंटे तक हम साथ में मिलकर सजाएंगे हमारी हेलो हिसार की महफिल और आपकी फरमाइशों को करेंगे पूरा। तो अगर आपके मन में भी है किसी गीत को सुनने की इच्छा या फिर कोई बात बताना चाहते हैं हमसे या बस दिल करता है आकाशवाणी हिसार में कॉल लगाकर हमसे बातें करने का, कुछ कहने का, तो उठाइए अपना फोन और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर आवाज है खास, हर एहसास है अनमोल और हर श्रोता है हमारे परिवार का एक अहम हिस्सा। तो चलिए गर्मियों की शाम को बनाते हैं और भी यादगार आपके साथ, आपकी बातों के साथ। हेलो
1: हेलो
0: हेलो हिसार कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: मैडम जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैडम जी मैं सुखदेव कुमार प्रजापति अबोर जिला फाजिलका पंजाब से बोल रहा हूँ जी।
0: सुखदेव जी कैसे हैं, क्या करते हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ जी, सिलाई का काम करता हूँ मैडम जी।
0: सिलाई का काम करते हैं तो जी। अभी जैसे कुछ कुछ शादियों का काम जो चल रहा है तो आपका काम तो अच्छे से अभी जोरों पर होगा?
1: नहीं मैडम जी, ठीक है जी, शादियों में अब तो कम है, कुर्ते पजामे में काम ज्यादा है जी।
0: अच्छा, पर कुर्ते पजामे जैसी बात नहीं, किसी भी पहनावे में
1: जी। शादियों में तो सर्दियों में ज्यादा होता है जी काम हमारे, तो कोट पेंट का काम।
0: अच्छा अच्छा, तो बताइए रेडियो कितना सुनते हैं अपने काम के साथ साथ?
1: रेडियो तो मैडम जी चलता ही रहता है जी, मोबाइल पे सुनते रहते हैं जी और तो।
0: अच्छा, तो गीत किस तरह के पसंद करते हैं, आज कौन सा गीत सुनेंगे ये भी बता दीजिए।
1: मैडम जी पुराने फिल्मों का गीत पसंद है जी, आज सुना दो जी, राजकुमार फिल्म का गाना है जी।
0: कौन सा गीत?
1: आज आई बहार दिल है बेकरारों में, हेलो हिसार तेरे बिन रहा ना जाए।
0: वाह वाह, बहुत खूब, हेलो हिसार आ गया है और बिल्कुल भी इसके बिना रहने की आपको जरूरत नहीं है। सुनिए राजकुमार फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।
1: धन्यवाद मैडम जी।

0: हेलो
1: हेलो बहन जी, नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो हिजार
1: बहन जी
0: कार्यक्रम में आपका
1: मैं
0: स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: धन्यवाद बहन जी, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहन जी मैं पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से जगदीश राय गर्ग बोल रहा
0: जगदीश राय जी, पालमपुर पहुंच गए आप मानसा से?
1: हूँ। जहाँ बेटा और बहू आंखों का हॉस्पिटल है उनका, उनके पास आता रहता हूँ।
0: अच्छा, तो पालमपुर कैसी जगह है बताइए हमारे श्रोताओं को। इतनी
1: पालमपुर तो जैसे जैसे जन्नत बोलने तो कोई
0: खूबसूरत
1: इतना
0: है।
1: खूबसूरत है। आस पास चाय के बागान, घूमती बालदार सड़कें, ऊपर पहाड़ों की चोटियां, उस पर बर्फ जमी हुई जैसे चांदी बिखरी पड़ी हो, और खूबसूरत वातावरण।
0: वाह जी वाह, बहुत खूब। हम भी पहुंच गए उन्हीं वादियों में आपकी बातें सुनकर। जी आज,
1: सचमुच ये तो कुदरत ने
0: हाँ
1: जहाँ
0: जी।
1: जितनी भी सुंदरता सभी बख्श दी है यहाँ।
0: चलिए, बहुत अच्छा।

0: लगा जानकर, और बहुत खुश हुए कि आप जो अपनी मतलब समय में से समय निकाल कर अब वहां गए हैं और हमारे श्रोताओं को भी उसकी जानकारी दी है।
1: बिल्कुल बहन जी, मैं तो आधा समय पंजाब में और आधा समय हिमाचल में गुजारता हूँ।
0: अच्छा, चलिए बताइए आज गीत कौन सा सुनेंगे आप हिमाचल की वादियों में।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार। हेलो हिसार कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: कौशिक मैडम जी, कैसी हैं आप?
0: बढ़िया, आप कौन बात कर रही हैं?
1: मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह।
0: कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैडम, आप कैसे? आकाशवाणी टीम, हिसार के लोग।
0: आकाशवाणी हिसार के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हमारे सुनने वालों की इतनी दुआएं हमारे साथ रहती हैं।
1: तो
0: जी
1: सब दुआएं और आशीर्वाद बना रहे आपके
0: बिल्कुल,
1: ऊपर।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बताइए आज क्या सुनवाएं हम आपको?
1: सुना दीजिए नई पिक्चर मेला का, कमरिया लत, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज।
0: ठीक है, हम आपकी ये फरमाइश जरूर पूरा करेंगे। बताइए क्या करते हैं आप? अपने कामकाज के बारे में कुछ बताइए, अपनी जगह के बारे में
1: रिटायरमेंट,
0: बताइए।
1: मैं तो इनकम टैक्स इंस्ट्रूमेंट से रिटायरमेंट हूँ
0: अच्छा,
1: और
0: चलिए।
1: अपना ये रेडियो का शौक की काज से जुड़ा हुआ हूँ और अपने स्वास्थ्य का देखभाल करते हैं। गर्मी के दिनों में ही कहता
0: जी
1: हूँ
0: बिल्कुल
1: कि
0: बिल्कुल।
1: अपना बचाव रखें, पशु पक्षियों का भी ख्याल रखें, उनके लिए दाना पानी रखें।
0: जी, ये संदेश आपका हमारे सभी सुनने वालों तक पहुंच गया और उम्मीद करते हैं हमारे सभी सुनने वाले इस बात पर जरूर अमल करेंगे। कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए मेला फिल्म का ये खूबसूरत गीत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो हिसार।
0: बिल्कुल, हेलो हिसार कार्यक्रम में आपका स्वागत
1: हाँ
0: है।
1: जी
0: इस
1: नमस्ते
0: कार्यक्रम
1: जी।
0: में नमस्ते, कौन बात कर रहे
1: हाँ
0: हैं?
1: प्रीति ढिंडोरी जी बोल रहे हो?
0: हाँ जी, मैं प्रीति ढिंडोरिया बात कर रही हूँ।
1: हाँ जी मैं पप्पू लाखवाड़ा बोल रहा हूँ जी, हिसार से, गांधी चौक आजाद गली से। हाँ
0: जी पप्पू जी, कैसे हैं?
1: काफी टाइम बाद में फोन लगा जी आज।
0: चलिए, लग तो गया।
1: कोशिश तो करते रहते हैं लेकिन लगता नहीं है।
0: हाँ जी, कोई बात नहीं, हमारे सुनने वालों का प्यार है ये, जो किसी को रोकता है और किसी का कॉल मिल जाता है।
1: हाँ जी हाँ जी बढ़िया
0: जी, तो बताइए पप्पू जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया। हाँ
0: कामकाज सही चल रहा है?
1: काम काज सही चल रहा है जी।
0: अच्छा, आज गीत कौन सा सुनेंगे आप?
1: आज सुनना चाहता हूँ जी महबूब की मेहंदी का, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं।
0: बहुत खूबसूरत गीत की फरमाइश की है आपने।
1: जी हाँ जी
0: जी
1: हाँ जी दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ जी।
0: हाँ जी, लीजिए।
1: राजे जैन, राजू हुक्केवाला, अमन चड्ढा, विक्की नाई।
0: कार्यक्रम में फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए महबूब की मेहंदी फिल्म का ये प्यारा सा गीत।
1: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार। हेलो हिसार कार्यक्रम में स्वागत करते हैं आपका।
1: मैडम पवन कटारिया, श्री करनपुर जिला, श्री गंगानगर, राजस्थान से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं पवन जी?
1: मैम बढ़िया है,
0: मौसम के
1: बस
0: मिजाज कैसे हैं गंगानगर में?
1: नॉर्मल था, नॉर्मल था, कोई ज्यादा भी गर्मी नहीं है इतनी, और
0: ये बार बार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से।
1: उसके वजह से मौसम नॉर्मल हो गया।
0: जी, कामकाज कैसा चल रहा है आपका?
1: काम काज ठीक है मैडम, अब तो छुट्टियां होने वाली है एक हफ्ते में।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो छुट्टियों में
1: छुट्टियां
0: खास क्या करते हैं आप? हम अक्सर बच्चों
1: मैम
0: से पूछते हैं, आज हम टीचर से पूछ रहे हैं।
1: मैम जो भी ऐसा होता है कि जो भी बच्चा कोई पूछने के लिए आए, क्वेश्चन वगैरह, उनके घर बैठे उनको सॉल्व करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, बच्चों की ऐसी बात नहीं
0: अच्छा,
1: है।
0: मतलब आप ऑनलाइन भी बच्चों की मदद करते हैं और ऑफलाइन भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैडम,
0: बहुत अच्छा लगा जानकर। और छुट्टियों में तो पूरा पूरा टाइम होता है आपके पास, तो
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: रेडियो भी खूब सुनेंगे, हमारे कार्यक्रम
1: वो तो
0: सभी
1: चलता ही
0: सुनेंगे।
1: रहता है मैडम, वो तो चलता ही रहता है साथ के साथ।
0: अच्छा जी, तो बताइए आज गीत कौन सा सुनेंगे फिर?
1: फिल्म आई थी तीन देवियां, ए यार मेरे तुम भी हो गए जब, घूंघट तो जरा खोलो, किशोर
0: ठीक
1: जी की
0: है,
1: आवाज में।
0: ये गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे। पवन जी, कार्यक्रम में फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए अपनी पसंद का गीत।
1: धन्यवाद मैम।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालदी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हिसार कार्यक्रम में।
1: जी मैडम, आप भी अच्छे, मैं भी अच्छा हूँ, ड्यूटी परेड में हूँ मैडम। आपका कार्यक्रम में फोन किया हूँ और गर्मी है तो काफी बढ़ गया है मैडम
0: जी। गीत कौन सा सुनेंगे
1: आज? मैं सुनूंगा मैडम, फिल्म का नाम है रॉकी, और गीत की वो है हम तुमसे मिले फिर जुदा हो गए। गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, ये संजय दत्त, टीना मुनीम, शक्ति कपूर जी का फिल्म का गाना है। और सबसे पहले गीत आपको केंद्र निर्देशक आपको पूरे भारत श्रोता को आकाशवाणी हिसार में जुड़े लोगों को, आपके परिवार जन के रिश्तेदारों को, आपकी सहेलियों को, केंद्र निर्देशक सबको डिजाइन कर मैडम। इसका प्रसारण आज शाम को
0: बहुत
1: 5 बजे।
0: शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रभान जी। आज आप सुनेंगे, आज के जो ये आपकी कॉल है आज के कार्यक्रम में होगी, कार्यक्रम में फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: फोन शामिल किया मैडम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार। हेलो हिसार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं राधेश्याम कटारिया, श्री कसमपुर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से बोल रहा हूँ।
0: राधे श्याम जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया मैडम जी।
0: बताइए, आज गीत कौन सा सुनेंगे आप?
1: आज गीत सुनना है, अमर अकबर एंथनी का गीत है, माई नेम इज एंथनी गुंसेल्विस। हाँ
0: बहुत अच्छा गाना है ये।
1: जी मैडम।
0: और कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैडम आज मैं नमस्ते इशार सुन रहा था, आज मेरे को बहुत अच्छा लगा
0: बहुत बहुत शुक्रिया राधेश्याम जी, हमारी
1: उसमें।
0: हौसला अफजाई के लिए। जी
1: उसमें आपने एक विशेष व्यक्ति के बारे में बताया था, कपिल देव के बारे में,
0: जी
1: बहुत ही अच्छा लगा।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया राधेश्याम जी, आप लोगों को पसंद आया, हमारी मेहनत सफल हुई।
1: हाँ जी, प्रोग्राम
0: जी
1: पेश करते हो बहुत ही अच्छे ढंग से करते हो, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया राधेश्याम जी, ऐसे ही हमारे जो रेडियो है उससे अपना प्यार बनाए रखिए और यूं ही फरमाइशें करते रहिए और हम आपकी फरमाइशों को पूरा करते रहेंगे। कार्यक्रम में फ़ोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए अमर अकबर एंथनी फिल्म का ये प्यारा सा गीत।
1: थैंक यू मैडम।
2: You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
3: What?
2: My name is Anthony Gonsalves.
3: Gonsalves?
2: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: गोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज।
0: ओह यस, एंथनी गोंसाल्वेस।
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो, हिसार कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
3: जी नमस्कार बहन जी।
2: नमस्कार मांगी लाल चंदेल जी।
3: हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, कट गया था फोन।
2: हाँ जी, हाँ
3: टावर थोड़े कम मिल रहा है इसलिए कट गया।
2: अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा आपकी किस्मत तेज है, दोबारा मिल गया।
3: दोबारा मिल गया, नसीब जोरदार है मेरा।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बताइए गीत कौन सा सुनेंगे आज
3: बहन जी। फिल्म का नाम तो रहेगा संजोग, और गाने के बोल रहेंगे बदली से निकला है चांद।
2: पुरानी वाली संजोग फिल्म का गीत।
3: पुरानी वाली संजोग है, पुरानी वाली। बिल्कुल, धन्यवाद आपको, धन्यवाद
2: कार्यक्रम में फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए संजोग फिल्म का ये खूबसूरत गीत
3: जी।

0: तो दोस्तों, हंसी, गीत और प्यार भरी बातों से सजी आज की ये शाम अब विदा लेने को है। आपकी आवाज़ों ने, आपकी मुस्कुराहटों ने और आपके दिल से निकले शब्दों ने इस महफिल को सचमुच यादगार बना दिया। गर्मियों की इस शाम में उम्मीद है हमारे साथ बिताए गए ये पल आपके मन को ठंडक और चेहरे को मुस्कान दे गए होंगे। अब दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन वादा है कि फिर मिलेंगे एक नई शाम, नई उम्मीदों और नई उमंगों के साथ, नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए ठंडा पानी पीजिए, धूप से बचिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, प्यार बांटते रहिए और पक्षियों के लिए पानी और दाना ज़रूर से ज़रूर रखिए, क्योंकि ये हमेशा हम पर ही निर्भर रहते हैं। इसी संदेश के साथ आज के हेलो हिसार कार्यक्रम से आपकी अपनी रेडियो हम सफ़र प्रीति ढिंडोरिया लेती है इजाज़त। नमस्कार, आपकी हर शाम यूं ही खुशनुमा बनी रहे।
1: हेलो हिसार,
2: हेलो हिसार, हिसार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हिसार, प्रीति ठिनोरिया के साथ। FM बैंड 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्न वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R. N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah,